गरीबी से बुरा हाल धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने चला।

बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

से बोलो, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, मैंने सुनिया, दिल से बोलो, आवाज नहीं आई, मिलके बोलो।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: Eso.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP 2 गुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी 2 गुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
3: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने सातवें दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
4: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुरी जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
6: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
5: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
7: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
5: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
3: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
8: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से

0: हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज इंडिया इज इमर्जिंग एज अ ट्रस्टेड एंड स्टेबल पार्टनर टू द वर्ल्ड अमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड डिस्रप्शन। Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approves large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today trust has become just as important alongside trade.
3: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh aise saathiyon ki talash mein hai jin par lambe samay tak भरोसा किया जा सके। और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
2: Mr. Modi further said the country is investing across sectors that will drive growth, innovation and opportunity for generations to come. Mr. Modi added that at the G7 meeting in Evian,

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
6: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला

0: टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री. साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है. ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट. विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद. कॉल नाउ 9412211111.
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा. इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं. आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद. फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534.
2: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग.

वेलकम बैक है जी, सुप्रभात, नमस्कारम, गुड मॉर्निंग, आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम बिंदास मॉर्निंग में। हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हाल चाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अपनी सुबह की शुरुआत एकदम पॉजिटिविटी के साथ कर रहे होंगे। आई एम श्योर हो भी चुकी होगी हमारे लिसनर्स की शुरुआत। हाय ब्यूटीफुल लिसनर्स, कैसे हाल चाल है? बंदे का नाम आनंद है जी, मेरी तो यहाँ पर एंट्री हो गई है, मैंने तो दस्तक दे दी है आपके रेडियो सेट पर और अब से लेकर आपके साथ 10 बजे तक रहूंगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर, जहाँ बातें होंगी दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सब बढ़िया चल रहा है? हाँ जी, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी लाइफ में सब कुछ एकदम चकाचक चल रहा होगा मुरादाबादीज। फिलहाल आपको बता दें, स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 8:22, 19 जून की सुबह है, बहुत ही प्यारा मौसम है आज का, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास आपको नहीं हो रहा होगा क्योंकि हवाएं थोड़ी ठीक ठाक चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले तो वेदर ठीक था, सूरज चाचू लुका छुपी खेल रहे थे और अभी फिलहाल का क्या टेम्परेचर है डेफिनेटली आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। और आज का विचार सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपके साथ साझा करना चाहता हूँ आज का थॉट ऑफ द डे। अगर बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले में कोई कमी है तो जाकर उससे बात करो। अगर आपको किसी एक पर्सन में लग रहा है कि उसमें कुछ कमी है तो जाकर उससे बात करो, लेकिन अगर हर किसी में कमी दिखाई दे रही है तो भैया खुद से बात करो, है ना। अगर हमें बार बार हर किसी में प्रॉब्लम नजर आ रही है तो मुझे लगता है कि वो टाइम है कि हमें खुद से बात करनी चाहिए कि भाई हमें सब में कमियां क्यों नजर आ रही हैं। हो सकता है वो सारी कमियां उनमें नहीं मुझमें ही हो, इसलिए मुझे वैसे लोग दिख रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, जैसी सोच आप रखोगे वैसी चीजें आपके आसपास आपको दिखने लगेंगी, है ना। तो अपनी सोच बदलिए और जब आप अपनी सोच बदलेंगे तो आपकी लाइफ के सितारे भी बदलेंगे, आपकी लाइफ की चीजें भी बदलेंगी। तो इसलिए सकारात्मक सोच के साथ जो है अपनी सुबह की शुरुआत की, जब आपको इसलिए जगाते हैं मोहन प्यारे जागो, बहुत जरूरी है क्योंकि जो सुबह है ना, अगर ये आपकी एनर्जेटिक हो गई, पॉजिटिविटी के साथ, बढ़िया प्रोडक्टिविटी के साथ होगी तो मजा आ जाएगा। कल किसने क्या कहा, किसने किसको क्या बोला, उसको साइड रखो, आज का दिन आपका है, एंजॉय योरसेल्फ, अच्छे से डिसाइड करो क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज दिस इज योर डे, है ना। हम 15 दिन का इनिशिएटिव नहीं ले रहे, हम 8 दिन का इनिशिएटिव नहीं ले रहे, हम आज का इनिशिएटिव लेते हैं मैं और आप, कि आज के दिन को हम फुल ऑफ एनर्जी के साथ, फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ स्पेंड करेंगे, रात को बढ़िया वाली नींद आएगी, बॉस बता रहा हूं मैं आपको। चलो, मेरी और आपकी जो बातचीत है वो तो ऐसे ही लगातार कंटिन्यू रहेंगी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। यह है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां पर मैं होता हूं, आप होते हैं और ढेर सारी बातें होती हैं और ढेर सारे प्यारे प्यारे गीत संगीत भी होते हैं जिनको सुनकर सुबह हमारी और भी खूबसूरत हो जाती है, जिससे मॉर्निंग हम कहते हैं गुड नहीं बिंदास होनी चाहिए, है ना। तो बस वही मॉर्निंग आपकी बिंदास करने के लिए मैं डेली आता हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे एंड ढेर सारे लिसनर्स मेरे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच आपकी मैसेजेस के लिए, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग यू लव। यार आज की सुबह कुछ खास है, तो भैया उठाइए अपने कर्मों की किताब, लिख डालिए कुछ बेहतरीन बात ताकि आने वाले टाइम में आपका नाम भी रोशन हो सके। बस इतना ही कहना चाहते हैं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा ये दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी मोटिवेशन डोज के साथ शुरू करेंगे फ्राइडे मॉर्निंग की वाइब, एक अमेजिंग ट्रैक, सुरू निगम साहब की आवाज निकाल दिया है मैंने आपके रेडियो सेट पे एक बेहतरीन गाना, साथ में साथ देंगी अलका याग्निक जी, एंजॉय करेंगे मिलके साथ में। ये है बिंदास मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
2: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

हेलो हेलो वेलकम बैक ही लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ, शहर की पहली आवाज जहां पर बातें होती है दिल से दिल तक। माय नेम इज आरजे आनंद, ऑफ कोर्स यू आर लिसनिंग टू आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारे व्हाट्सएप करने के लिए शुक्रिया। इस गाने के बाद मैं डेफिनेटली आपके व्हाट्सएप को शामिल करूंगा, एंड आप भी मुझे मैसेज करो ना यार, 9837896896। डोंट डू दिस यार, फोन मत चलाओ, गाने अच्छे लगा रहा हूँ, प्लीज वॉल्यूम बढ़ाओ।

0: आप बिल्कुल सही स्टेशन पर आए हो, सही फ्रीक्वेंसी पर आए हो। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है ये हम आ गए हैं कहाँ, आप आ गए हो मेरे दिल के बहुत करीब। हाय वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, आप हैं आनंद के साथ जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। एग्जैक्टली स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 8:34। ढेर सारे श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड इतने ब्यूटिफुल एंड फैबुलस पॉजिटिव मैसेज पहुंचाने के लिए। आई एम सो हैप्पी यार, आउटस्टैंडिंग। सब लोग इतने बढ़िया बढ़िया मैसेज करते हैं ना सुबह सुबह। देखिए मेरे साथ रितिका जुड़ चुकी हैं इस वक्त, गायत्री नगर से लिखती हैं, आनंद जी गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और आपको एंजॉय कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे गाने प्ले कर रहे हो आनंद, थैंक यू सो मच मैम। एक मैसेज हमारे पास आया है रमन का, ये लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, चिड़िया टोला से मैसेज कर रहा हूँ एंड फर्स्ट टाइम आपके रेडियो में जुड़ा हूँ, मेरे को बहुत मजा आ रहा है, आई एम सो ग्लैड, आपका शो सुन के बहुत मजा आ रहा है और आपका रेडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनने में, थैंक यू सो मच मिस्टर रमन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। एक और मैसेज आ गया है, जुल्फी भाई जुड़ चुके हैं मेरे साथ, लिखते हैं, हाय आनंद गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, व्हाट्सएप ब्रो, आई एम गुड जुल्फी भाई, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ यार, और आपका तो नाम इतना खूबसूरत है जिसे सुन के बाबू शाह है चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और अभी आपको बताएंगे कि हम डेली आपको अपने इस रेडियो शो पे एक प्रोग्राम की तरफ लेकर जाते हैं जहां पर कुछ ना कुछ फेमस होता है, प्रसिद्ध होता है, पॉपुलर होता है, वहां की पॉपुलैरिटी के बारे में आपको पता चलता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन योजना के अंतर्गत जो हमारे मुख्यमंत्री श्री जो हमारे मुख्यमंत्री साहब है CM योगी आदित्यनाथ जी, उनकी तरफ से एक बहुत ही अच्छा कैंपेन एक इनिशिएटिव चल रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन योजना के बारे में हम आपको बताते हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। बहुत ही अच्छी ये योजना है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कहाँ पर क्या मशहूर है, क्या पॉपुलर है, कौन सा फूड वैरायटी सबसे फेमस है। अलग अलग शहरों की हम बात कर रहे हैं, अलग अलग शहरों के फेमस फूड की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें मुरादाबाद की तो मुरादाबादी दाल अपने आप में बहुत ही खूबसूरत टेस्ट नहीं है, इमोशन है हमारा, हम सभी का प्यार है पहला मुरादाबाद की दाल, है ना। वैसे ही मेरठ की नान खटाई, आगरा का पेठा बहुत पॉपुलर है, पेड़ा बहुत पॉपुलर है, मथुरा का, वाराणसी की चाट, लखनऊ की कबाब और भी ढेर सारी वैरायटी के बारे में आपको जानने को मिल रहा है हमारे शो के माध्यम से। तो बस सुबह सुबह खाने पीने की बातें तो होनी ही चाहिए ना भाई साहब। आज हम आपको कौन सी गली में लेके जाने वाले हैं, आज हम आपको कौन से शहर में लेके जाने वाले हैं जहाँ का फूड आप जब उसके बारे में जानोगे, उस चीज़ के बारे में जानोगे तो आपको ना कसम से बता रहे भाई मज़ा आ जाएगा। एक बहुत ही अल्टीमेट जगह पर आपको लेके जाने वाले हैं जहाँ का फूड मतलब बहुत ही यूनिक है। कहाँ का फूड यूनिक है पाजी, ये तो आपको सुन के ही पता लगेगा आज मैं आपको कहाँ लेकर जाने वाला हूँ। यस, तो बस मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए आपके शहर का मॉर्निंग मैगजीन शो, दिस इज बिंदास मॉर्निंग और आज हम चलने वाले हैं मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में। तो चले
1: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी नई।

0: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। कुछ स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं ठहरते, वो यादों में बस जाते हैं, जैसे दादी के हाथ की गजक, मेले की गर्मा गर्म नान खटाई और मेरठ की वो रबड़ी जो सर्दियों में हर दिल को मीठा कर देती है।
1: और अब यही स्वाद सिर्फ मेरठ की गलियों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत मेरठ की रेवड़ी, गजक और नान खटाई अब दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाने जा रही है। सुनो।

0: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपके रेडियो का बेहतरीन प्रोग्राम। जी हाँ, तो बेहद ही खास शो है ये, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। और मैं हूँ आपका दोस्त आरजी आनंद, और मेरे साथ है
1: आरजे रीना।
0: तो आप सभी को हम दोनों की ओर से नमस्कार।
1: आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ तिल की खुशबू, गुड़ की मिठास और नान खटाई नरमी और मेरठ की आत्मा है।
0: कभी सर्दियों की सुबह मेरठ में बिताई है आपने?
1: बिल्कुल, सुबह सुबह धुंध, हाथ में कुल्हड़ वाली चाय और सड़क किनारे ताजी रेवड़ी,
0: वो और वो गर्मा गर्म गजक जैसे ठंड की ऑफिशियल मिठाई है।
1: आपको पता है दोस्तों, मेरठ की रेवड़ी और गजक सिर्फ मिठाई नहीं, एक विरासत है। यहाँ पीढ़ियों से परिवार इस काम में जुड़े हुए हैं। कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ दादा से लेकर पोते तक यही कारोबार संभाल रहे हैं।
0: और एक खास बात, मेरठ की रबड़ी और गजक को GI टैग भी मिल चुका है।
1: GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब यह उत्पाद अपने क्षेत्र की विशेष पहचान रखता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय, वैसे ही मेरठ की गजक।
0: यानी कोई भी गजक बना ले, लेकिन मेरठ वाली बात हर किसी में नहीं होती आरजे रीना।
1: अब बात तो स्वाद की, जो नौ चंदी मेले की जान है नान खटाई।
0: उफ, घी से भरी हुई, ऊपर पिस्ता और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली।
1: लेकिन क्या आपको पता है नान खटाई की कहानी काफी दिलचस्प है?
0: जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब ब्रेड और खटाई यानी बिस्किट जैसी बेक्ड चीज।
1: और भारत में से देसी स्वाद मिला, इलायची, देसी घी, बेसन, सूजी और फिर पैदा हुई वो नान खटाई, जिसके बिना मेला अधूरा लगता है।
0: मेरठ का नौचंदी मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, भावना है।
1: और इस मेले की सबसे बड़ी पहचान नान खटाई और हलवा पराठा।
0: मैं तो मेलों में झूले से ज्यादा नान खटाई के स्टॉल ढूंढता था,
1: और मैं तो पैकेट घर लेकर आती थी।
0: मेरठ के पुराने बाजारों में आज ऐसी दुकानें मिल जाती है जहां कई पीढ़ियों से यही मिठाइयां बनाई जा रही हैं। इन मिठाइयों की खुशबू लोगों को दूर दूर से अपनी ओर खींच ले आती है।
1: नान खटाई एक तरह का पारंपरिक भारतीय बिस्किट है। यह बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। इसे मैदा, सूजी, घी, चीनी और इलायची से बनाया जाता है।
0: कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब रोटी और खटाई यानी बिस्किट।
1: मेरठ की नान खटाई खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें देसी घी का भरपूर इस्तेमाल होता है। पुराने समय में इसे मिट्टी के तंदूर में पकाया जाता था, जिससे इसका स्वाद और खुशबू दोनों अलग होते थे।
0: सबसे पहले घी और चीनी को अच्छी तरह फेटा जाता है, फिर उसमें मैदा, सूजी और इलायची मिलाई जाती है। छोटे छोटे गोल आकार देकर इन्हें धीमी आंच पर बेक किया जाता है।
1: जब यह पकती है तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है।
0: मेरठ में नान खटाई सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी का भी हिस्सा है। घर में आए मेहमान और चाय के साथ नान खटाई परोसी ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है?
1: अब तो बात करते हैं रेवड़ी की। दोस्तों, सर्दियों का मौसम और रेवड़ी, यह रिश्ता बहुत पुराना है। रेवड़ी तिल और गुड़िया चीनी से बनाई जाती है। यह छोटी छोटी गोल मिठाई होती है जो खाने में कुरकुरी और स्वाद में बेहद शानदार लगती है।
0: मेरठ की रेवड़ी में तिल की गुणवत्ता और गुड़ का संतुलन बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ की पारंपरिक दुकानों में आज भी हाथ से रेवड़ी बनाई जाती है।
1: सबसे पहले गुड़ या चीनी को गर्म करके गाढ़ी चाशनी बनाई जाती है, फिर उसमें भुने हुए तिल मिलाए जाते हैं। इसके बाद छोटी छोटी गोलियों का आकार दिया जाए।
0: यह काम बहुत तेजी और कुशलता से करना पड़ता है क्योंकि मिश्रण जल्दी सख्त हो जाता है।
1: तिल में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। स्वाद में यह शरीर को गर्म रखता है और ऊर्जा देता है।
0: इसीलिए पुराने लोग कहते थे, सर्दी में तिल खाया करो, शरीर को ताकत दिया करो।
1: अब बारी है मेरठ की मशहूर गजक की। गजक उत्तर भारत की एक पारंपरिक मिठाई है जिसे खास तौर पर ठंड के मौसम में खाया जाता है। यह तिल, गुड़ और घी से बनाई जाती है।
0: बहुत लोग रेवड़ी और गजक को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। रेवड़ी छोटी और सख्त होती है, जबकि गजक परतदार और हल्की कुरकुरी होती है।
1: यह सिर्फ मिठाई नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पुराने स्वादों की पहचान है। इसमें छिपा है अपनापन, मेहनत और भारतीय खान पान की खूबसूरत विरासत।
0: अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरठ की मिठाइयों की चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है?
1: तो दोस्तों, इसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन योजना।
0: और इसमें सिर्फ बड़े उद्योगपति नहीं बल्कि छोटे हलवाई, घरेलू महिलाएं, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमी भी शामिल हो सकते हैं। मतलब अब शर्मा जी की गजक सीधे दुबई और लंदन भी जा सकती है।
1: और यही तो लोकल टू ग्लोबल का असली सपना है।
2: भैया नमस्कार।
3: नमस्कार
2: भैया, ये जो एक योजना है सरकार की, एक ODOC योजना, इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बींगा व्यापारी?
3: ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की तरफ से, क्योंकि इसमें क्या है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन टेस्ट, ये चीज है एक जनपद एक स्वाद। हमारा मेरठ स्वाद नगरी है और उसी नगरी का एक पेश है नानखटाई। नानखटाई एक ऐसा व्यंजन है जिसमें ना कोई केमिकल है ना कुछ है, इसमें सिर्फ बेसन है, बूरा है और बाकी प्यार है मेरठ का भरा हुआ। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इससे क्योंकि हम जैसे छोटे व्यापारियों को आगे प्रोत्साहन मिल रहा है और युवा होने के नाते हमें आगे के और स्टार्टअप के और मौके मिल रहे हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमें हर चीज़ सहायता देती है, चीज़ करती है, मदद देती है, तो उसमें हम भी एजेंट सिक्योर हो जाते हैं कि अगर मान लो हमें कुछ करना है तो हमें पता है कि गवर्नमेंट से हमें मदद मिल जाएगी। और गवर्नमेंट के साथ साथ हमें जैसे पैकेजिंग के लिए आइडिया मिल रहे हैं और बहुत चीज़ें, तो वो हमें डे बाई डे नई नई गाइडलाइंस मिलती रहती हैं उससे।
2: और साथ ही अब जैसे भारत में तो नानखटाई मशहूर है ही, अब वैश्विक स्तर पर पहचान बनने वाली है इस योजना के माध्यम से।
3: जी बिल्कुल, वैश्विक स्तर पर बिल्कुल बनेगी, क्योंकि अब जो हम यहाँ पर रह रहे हैं मेरठ से, अब जो मेरठ का युवा बाहर जाके अमेरिका रहने लग गया, कनाडा रहने लग गया, वो उन्हें जो होती थी वहाँ पर जाके बोले एक क्रेविंग होती थी कि मीठा नानखटाई से खानी है या रेवड़ी से खानी है, उन्हें मंगानी है। तो अब क्या है, इस चीज से जब ये आ जाएगी, अब हमें भी फ्लेक्सिबिलिटी और मिल गई, ब्रांडिंग मिल गई, हर चीज मिल गई, तो उससे बहुत फायदा पड़ेगा।
2: तो योगी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का किस तरह से आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे?
3: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आपने इसी स्कीम को चालू करा और इससे आपने युवाओं को प्रोत्साहन दिया, छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया, बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, जब कोई विदेशी पहली बार मेरठ की रेवड़ी खाएगा, उसे सिर्फ तिल और गुड़ का स्वाद नहीं मिलेगा बल्कि उसे मिलेगा भारत का दिल।
0: उसे महसूस होगा कि यहाँ की गलियाँ, यहाँ के मेले, यहाँ की ठंड और यहाँ के लोग,
1: क्योंकि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो आपको संस्कृति से भी जोड़ता है
0: और शायद इसीलिए हर शहर का स्वाद उसकी पहचान बन जाता है।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप रेवड़ी खाए तो याद रखिए, ये सिर्फ मिठाई नहीं मेरठ की विरासत है।
0: और कोने में जाने वाला कल यही स्वाद न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो की दुकानों में भी बिक रहा हो।
1: लोकल स्वाद, ग्लोबल अंदाज।
0: तो दोस्तों, आप सुन रहे थे आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, जहां बातें होती है दिल से दिल तक। श्रोताओं, अब लेते हैं हम आपसे जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे एक और नई कड़ी में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
5: क्या मेरी कसम,
4: मिस कर दिया तो रीलोड।
6: चाय चाय चाय,
4: सुनिए बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
7: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
8: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
7: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
9: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
10: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
4: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास।

बहुत ही बेहतरीन गाना फ्लैशबैक में ले गया ना आपको ये गाना, मुझे भी पता है भैया एकदम पुराने वाले टाइम में ले गया, काफी नॉस्टैल्जिया और काफी ब्यूटीफुल ट्रैक था। ऐसी कमाल की मूवी थी, नदीम श्रवण का म्यूजिक, अलका याग्निक, कुमार शानू की आवाज, मूवी का टाइटल ट्रैक अभी आप एंजॉय करे थे। ये मूवी मैंने फर्स्ट टाइम अपनी बुआ जी के घर देखी थी भाई, बड़ी कमाल की फिल्म लगी मुझे, ये गाने बहुत ही अच्छे हैं इस मूवी के। अभी आगे बढ़ते हैं, वेलकम बैक, आप सभी के 8:55 हो गए स्टेशन क्लॉक में, आप आनंद के साथ हैं। फ्राइडे की सुबह है ये, शुक्र है कि आज शुक्रवार है। शुक्राना करना तो बनता है अपने उन प्यारे दोस्तों का, उन प्यारे नेबर्स का, उन प्यारे रिलेटिव का, उन प्यारी फ्रेंड सर्कल का जो हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं बिना किसी कहते हैं ना कि लालच के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आपके साथ खड़े हैं, ऐसे लोगों को थैंक्स करना बनता है यार। आज की सुबह शुक्राना करिए उन लोगों का। वेलकम बैक है, एक बार फिर से रिहाना जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं। चमन लाल साहब भी जुड़ चुके हैं पुतली घर रोड से, डॉक्टर सुरेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह प्रेम नगर से, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। एंड डॉक्टर लतिका जी जुड़ी हैं, गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ आर यू? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, लिखती है मैम मैं अभी ऑन द वे हूँ और आपको सुन रही हूँ आनंद, बहुत ही अच्छे गाने और इन्फॉर्मेशन आप देते हैं, थैंक यू सो मच मैम, इट मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, माई प्लेजर मैम, आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगती हैं और हम उसी तरीके से प्रिपेयर करके भी चीज़ों को लेकर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज 19 जून का इतिहास क्यों खास है, क्या कुछ स्पेशल रहा है आज के दिन। तो आपको बता दें क्लोन जर्मनी में समूह 8 शिखर की बैठक प्रारंभ हुई थी सन 1999 में, आज के दिन श्रोताओं। और आपको बताते चलें आज के दिन एक और खास चीज जो थोड़ी सी डिफरेंट बनाती है आज के इतिहास को, वो क्या चीज़ है बस अभी इमिडिएटली बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक और खास चीज की जो आज के दिन रही। आपको बताते जापान ने उत्तर कोरिया को परमाणु परीक्षण मामले में चेतावनी दी थी सन 2006 में, वो दिन आज ही का था होता हो। जी हाँ, और आपको बताते चले आज ही के दिन जो है सुदर्शन अग्रवाल जो उत्तराखंड और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल रहे, उनका जन्म हुआ था 1931 को आज ही के दिन। और आज ही के दिन भारतीय नेता और भारत के सांसद के सदस्य जिन्हें हम राहुल गांधी के नाम से जानते हैं, उनका भी आज जन्म हुआ था श्रोताओं। आज ही के दिन उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाता है 1970 में, आज ही के दिन 19 जून को उनका जन्म हुआ था श्रोताओं। और आपको बताते चले एक और खूबसूरत नाम जो आज के दिन को और भी खूबसूरत बनाता है, हाँ जी, प्रखर चिंतक एंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सार्वजनिक कार्यों के लिए समर्पित कार्यकर्ता थे माधव राव जी, इनका भी जन्म हुआ था। राष्ट्रीय भाषा के हिंदी ये बहुत ही पॉपुलर प्रखर चिंतक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्हें मैं अभी जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, इनका जन्म हुआ था श्रोताओं आज ही के दिन सन 1871 को। जी हाँ, एंड आज विश्व एथनिक दिवस भी मनाया जाता है, इस पर भी हम डेफिनेटली चर्चा करेंगे। और इसके अलावा आज और भी तमाम सारे स्पेशल दिवस जो है मनाए जाते हैं, हर साल कुछ ना कुछ विशेष होता है श्रोताओं, और हर दिन कुछ ना कुछ खास होता है, हर दिन की तारीख पे हम कुछ ना कुछ स्पेशल सेलिब्रेट करते हैं। और आज आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे हम इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। 8:58 का समय हो रहा है, स्टूडियो की घड़ी बहुत तेजी से भाग रही है, आज नेशनल वॉच डे मनाया जाता है, तो उस पर भी हम डेफिनेटली बात करेंगे, जो घड़ी है ना, घड़ी क्लॉक, उस पे भी बात करेंगे। आज बहुत ही स्पेशल दिवस है, आप मेरे साथ ऐसे ही ट्यून इन रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। ढेर सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का दिल से थैंक यू, इतने अच्छे अच्छे मैसेज आप पहुंचा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत मैसेजेस के लिए। और लगातार हमारे श्रोता साथी जुड़ रहे हैं, एक छोटा सा सवाल भी होगा जिसका जवाब अगर आप हमें पहुंचाएंगे तो हमें और भी खुशी होगी। बस अभी लौट कर आते हैं तो फिर आपको वो डेफिनेटली सवाल बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और बहुत ही अच्छा गाना जो डेफिनेटली आपको फ्लैशबैक में 100% लेकर जाएगा, ये वो गाना है जो हमने टीवी पे बहुत सुना है, ऑटो वाले रिक्शा भैया, मतलब जो ऑटो वाले भैया होते थे रिक्शा ऑटो वाले, वो तो चलाती थी, हमारे पड़ोस वाले आंटियां चाचियां सब फुल ऑफ वॉल्यूम के साथ इस गाने को बजा रहे होते थे सुबह सुबह। मैं बता रहा हूँ मेरे गली मोहल्लों में लोगों के चूल्हे नहीं जलते थे जब तक उनकी ये म्यूजिक ना प्ले हो जाते थे, बता रहा हूँ, मतलब गाने चल रहे हैं, खाने बन रहे हैं, सफाइयाँ चल रही हैं, एक अलग ही माहौल होता था यार। और ये गाना सबसे ज्यादा अंताक्षरी में यूज हुआ है भाई, फ्रॉम द फिल्म मुझसे शादी करूंगी, इस मूवी से बहुत ही अच्छा गाना निकाल रहा हूँ। उदित नारायण साहब की आवाज है, अलका याग्निक जीत साथ दे रही है, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: हाय दयन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
5: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
6: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
5: पर पापा।
6: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
7: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
8: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
9: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
5: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।

वेलकम बैक है लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। प्रोग्राम है बिंदास मॉर्निंग, ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, बातें वही होती हैं जो आपका दिल चाहता है। एंड माय नेम इज आरजे आनंद, यस ऑफ कोर्स मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त। एवरी मॉर्निंग मंडे टू सैटरडे होते हैं आपके रेडियो सेट पर, जहां आपसे करते हैं ढेर सारी बातचीत। और अभी फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 9:07। लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ा सा लेट होंगे लेकिन कोई बात नहीं, भागते दौड़ते फिर से वापस आपके स्टूडियो में। अरे यार बिल्कुल आपके स्टेशन पर हमने तो एंट्री दे ही दी है। फिलहाल मौसम एब्सोल्युटली ऑसम हो रहा है यार। आज के इस मौसम की फोटो तो बनती है यार, जरा मेरे को फोटो शेयर करो फटाफट से 9837896896 पर। कैसे हो रहा है बाहर का मौसम जरा बताओ यार अपने को। हवाएं चल रही हैं आज 4 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से। टेम्परेचर है अभी 31 डिग्री सेल्सियस। एयर क्वालिटी बिल्कुल कतई अच्छी नहीं है बॉस। ह्यूमिडिटी 50% ठीक ठाक नहीं है बिल्कुल भी। विजिबिलिटी इज ओके ओके। एंड ये वेदर आगे और भी गर्माहट वाला होने वाला है। तो भैया आप जो है थोड़ा सा ठंडक रखो बाजी, सब्र रखो। मैं अच्छी गाने लेकर आया हूँ आज, टेंशन ना लो आप। एंड आज बहुत ही स्पेशल डेज मनाया जाता है, दिस इज बहुत सारे डेज होते हैं बट आज का जो डे है सबसे स्पेशल जो मुझे लग रहा है वो है आज नेशनल वॉच डे, है ना। तो ये दिन अपने आप में बहुत ही खास है, हमारी घड़ी का दिन है। घड़ी घड़ी सबकी जिंदगी में बहुत स्पेशल होती है ना। आपकी घड़ी ने आपको ज्यादा कब परेशान किया सच बताना, जब वो आगे भागती है तब या जब वो पीछे रहती है तब। मुझे तो यार जब ये आगे होती है ना घड़ी, सच बता रहा हूँ ऐसा लगता है ओ भाई गॉड कितनी जल्दी 8 बज गए यार, भागो भागो। स्टेशन की घड़ी में देखते हैं चलो अभी 5 मिनट है, तो मतलब अपने घर की घड़ी को हमेशा आगे रखना चाहिए कुछ लोगों का ऐसा कहना है। एंड वो चीज़ मैंने भी फॉलो की लेकिन कई बार मुझे बड़ी इरिटेशन भी हुई थी यार, क्योंकि मेरे को लगता था ओ माय गॉड जल्दी भागना पड़ रहा है। लेकिन हाँ स्टूडियो आके या अपने प्लेस पे पहुंच के लगता है कि चलो 5 मिनट पहले आ गए। आपने कभी अपनी घड़ी को आगे रखा है टाइम से पहले, या कभी अपनी आपकी घड़ी पीछे हो गई हो? आज नेशनल वॉच डे पे आप बताओ आपकी जिंदगी में आपका यादगार वक्त कौन सा रहा है, आप मुझे ये भी बता सकते हैं। आज नेशनल वॉच डे है यार, आज घड़ी का दिन है, क्लॉक का दिन है, तो आपके लिए कौन सा वो घड़ी, आपकी शुभ घड़ी कौन सी रही है? यू कैन टेल मी 9837896896। आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हो। एक घड़ी वाली मूवी आई थी जिसमें ना एक हीरो होते हैं उनके पास एक वो गायब होने वाली वॉच होती है, आपको बताया क्या वो कौन सी मूवी थी? मतलब वो कभी भी घड़ी पहन के गायब हो जाते थे, कभी भी किसी की भी बात सुनने लगते थे। एंड डू यू रिमेम्बर, आपने ये पिक्चर डेफिनेटली देखी होगी, इसमें एक बहुत ही कमाल के एक्टर थे, बहुत ही बढ़िया आइकॉनिक मूवी रही है, बहुत ही पॉपुलर मूवी रही है। वैसे आप मुझे बताओ, चलो खैर सारी बातें छोड़ो, आज नेशनल वॉच डे के मौके पे आपकी घड़ी आपने कभी आगे करी है जानबूझ के, या कभी आपकी फैमिली ने करी हो उसको देख के फिर आपको लगा यार भागो जल्दी टाइम निकल गया है, या आपकी घड़ी में आपको देख के ऐसा लगा कि यार वाह ये घड़ी कितनी प्यारी है यार, ये कितना प्यारा टाइम है यार, काश ये टाइम यहीं रुक जाता, यहीं थम जाता, कितना स्पेशल टाइम है। आपके लिए वो कौन सी शुभ घड़ी रही है, कौन सा वक्त आपकी जिंदगी में सबसे ज़्यादा मेमोरेबल और यादगार रहा है? आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हो, जो भी आपको यू नो सही लगता है आप मुझे मैसेज करो यार। Yes, I'm sure बहुत सारे लोग मेरे साथ enjoy कर रहे हैं हमारे शो को, and of course हम भी आपके साथ enjoy कर रहे हैं because this is बिंदास morning, तो बिंदास बातें of course होनी चाहिए बिंदास morning में, and जब बिंदास बातें होती हैं बिंदास morning में तो शो automatically अच्छा हो जाता है। और अभी अच्छा होगा एक बहुत ही अच्छा गाना अगर मैं प्ले कर दूँ तो ऑफकोर्स यार आपके लिए अच्छा गाना निकल गया है इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है बिंदास morning। नीरज श्रीधर, नीति मोहन की आवाज, बहुत ही प्यारा गाना है, फ्रॉम द फिल्म हम शक्ल से निकाल रहा हूँ। इस गाने के साथ आगे बढ़ेंगे आज की सुबह। म्यूजिक डायरेक्टर है हिमेश रेशमिया, समीर रंजन साहब ने लिखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक स्टारिंग बाय तमन्ना भाटिया एंड सैफ अली खान साहब। चलो इसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे और थोड़ा डांस भी करेंगे। आप सुनते रहिए बिंदास मॉर्निंग, डोंट गो एनीवेयर।

ट्रैक, हर्षदीप कौर की आवाज, शंकर महादेवन दे रहे थे साथ। राशि फिल्म से एंजॉय कर रहे थे आप। विकी कौशल एंड आलिया भट्ट, क्या लगे यार, आलिया भट्ट ने क्या एक्टिंग की है। काफी इमोशनल कर देने वाला ट्रैक, यू नो सीरियसली आई लूज माय माइंड, आई डोंट नो, ये गाना सुन के ना बड़ी यू नो इमोशनल वाली फीलिंग आने लगती है। बहुत ही प्यारा गाना था यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्राइडे की सुबह ऐसे गाने सुन के मतलब

0: एक अलग ही दिमाग में सीन क्रिएट हो जाते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। खैर आगे बढ़ेंगे यार, ये है फ्राइडे की सुबह, वीकेंड है। आप जहां भी जा रहे हैं, आप दिल्ली रोड जा रहे हैं, आप कांच रोड जा रहे हैं, आप जीरो पॉइंट पे हैं, आप गागन पे हैं, आप स्टेशन रोड हैं या आप कचहरी रोड हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं यार, ऑल द वे बेस्ट। आप अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, वेरी नाइस यार। देखो मैं आगे हूँ, आप भी जाओ, फुल ऑफ एनर्जी के साथ जाओ, पॉजिटिविटी के साथ जाओ। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, आपके अंदर का जो एक पोटेंशियल, उसको जगाने के लिए मैं डेली आ जाता हूँ, मंडे टू सैटरडे, यहाँ पर आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन पे। आप चाहे गाड़ी में सुन रहे हो, आप घर में सुन रहे हो, आप मोबाइल पे सुन रहे हो, आप जहां भी मुझे सुन रहे हो, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो एनर्जी है, ये जो पॉजिटिविटी है, जो ताजगी है, इसको ऐसे ही मेंटेन रखना है। जो सुपर डुपर डोज है ना आपकी पॉजिटिविटी का, आई डोंट नो ये आनंद है या फिर आपकी खुद की प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी है कि आप मुझे सुनके और ज्यादा हैपनिंग फील करते हो, तो यार ऑल थैंक्स टू यू यार, थैंक यू वेरी मच फॉर यू ब्यूटिफुल लव यार। आप लोग बहुत प्यारे मैसेज भी कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और अभी स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 9:21। आपको बताता हूँ कौन सी कंट्री में अभी 15 साल से कम उम्र के बच्चों को स्मार्टफोन चलाने के लिए, मतलब सोशल मीडिया चलाने के लिए पूरी तरह बैन कर दिया गया है। एक बार फिर से अलग अलग कंट्रीज में जो है ये बैक टू बैक डिसीजन आ रहे हैं। मुझे लगता है कि यार अपने भारत में भी होना चाहिए क्या ऐसा, क्या लगता है आपको? अभी इस पर डिस्कस करेंगे ना यार।
1: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: क्या मेरी कसम,
1: मिस कर दिया तो रीलोड।
3: चाय चाय चाय,
1: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
6: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
7: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
8: कॉल 8826213131।
0: थैंक यू सो मच गाइस। फिलहाल ये छोटे से ब्रेक थे, ये हो गए खत्म हमारी एंट्री वापस। फोन पे को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, फटाफट से आपको बताते हैं। सारे लोग आजकल डिजिटल हो गए हैं, सब लोग ऑनलाइन पेमेंट करने लगे हैं, चाहे वो अपने सब्जी वाले भैया हो, जो ये वेंडर्स होते हैं, चाहे ऑटो रिक्शा वाले भैया हो, मतलब हर कोई, शॉपकीपर से लेकर हर कोई इस्तेमाल कर रहा है आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स, हर कोई यूज कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, हमारा भारत डिजिटल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, सब लोग अब इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अभी मुद्दे की बात आपको बताता हूँ फटाफट से। फोन पे को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर किसी यूजर्स का फोन पे वॉलेट पिछले 12 महीनों से इनएक्टिव है तो कंपनी हर 3 महीने में 100 रुपये का आपसे एक्स्ट्रा चार्ज वसूल सकती है, यानी कि आपको ये पे करना पड़ सकता है। इस खबर के बाद यूजर्स के बीच काफ़ी जो है चर्चा तेजी से हो गई, और कहा तो ये भी जा रहा है कि भैया ये नियम सिर्फ वॉलेट यूजर्स पर ही लागू होगा, जो लोग नॉर्मली UPI ट्रांजेक्शन करते हैं इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं यूजर्स अपने वॉलेट को एक्टिव करके KYC पूरा करके इस चार्ज से बच सकते हैं। अगर सपोज दैट आपके पास UPI है, आप UPI का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप उसमें वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर आपका ये वॉलेट अनएक्टिव है, तो प्लीज़ आज ही इसकी KYC कंप्लीट कराओ, इसको एक्टिव करो। अगर आपने ये प्रोसेस किया, KYC कराया, अपना वॉलेट एक्टिव कर लिया, तो आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आप एक्स्ट्रा चार्ज से बच सकते हैं। और अभी इस मामले की जो है कंपनी की ओर से अभी जो एक मेन इनिशिएटिव है, जो पक्का वाला बयान है, वो अभी आना बाकी है। कुछ रिपोर्ट ने ऐसा दावा किया है, बाकी डरने की कोई जरूरत नहीं। बट अगर फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर अनफॉर्चुनेटली आपका फोन पे वॉलेट मतलब अनफॉर्चुनेटली इनएक्टिव है, तो प्लीज अभी चेक आउट कीजिए। और मैं तो कहता हूं यार, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपना आपका बैंक अकाउंट, इन सबकी KYC ना बीच बीच में प्लीज कराते रहिए अपडेट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अपनी ये छोटी छोटी चीजें, इनको आपने ध्यान देना है यार, बहुत जरूरी है। लाखों यूजर्स का इंतजार खत्म हो चुका है। मीटा ने अपने सब्सक्रिप्शन वन को व्हाट्सएप में रोल आउट कर दिया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो लोग व्हाट्सएप यूजर्स हैं, ऑफ कोर्स व्हाट्सएप तो हर कोई चलाता है, तो अभी ये खबर व्हाट्सएप यूजर्स के लिए है कि प्लान मीटा वन को व्हाट्सएप में रोल आउट कर दिया गया है। कंपनी ने व्हाट्सएप प्लस का इन ऐप सपोर्ट को इसमें मतलब पूरी तरह जोड़ दिया गया है। इसका मतलब कि अब आप ऐप छोड़े बिना ही यू नो कंपनी के इस ऑल इन वन प्रीमियम का कॉम्बो का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की सभी VIP सर्विस को यू नो मतलब एक ही साथ एक्सेस एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा। एंड भारत में व्हाट्सएप प्लस की जो मासिक सब्सक्रिप्शन कीमत है वो 79 रुपीज प्रति माह है, यानी कि एक और नया फीचर आपको मिलने वाला है। एंड इस प्लान में यूजर्स को एक महीने में फ्री ट्रायल मतलब ट्रायल भी मिलेगा। एंड व्हाट्सएप प्लस एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान है जिसमें यूजर्स को कस्टम थीम, एक्सक्लूसिवली आइकन एंड 20 चैट तक की यू नो पिनअप करने की सुविधा मिलेगी। यूनिक रिंगटोन्स जैसे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। हालांकि अभी आपको बता दें, सामान्य व्हाट्सएप पर चैटिंग, कॉलिंग और ये जो सेवाएं पहले वाली थी वो डेफिनेटली फ्री रहेंगी, और ये ऑफकोर्स हमारे लिए तो है ही, बट अगर कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम लेना चाहता है, यस ये प्लान 30+ यूजर्स के लिए है, जो लोग सब्सक्रिप्शन हर महीने ऑटो रेन्यू जिनका होता है या जिस यूजर को लगता है कि यार मुझे इसमें रोल आउट होना चाहिए, उनके लिए है। बेसिकली अब व्हाट्सएप पर रोल आउट हो चुका है व्हाट्सएप प्लस, इसका सब्सक्रिप्शन 79 रुपीज का चार्ज है। आपको पता है भी इंस्टाग्राम प्लस भी लॉन्च हुआ था रिसेंटली, मैंने आपको उसके बारे में बताया था कि अगर आप उसमें एक्स्ट्रा पे करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे इंस्टाग्राम पे, वैसे ही व्हाट्सएप पे भी अब एक नया यू नो रोल आउट हो गया है व्हाट्सएप प्लस। एनीवे, सुबह उठते ही बहुत सारे लोगों को लगता है यार कमर में दर्द हो रहा है, भैया आज हमारी गर्दन में बहुत दर्द है, कुछ समझ नहीं आ रहा, रात को हम तकिए पे सोए थे या नहीं सोए थे, ये दर्द आखिर सुबह सुबह होता क्यों है महसूस, इसके पीछे का रीजन क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे थोड़ी सी देर में ना। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, इंस्टाग्राम पे एक बहुत ही बड़ी भसड़ चल रही है पोहे एंड टोमेटो केचप को लेके। पता नहीं भाई क्या ही हो रहा है आजकल, ये इंस्टाग्राम पे कभी भी कुछ भी धड़ल्ले से वायरल हो जाता है। एंड ये टोमेटो केचप एंड ये पोहा, इसको लेके आपस में बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है सोशल मीडिया पे। क्या हुआ है पूरा मुद्दा आपको बताऊंगा कि ये पोहा एंड टोमेटो केचप को लेके इतनी लड़ाइयां क्यों लड़ रहे हैं लोग आपस में। एंड आई डोंट नो, लोगों के पास कुछ और काम नहीं बचा है क्या भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। जब मैं कभी कभी स्क्रॉल करता हूँ, मैं जस्ट मॉली सर्च करते हैं कि चल क्या रहा है आसपास में, और जब ये चीजें देखने को मिलती है कि भाई सिर्फ इस चीज को लेकर लड़ाई हो गई है कि भैया टोमेटो केचप मैं खाऊंगा नहीं, मैं पोहा खाऊंगा नहीं, मेरा फेवरेट पोहा है, अरे भाई जिसको जो खाना है खाओ, लड़ाई क्यों कर रहे हो यार। आई डोंट नो यार क्या चल रहा है, वेल ये टोमेटो केचप एंड पोहे को लेके क्या भसड़ चल रही है, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। मेरी दयाल की आवाज, बहुत ही प्यारा हॉलीडे फिल्म का गाना निकाल रहा हूँ, प्रीतम का म्यूजिक है, तू ही तो है ख्याल मेरा। आपका क्या ख्याल है, आज नेशनल वॉच डे मनाया जाता है, जिसपे मैंने आपसे पूछा है बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपकी शुभ घड़ी के बारे में बताइए, आपके लिए मेमोरेबल टाइम कौन सा था। आज वॉच डे है यानी कि नेशनल वॉच डे, इस पर आपकी घड़ी का टाइम कभी आगे रहता है या पीछे रहता है, कभी आपकी घड़ी का टाइम ऐसा हुआ है कि आपने जानबूझ के आगे कर दिया हो एंड फिर आप ही देख रहे हो तो आप ही भाग रहे हो, अरे यार ये क्या हुआ, टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया है, बट जब आप डेस्टिनी पे पहुंचे तो आपको पता लगा थैंक गॉड अभी 5 मिनट बाकी है, थैंक्स टू माय घड़ी जिसकी वजह से मैं जल्दी निकल कर आया हूँ। कभी कभी घड़ी मैंने देखा अक्सर फैमिलीज में जो घड़ियों का टाइम होता है ना 5 मिनट आगे ही रहता है। मैं सच बताऊं पीछे मत करना, बस आगे रखना, नहीं तो लॉस हो जाएगा। फिलहाल ये गाने सुनते हैं।

0: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
4: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
6: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
7: इस फादर्स डे अपने पापा को दीजिए प्यार और सम्मान का एक खास तोहफा।
8: हिंद न्यूज 9 डिजिटल न्यूज पोर्टल एंड FM मुरादाबाद 89.6 प्रस्तुत करते हैं फादर्स डे स्पेशल मूवी शो।
7: फिल्म गवर्नर 21 जून 2026 मिगलानी सिनेमा रामपुर रोड मुरादाबाद।
8: इस पहल को सहयोग प्रदान कर रहे हैं ब्रजलाल कृष्ण लाल ज्वेलर्स, जिज्ञासा हॉस्पिटल, कॉस्मोस हॉस्पिटल, भव्य हॉस्पिटल, गुलशन वेडिंग कलेक्शन, मधुरम ग्रुप, डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर एंड एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
7: अपने पापा के साथ बिताइए एक यादगार शाम और फादर्स डे को बनाइए और भी खास। फादर्स डे स्पेशल मूवी शो एंड इनिशिएटिव बाय
8: हिंद न्यूज 9
7: एंड FM मुरादाबाद 89.6।

0: क्या बात है यार, एक बेहतरीन गाना। और इस बेहतरीन से गाने के बाद सुपर डुपर डूज जो है आपकी बातों का जो मैसेजेस के जरिए लग रहा है ना, थैंक यू सो मच यार। ऑल थैंक्स टू माय ब्यूटीफुल लिसनर्स, थैंक यू सो मच वंस अगेन। यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद, वेलकम बैक हिजी। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, लेडीज एंड जेंटलमैन। आपको बता दिए, यूएई का एक बड़ा फैसला, 15 साल से कम उम्र के बच्चे अब सोशल मीडिया पर जो है पूरी तरीके से बैन हो गए। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को ध्यान रखते हुए सोशल मीडिया इस्तेमाल की न्यूनतम उम्र 15 साल तय कर दी है। इस फैसले के साथ यूएई ऐसा करने वाला पहला अरब देश बन गया है। आपको बता दें, नए नियमों के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट वहां पर नहीं बना सकेंगे, और साथ ही प्लेटफॉर्म यूजर्स की उम्र जो है उन्होंने सत्यापित करने का एकदम सख्त वाला, एकदम कड़क वाला रूल जो है वो लागू कर दिया है। वहां की गवर्नमेंट का कहना है कि ये कदम बच्चों की ऑनलाइन जोखिम और हानिकारक उनको कंटेंट से बचाने में काफी हेल्पफुल होगा। एंड एग्जैक्टली यार, मुझे लगता है कि बहुत सारी कंट्री अब ये इनिशिएटिव ले रही है, एंड आई थिंक जो छोटे बच्चे हैं ना उनको डेफिनेटली इस चीज से दूर रखना चाहिए। एंड दिस इज वेरी वेरी यू नो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, एंड आई अग्री एंड एब्सोल्युटली दिस इज वेरी वेरी अल्टीमेट इनिशिएटिव, बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक ये यार अपने इंडिया में भी होना चाहिए ऐसा। तो यार जो छोटे बच्चे हैं ना, मैं देखता हूँ बड़ों से ज्यादा छोटे बच्चे फोन जो है ज्यादा स्क्रॉल कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, ठीक है, हम और आप तो अपने काम के सिलसिले में चीजों को देखते हैं। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमारे फोन से ही कंप्लीट होते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के जमाने में सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। बट छोटे बच्चों के लिए, जहां हम उनको एंटरटेनमेंट के लिए चीज दे रहे हैं, उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत कम होती जा रही है। एंड कहीं ना कहीं जब बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे तो उनके अंदर एक शाइनेस बढ़ेगी, उनके अंदर वो अनकॉन्फिडेंस भी फील करेंगे, बाहर लोगों से बात करने में वो डरेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें जो बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं और ज्यादा क्रिएट हो सकते हैं, उनको हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो बेटर यही है कि छोटे बच्चों को ना फोन थोड़ा कम दीजिए और नेचुरल एक्टिविटीज पे उनको थोड़ा ज्यादा फोकस कराइए। 9:41 हो गए स्टेशन क्लॉक में, दिस इज फ्राइडे की सुबह। और अभी यहाँ पर आपके जो व्हाट्सएप आए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये जोरदार तालियां ओरिजिनल वाली मैंने आपके लिए निकाल दी है यहाँ से। एंड आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप मेरे पास आए हैं। मयंक भाई, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। इन्होंने लिखा है, हाय गुड मॉर्निंग जय श्री राम आनंद भाई, ऑफिस में मतलब जो है इन्होंने लिखा है, इंप्रेशन लाना होता है इसलिए 5 मिनट मैं वॉच अपनी आगे रखता हूँ। अगर मेरी वॉच आगे होती है तो मैं जल्दी पहुंच जाता हूँ, एंड अगर मेरी वॉच 1 मिनट भी पीछे हुई भाई तो मतलब सीधा हाफ आवर की सैलरी कट जाएगी भाई, इसीलिए मैं आगे रखता हूँ। ओ माई गॉड, इतने ज्यादा आपके ऑफिस में कड़क रूल है भाई, क्या ही हो रहा है, मुझे मारो यार। हाय राधे राधे आनंद जी, गुड मॉर्निंग, मैं अपनी वॉच हमेशा 5 मिनट आगे रखती हूँ, बट मैं वॉच कभी भी नहीं लगाती हूँ। ऑल राइट, क्योंकि मेरे पापा जी की वॉच की शॉप थी, बचपन से ही घड़ी हर तरह की घड़ी देखती आई हूँ, इसीलिए घड़ी लगाने का मन नहीं होता है। ऑल राइट, क्या बात है, घड़ियों में खेल रही हैं आप, आपकी तो घड़ी शुभ होंगी हर टाइम, बहुत ही बढ़िया। अलका वर्मा जी मेरे साथ जुड़िए बुद्धि बिहार से, थैंक यू सो मच अलका मैम। बबली अनजान एंड साथ में गीता कश्यप लिखते हैं, हाय गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, आप बहुत ही अच्छी जानकारियां देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो मैंने आपसे कहा था ना, ऐसी फिल्म भी आई थी हमारे बॉलीवुड में जिसमें एक वॉच होती थी एक हीरो के पास, एंड वो गायब हो जाते थे, किसी की बात भी सुनने लगते थे कहीं पर भी जाके, वो वॉच पहनकर ही वो यू नो गायब होते थे। आई डोंट नो कौन सी मूवी है, मुझे याद नहीं आ रही है, बट बहुत ही अल्टीमेट मूवी थी और बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत ही अच्छी यू नो स्टार कास्ट है उस मूवी के अंदर, एंड बहुत ही बढ़िया फिल्म है। अगर आपको पता है उसका नाम तो डेफिनेटली बताना। एक वॉच पहनते थे वो हीरो और वो गायब भी हो जाते थे। आई डोंट नो, सुबह सुबह मैं आजकल ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा हूँ इसलिए दिमाग की मेमोरी थोड़ी कम होती जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे को पिक्चर ही याद नहीं आ रही, इतनी बढ़िया मूवी है वो। आप में से किसी को पता है तो जरा व्हाट्सएप करके बताना यार, कौन सी फिल्म थी वो जिसमें वो एक हीरो के वजह ना एक वॉच होती थी, वो उसको पहन के गायब हो जाते थे। एक मैसेज मेरे पास आया, हाय गुड मॉर्निंग, माय नेम इज श्रिखा, आई एम फ्रॉम मानसरोवर, हाय आनंद, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग माय डियर, गुड मॉर्निंग श्रिखा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड आपने जो फोटो शेयर की उसके लिए थैंक यू सो मच यार। आगे जुड़ते हैं, मैसेज आया भावना का, लिखती है, गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं, कभी सोचते हैं कि आपकी कुछ तारीफ करें लेकिन कर नहीं पाते, शब्द छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि शब्द कहते हैं आनंद सर खुद में एक तारीफ है। वाओ, इट्स अ वंडरफुल मैसेज, थैंक यू सो मच, मत करो मेरी इतनी तारीफ कि हम बिगड़ जाएं जनाबे अली। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और मैसेज आया है, घड़ी की सुई रुकती नहीं है पर जो उसे देखता है वो एक पल को रुक जाता है, और उसी ठहराव में इंसान को अपनी असली पहचान समझ आती है। बाकी आरजे आनंद समझदार हैं, थैंक यू सो मच यार, एब्सोल्युटली बहुत अच्छा बोला आपने। आप लोग अपना जिम या जुम्बा योगा करके आ रहे होंगे, आई एम श्योर, थैंक यू सो मच गाइस। कल हमारा एक बहुत ही अच्छा कैंपियन होने वाला है, आई रिपीट, मैं फिर से बता रहा हूँ वंस अगेन, कल 20 जून को सैटरडे को हम लेकर आ रहे हैं बहुत ही अच्छा कैंपेन जिसका नाम है सखी सुरक्षा फ्री हेल्थ कैंप, जिसके अंदर आप डेफिनेटली आ सकते हैं। रामगंगा बिहार थाईचरी लॉन में होने वाला है। कल हमारी टीम आपको प्रॉपरली वहीं पर मिलने वाली है। कल सुबह 11 से 2 डेडिकेट होगा लेडीज का शो एंड आई एम श्योर आप वहां पे आएंगी तो आपको बहुत सारी एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, फ्री हेल्थ चेकअप्स होने वाले हैं एंड बहुत ही अल्टीमेट क्विज एंड प्राइज आप जीत सकती हैं। हमारे गिफ्ट पार्टनर है विजय ब्यूटी सेंटर एंड इनकी तरफ से बहुत ही अल्टीमेट प्राइज आप जीत सकते हैं कल आके वहां पे लेडीज, आपको मजा आने वाला है। एंड और भी बहुत सारे पार्टनर है, स्पॉन्सर्स है हमारे। कल अगर मैं यहाँ पे नाम लेने बैठूंगा तो शायद टाइम कम पड़ जाएगा, तो कल 20 जून को हम लोग आपको मिल रहे हैं रामगंगा बिहार थाईचरी लॉन के अंदर। सखी सुरक्षा फ्री हेल्थ कैंप हो रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, साथ में इन्फ्लुएंसर ऋषि गर्गंदी एंड मुरादाबाद डायरी। हम सब लोग मिलकर एक कुछ नया लेकर आए हैं, इन्फ्लुएंसर्स हमारे साथ जुड़े हैं, हम लोग उनके साथ जुड़े, कुछ नया किया है हम लोगों ने और बहुत सारी चीजें इसके अंदर होने वाली है। तो कल 20 जून को प्लीज आप लोग के पास टाइम है तो जरूर आइए। एक वॉइस नोट मेरे पास आया, जल्दी से इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास। आई नो दैट आप भी बहुत जल्दीबाजी में हैं, आप अपने घर की तरफ निकल रहे हैं या अपने ऑफिस की तरफ निकल रहे हैं, तो बिल्कुल पहुंचिए, जरा इनको सुनते हैं।
1: नमस्कार, कैसे हैं मुरादाबाद वासियों? मैं भूपी शर्मा नगर पंचायत पागबड़ा से बोल रहा हूँ। FM मुरादाबाद 89.6 के माध्यम से आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। जो प्रोग्राम है उसका नाम है बिंदास मॉर्निंग और RJ आनंद इसके प्रस्तुत करता है। योग्यता आपको शीर्ष पर पहुंचा सकती है लेकिन वहां अपने आप को बनाए रखने के लिए चरित्र की आवश्यकता पड़ती है। सुंदर आभूषण एवं वस्त्र हमें उतना खूबसूरत नहीं बनाते जितनी कि प्यारी सी मुस्कुराहट आपको बनाती है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहो। अगर आपके अंदर संतोष नहीं है तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको खुश नहीं कर सकती। नमस्कार, राधे राधे, सुनते रहिए FM मुरादाबाद, भेजते रहिए अच्छे अच्छे वॉइस नोट, भेजो ना यार, अच्छा लगता है कोई वॉइस नोट भेजता है तो, रेडियो वालों को भी और सुनने वालों को भी। इसीलिए आप भेजते रहिए अपने प्यारे से वॉइस नोट अपनी ही आवाज़ में जो सुनाई देंगे सभी को, और FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार, राधे राधे।
0: थैंक यू सो मच भैया, आपको भी नमस्कार, राधे राधे। एंड एक और वॉइस नोट मेरे पास आया, जरा ये भी सुनते हैं।
2: आनंद, आपने एक सवाल पूछा जो घड़ी पहन के जो है वो हीरो जो है पिक्चर का गायब हो जाता
0: जी,
2: था
0: जी, बिल्कुल।
2: उसका जवाब है मिस्टर इंडिया, जिसमें एक डायलॉग और था मोगैम्बो खुशी।
0: एब्सोल्युटली RJ आनंद खुश हो गया, मोगैम्बो का मुझे नहीं पता भरत भाई, बट थैंक यू सो मच, आपने मुझे याद दिलाया। जोरदार तालियां आपके लिए, आप बहुत मेहनत करके अभी घर पहुंच रहे होंगे। आई नो दैट आप अपना पूरा जुम्बा और जो भी आप करते हैं मतलब मॉर्निंग में एक्सरसाइज वो करके आप बैक टू होम जा रहे हैं, अच्छी बात है, आप पहुंचिए एंड थैंक यू सो मच। मुझे एग्जैक्टली ये अनिल कपूर साहब की मूवी थी एंड इसमें अमरीश पुरी थे, आई थिंक श्रीदेवी भी थी इसमें, बहुत बढ़िया यार, बहुत ही अच्छी फिल्म है मिस्टर इंडिया एब्सोल्युटली। उसमें एक वॉच होती है जो वो पहन के गायब हो जाते हैं एंड काश वो वॉच हमें और आपको मिल जाती तो कितना मजा आ जाता। सोचो यार हम अभी कहीं भी पहुंच जाते ना, मतलब आप सोच रहे हो, चलो आगे बढ़ते हैं, समझदार को इशारे का भी है। एंड अभी एक और अल्टीमेट गाना है, इसके बाद वापस आ रहा हूं। एक बहुत ही अच्छा कड़क क्वेश्चन है जिसका जवाब आप देंगे तो आज की सुबह आप क्या जीतेंगे थोड़ी देर में बताऊंगा। इस फादर्स डे अगर आप चाहते हैं कि भैया आप भी मूवी देखें अपने पापा के साथ तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारा रेडियो सुनना होगा क्योंकि बिकॉज दिस फादर्स डे 21 जून को बहुत ही अच्छी चीज हो रही है और आप अपने पापा के साथ मूवी देखने जा सकते हो। कैसे बताता हूँ ये भी जरा सी देर में, वी कम बैक, लौट कर आ रहा हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप बने रहिए आनंद के साथ, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बहुत ही अल्टीमेट ट्रैक निकाल रहा हूँ, वे हानिया, इसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। ये है फ्राइडे की सुबह

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
0: देखो ये वीकेंड है, फ्राइडे है एंड आज कितनी तारीख हो गई भाजी, 19 तारीख हो गई है आज, है ना, जून की 19 तारीख हो गई है। एंड जब वीकेंड आता है ना, फ्लैश बैक में जाने का मन करता है, थोड़े से पुराने टाइम में जाने का मन करता है ना, छुट्टी वाली वाइब भी आ रही होती है, इसलिए आपकी मेमोरी को थोड़ा और फ्रेश करते हैं।
3: दिल कट के, दिल कट के,
0: दिलर मेहंदी का गाना।

0: वेलकम बैक हित जी, बहुत ही अच्छा गाना भी आपने एंजॉय किया और मुझे उम्मीद है कि आप डेफिनेटली एंजॉय कर रहे होंगे इस शो को। थैंक यू सो मच, आपके मैसेजेस मुझे बता रहे हैं कि आप कितना एंजॉय कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी वेरी मच, इतने प्यारे प्यारे मैसेज आप कर रहे हैं और इतने सुंदर सुंदर लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सच में बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आप कर रहे हैं और आज हमने बहुत सारे डिस्कशंस किए, बहुत सारी बातें आपके साथ करी, बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई एंड मज़ा आ गया, यू नो, आपके साथ बातचीत करके। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही अच्छी एक योजना चल रही है जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जिससे रिलेटेड आप हमारे यू नो स्टेशन पे प्रोग्राम्स भी सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 225 पारंपरिक व्यंजनों की जो एक लिस्ट जारी की गई, जिसमें अपने मुरादाबाद के नाम भी शामिल है। यार आई एम सो ग्लैड। अच्छा, ये क्या चीज़, इसके बारे में डेफिनेटली बताऊंगा, बट अभी आगे बढ़ते हैं, मेरे कड़क क्वेश्चन का टाइम हो रहा है यार। वेरी वेरी क्विकली एक काम करते हैं, आज मैंने आपको बताया था नेशनल वॉच डे है, आज घड़ी का दिन सेलिब्रेट किया जाता है, इसी से रिलेटेड एक मेरा आज का सवाल है एंड अगर आप इसका जवाब देंगे तो आप विनर बन सकते हैं हमारे शो के। उसके लिए आपको क्या करना है, बेसिकली गाना प्ले कर रहा हूं, इसमें भी घड़ी का जिक्र हुआ है, बहुत प्यारा ट्रैक है, गाने का नाम बताना है, बीच का पार्ट प्ले कर रहा हूं, यस, आपको मुझे बताना है कौन सा गाना है।
1: चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से।
0: व्हाट्सएप करके बताना है, ये बस अभी इतना ही काफी, अभी आज के लिए बाबा इतना ही काफी है, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा जी। आप मेरे को बताओ अभी के अभी राइट नाउ, जो भी आपने गाना सुना है वो कौन सा गाना है। गाने का बेसिकली बीच का पार्ट है एंड दिस इज एब्सोल्युटली अल्टीमेट सॉन्ग, बहुत ही अच्छी मूवी है, माइंड ब्लोइंग पिक्चर, आप इसको देखोगे तो मजा आ जाएगा आपको। स्टारिंग बहुत ही अच्छी, स्टार कास्ट बहुत बढ़िया है, स्टार्स का नाम लूंगा तो ऑफकोर्स आप पकड़ लोगे यार, सारे क्लूज नहीं देने होते यार हर दिन, आप बस बताओ गाना सुन के पहचानो कौन सा गाना है।
1: चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से,
0: क्या सच्ची बात की है यार,
1: मिलता है
0: आए हाय
1: मुश्किल से।
0: चलो चलो बताओ बताओ बताओ आगे की लाइन आपको याद आ रही है, मुझे बताया तो व्हाट्सएप करो, जल्दी से उठाओ अपना फोन, टाइप करो अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, उसको सेंड करना है आपने मेरे व्हाट्सएप पे 9837896896 पर, ठीक है। नंबर बहुत सिंपल है, कोई एक्सक्यूजेस मत दो, फटाक से मुझे व्हाट्सएप करो और गाना मैं आपको सुनवा रहा हूँ एक अच्छा सा, इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, जब तक आप लोग गाना एंजॉय कर रहे हैं और मैं आपके सवाल का इंतजार कर रहा हूँ, आपके जवाबों का। सवाल तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, अब आप एक बढ़िया गाना सुनो। वरुण धवन का बेहतरीन गाना, साथ में जानवी कपूर, गाने का रिक्रिएशन बहुत अच्छा है, सुरुगम साहब की आवाज, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का ब्यूटीफुल ट्रैक।

क्या बात है यार, देखो गाना बहुत ही बढ़िया था। इस गाने के बाद जो है अब आगे बढ़ते हैं, अब आपकी थोड़ी ना हेल्थ की बात कर लेते हैं, बहुत जरूरी है। स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 10:02। गुड मॉर्निंग, फ्राइडे की सुबह है और अभी मेरा जाने का टाइम तो हो ही रहा है, बट जाने से पहले मैं आपको इमीडिएटली एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बताता हूँ। अगर आपके घर में ये बनती है तो भाई बहुत ही बढ़िया, अगर आप इसको खाते हैं तो और भी बढ़िया है। एंड अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ के साथ तो आपको ना इसमें बहुत सारे प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम मिलने वाले हैं और आपकी मॉर्निंग भी थोड़ी सी एकदम हेल्दी और एनर्जेटिक हो जाएगी। यस, आज मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ की जो बेसन से बनता है, बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है, बहुत ही बढ़िया होता है ये आपकी हेल्थ के लिए, एकदम हाई प्रोटीन कम कैलोरी वाला होता है और आपकी हेल्थ के बहुत ही बढ़िया। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो इससे बहुत सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। एग्जैक्टली, आज हम बात करने वाले हैं बेसन के चीले के बारे में। जो बेसन की रोटी होती है ना, बेसन के चीला अगर आप बनाते हैं, इमीडिएटली बन जाता है, बहुत जल्दी कुक हो जाता है एंड दिस इज वेरी वेरी इजी, जैसे कह सकते हैं पकाने वाला डिश, बहुत इजीली पकता है। अगर आप इसको दही के साथ लेते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया होता है। तो अगर आप आज सुबह ब्रेकफास्ट बनाने का सोच रहे हैं तो आप इसको डेफिनेटली बना सकते हो, बहुत इजीली बन जाता है, इमीडिएटली आप बना सकते हैं और दही के साथ अगर आप इसको खा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया होता है भाई। बेसन किस मतलब अगर आप बेसन का ये चीला बना के खा रहे हो सुबह सुबह तो ये आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा रखता है, आपके पेट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करता है। हाई प्रोटीन कम कैलोरी वाला ये होता है एकदम, जो ये मेरे जैसे वेजिटेबल लोग हैं, जो एकदम वेज लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है यार। एक तो इमीडिएटली जैसे मैं बता रहा हूँ बनी जाता है और जो शाकाहारी लोग होते हैं उनके लिए प्रोटीन का एक बड़ा सूत्र है, जिससे लंबे समय तक जो है आपका पेट भरा भरा आप महसूस करते हैं, बार बार आप स्नैक्स खाने से बच जाते हैं, इधर की चीज़ें खाने से बच जाते हैं। घर का बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया है, साफ सुथरा है, अच्छा है एंड अगर आप इसको लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप दही के साथ इसको खा रहे हैं तो भैया आपकी ये हड्डियों को और मांसपेशियों को मजबूत जो है प्रदान करता है, यानी कि दही कैल्शियम का खजाना होता है, बेसन प्रोटीन से भरपूर होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो आपकी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ दोनों ही ये स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो भैया देखो, अगर आप बेसन का चीला इस्तेमाल कर रहे हैं विद दही तो मजा आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो गर्मियां चल रही हैं, ऐसे में अगर आप ये लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया, शरीर को ठंडक और ऊर्जा दोनों ही ये प्रदान करेगा और आपकी बॉडी भी मतलब ऊर्जावान रहेगी, इंस्टेंट आपको एनर्जी मिलेगी, है ना। तो आप बेसन का चीला अगर आप बनाने का प्लान कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इमीडिएटली आप इसे कुक कर सकते हैं। इसमें आपको बस वही जो भी आप बेसिक मसाले डाल के भी बना सकते हो एंड अगर आप इसमें अनियन डालना चाहते हो, टमाटो डालना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो, आप इसमें छोटे छोटे वेजिटेबल्स भी इंक्लूड करके ऐड करके इसमें बना सकते हो, बाकी तो आपकी चॉइस है, आपको जैसा खाना है। इनफैक्ट बेसन का चीला अगर आप दही के साथ खा रहे हो सुबह सुबह, मतलब इससे बढ़िया ब्रेकफास्ट कुछ हो ही नहीं सकता यार। इसको खाने के बहुत सारे फायदे भी हैं, अभी वो फायदे तो मैं नहीं गिनवाऊंगा, बस आपको हर चीज में फायदा नहीं दिख रहा है, आपने खाना है तो मतलब खाना है, बढ़िया है। तो आप जब भी कभी खा रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे जरूर बताएं और अगर आज ही खा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। चलो फिलहाल मैं बस जस्ट सर्च कर रहा था कि आज क्या मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, मुझे लगा यार ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक तो बहुत जल्दी कुक हो जाती है और बहुत ही अच्छी रेसिपी और हमारी मॉर्निंग को थोड़ा एनर्जेटिक बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होती है, तो बस आज मैंने सोचा आपको यही बताते हैं। हालांकि सब लोग जरूर खाते होंगे, आई एम श्योर आप भी खाते होंगे बेसन की, तो सारी चीज़ें बड़ी अल्टीमेट होती है ना, बेसन की कढ़ी आप खाओ है बड़ी गजब की लगती है यार, कढ़ी चावल वन ऑफ माई फेवरेट यार। अरिजीत सिंह का गाना निकल गया फिलहाल कढ़ी चावल के नाम से, जरा हटके जरा बचके से बहुत ही बेहतरीन ट्रैक।

0: ऐसा बोलने वाला कोई सच्चा इंसान होना भी तो चाहिए यार।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
2: मॉर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: आवश्यक सूचना, 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉर्पोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।
6: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
7: तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए।
0: चलो इस गाने के बाद मैं इमीडिएटली बताता हूँ कौन बना है आज मेरे शो का विनर, बिकॉज आज मैंने आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था। मैंने आपको कहा था आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा गाना है।
7: चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है।
0: बिल्कुल, बहुत ही प्यारा गाना है। आज नेशनल वॉच डे मनाया जाता है, इस गाने में घड़ी का जिक्र हुआ है, तो इसीलिए मुझे लगा इससे बेटर गाना कोई हो ही नहीं सकता है आज की सुबह। तो मुझे इमीडिएटली बताओ जो अभी आप गाने का बीच का पार्ट सुन रहे हैं, बेसिकली कौन सा गाना है, इसको आइडेंटिफाई करना है।
7: चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल।
0: चलो जल्दी से जवाब दो अभी, नो बहाना नो एक्सक्यूजेस, कहीं मत जाना। RJ आनंद को ऐसे सुनते रहो, एक प्यारा सा गाना, उसके बाद वी कम बैक।

0: चाहिए।
1: फ्राइडे मॉर्निंग है, आप आनंद के साथ हैं। फिलहाल जाने का समय हो गया है। स्टीरू की घड़ी जो है भैया टाइम लगातार बता रही है 10:12। खुशी इधर आ चुकी है, आप उनके साथ डेफिनेटली एंजॉय करेंगे नेक्स्ट वाला शो। मैं निकलता हूँ यहाँ से। जाने से पहले मैंने आपसे एक बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन पूछा था आज की सुबह। मुझे आपको बताना था कि भैया ये जो गाना है वो कौन सा गाना है।
2: चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से,
1: और इसका सही जवाब देने के लिए कौन जुड़े हैं मेरे साथ लाइन पे। हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं? नमस्ते
3: आनंद जी, बहुत बढ़िया।
1: आपका नाम बताएं सर।
3: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आपका शुभ नाम, कहाँ से कौन साहब बोल रहे हैं जरा ये बताएं।
3: जी सर, रणवीर सिंह बोल रहे हैं।
1: जी रणवीर जी कहाँ रहते हैं? मुरादाबाद में।
3: मुरादाबाद में सर, इधर ही रहते हैं सर, लालबाग की तरफ।
1: अच्छा, लालबाग की तरफ रहते हैं, बहुत बढ़िया। और बताइए, सब बढ़िया चल रहा है जिंदगी में?
3: जी सब बढ़िया चल रही है। आप इतने अच्छे प्रोग्राम पेश कर रहे हैं सर, कहने बस पूछो मुझे, कुछ शब्द नहीं है हमारे पास।
1: अरे सर थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत के लिए। क्या अच्छा लगता है आपको सुबह सुबह ये बताइए आप।
3: सुबह सुबह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है सर।
1: जी जी जी, वही हम पूछ रहे हैं।
3: आप इतनी अच्छी तरीके से बोलते हैं, आपका नाम आनंद और लगता है आप एफएम सुनने वालों को आनंद ही आनंद कर देते हैं।
1: अरे सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बस मतलब ये है कि लोगों को आनंद आना चाहिए, है ना, दिन अच्छा बनना चाहिए, मजा आना चाहिए।
3: सबका दिल आप गार्डन गार्डन कर देते हैं सर।
1: अरे बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर जी, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। अच्छा तो रणवीर जी, आज जो मैंने सवाल किया था उसका सही जवाब क्या है?
3: कल हो ना हो
1: पिक्चर का गाना था ना।
3: जी बिल्कुल सर,
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: हम और आप मिलते रहेंगे रोज रोज।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रणवीर जी वैसे क्या करते हैं आप?
3: जी मैं कॉपी काम करता हूँ सर।
1: अच्छा अच्छा, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो कैसा चल रहा है काम का, सब बढ़िया चल रहा है?
3: जी बढ़िया चल रहा है, बस आपके प्रोग्राम भी सुनते रहते हैं
1: और काम भी करते रहते हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां आपके लिए, बिल्कुल सही जवाब। आपको गाना, वो गाने थोड़ा बहुत ध्यान में है, वो जो गाना था जो अभी चल रहा था?
3: नहीं सर, वो
1: हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, है ना, बहुत अच्छा गाना, बहुत प्यारा गाना है। थैंक यू सो मच, वेल आपने सही बताया, मुझे मैसेज किया उसके लिए। थैंक यू रणवीर जी, और सब बढ़िया चल रहा है जिंदगी में?
3: जी सब बढ़िया, आप बस ऐसी प्रोग्राम सुनाते रहिए।
1: हाँ,
3: और बस सब बढ़िया होता रहेगा।
1: क्या बात है रणवीर जी, कुछ कहेंगे? बहुत लोग आपकी आवाज़ सुन रहे हैं जाते जाते, कुछ कहना चाहेंगे आप?
3: बस यही कहेंगे सर, आप सुनते रहिए, और जो गर्मी पड़ रही है ठंडा पानी भी, ठंडा पानी कम पीजिए, नींबू पानी ज्यादा पीजिए सर।
1: हाँ बिल्कुल, मुझे लगा ठंडा पानी पीने की जगह मना करेंगे क्या। नहीं ठंडा पानी सही कहा आपने, थोड़ा कम पीजिए, नॉर्मल पानी ज्यादा अच्छा रहेगा पीने के लिए ना। हाँ,
3: और सर हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत
3: सर,
1: अच्छी
3: बात। एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे।
1: बिल्कुल सर
3: जी, सर ये बसों में या ट्रेनों में जो टिकट पीते हैं ना सर,
1: हाँ हाँ,
3: तो मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ सर, जैसे हम पीते हैं हमें शौक नहीं है,
1: बिल्कुल
3: तो और भी ऐसी हैं, आप भी होंगे शायद, आप भी नहीं पीते होंगे।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
3: तो सर जब हम नहीं पीते ना और आप नहीं पीते ना, तो ये जो लोग सड़क पे पीते हैं, धुआं छोड़ते हैं ना अपने ऊपर, तो सर इन्हें कुछ ध्यान रखना चाहिए, आप इस बारे में जरा कुछ इन्हें समझाइए।
1: बिल्कुल बिल्कुल समझाएंगे सर। रणवीर जी बहुत अच्छा संदेश आपने दिया, आपसे बातचीत करके हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया, शुक्रिया जनाब।
3: धन्यवाद,
1: नमस्कार भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रणवीर जी, बिल्कुल सही मैसेज दिया।

0: है, हर आदमी को अपना लाइफ एंजॉय करना चाहिए। एक
1: एब्सोल्युटली
0: एक
1: मैम,
0: पल बहुत ही कीमती है, उसका उपयोग करना
1: उपयोग
0: चाहिए,
1: करना चाहिए,
0: कल पे
1: बिल्कुल
0: नहीं टालना चाहिए कि
1: बिल्कुल
0: ये काम कल करेंगे, जो करना है आज कर लो,
1: बिल्कुल।
0: फुल एंजॉय करना
1: क्या
0: चाहिए।
1: बात है, सो ब्यूटीफुल मैम, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया अलका जी आपने, मजा आ गया। ये गाना डेफिनेटली मैं बोलूंगा खुशी प्ले करे आज शो में। फिलहाल थैंक यू अलका जी वंस अगेन। एक मैसेज आया था मेरे पास बीबी राधिका जी का, गुड मॉर्निंग जी, इन्होंने सही जवाब दिया था, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड हमारे पास मैसेज पहुंचा था यहाँ पर, हेलो हाय गुड मॉर्निंग, तेरी शर्ट दा बटन भाई गलत बाल, गलत गलत गलत जवाब हो गया आपका अरुण जी। वेल कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। इरशाद हुसैन अंसारी जी जुड़े हैं, डॉक्टर सैयद शारिक अली जी लिखते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आनंद जी, आपका शो सुनते रहते हैं, बहुत मजा आता है, अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लेकर आते हैं। एंड ये टाइटल ट्रैक था फ्रॉम द फिल्म कल होना होगा। रिजवान खान साहब जुड़े हैं ग्राम बीजना से, शुक्रिया रिजवान भाई अपनी हाजिरी लगाने के लिए, हेलो गुड मॉर्निंग आनंद जी। मोहसिन अंसारी जुड़े हैं मेरे साथ एकदम सही जवाब के साथ फ्रॉम बनारस, थैंक यू मेरे भाई। ललिता कश्यप नवीन नगर से जुड़ गई मेरे साथ सही जवाब के साथ। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम जुड़ गए हमारे अविनाश सतनाकर जी, गुड मॉर्निंग सर, कितो हो। एंड साथ में मेरे पास मैसेज आया है अंसार जी का, गुड मॉर्निंग। एंड सही जवाब के साथ जुड़े थे दुर्गेश जी, विजय ब्यूटी सेंटर से जुड़े हैं भरत नागपाल जी। मयंक शर्मा जुड़ चुके हैं मेरे साथ पीतल नगरी से, थैंक यू सो मच। भूपी शर्मा थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड साथ में बबली अनजान गीता गुड मॉर्निंग। एक और मैसेज आ गया शिव, हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है, गुड मॉर्निंग। नरेंद्र पाल सिंह मुरादाबाद से जुड़ गए हैं मेरे साथ आज की सुबह, थैंक यू एवरीबॉडी। अभी के लिए मैं निकलता हूँ, कल मिलेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, बाय।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7060022430।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
3: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548-539-705।
2: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
4: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
1: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपका फेवरेट शो लेकर, मॉर्निंग मसाला। जी हाँ, जहाँ ढेर सारा फन होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, एंड और क्या स्पेशल होता है। जी हाँ, आज क्या क्या स्पेशल होता है, कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, आज क्या कुछ खास है। जी हाँ, 19 जून की तारीख है आज, और दिन भी बहुत ही स्पेशल है। फ्राइडे का वीकेंड स्टार्ट हो चुका है और वक्त हुआ है 10:31, एंड खुशी आपके साथ है। और आपको पता है ना दोस्तों, जब खुशी आती है तो एवरी डे कुछ ना कुछ स्पेशल आपके लिए लेकर आती है, और आज क्या स्पेशल है वो सब आपको हौली हौली पता लगेगा। अभी तो खुशी आई है दोस्तों, और अभी बहुत सारे कामों में मैं व्यस्त थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए, बट माफी चाहेंगे। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, देर से आए दुरुस्त आए, ये बहुत अच्छी बात है। और आप भी मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं अपने फेवरेट शो में, अपना फटाफट से व्हाट्सएप मैसेज मुझे पहुँचा सकते हैं। कोई गाना अगर आप सुनना चाहते हैं आज स्पेशली खुद के लिए, हाँ देखो हम सबके लिए गाना सुनते हैं, राइट? कभी फ्रेंड्स के लिए, कभी पेरेंट्स के लिए, कभी सिस्टर के लिए, कभी ब्रदर के लिए, कभी अपने लाइफ पार्टनर के लिए। लेकिन एक गाना ऐसा जो खुद को आप डेडिकेट करना चाहते हैं, आज कुछ स्पेशल फील कराना चाहते हैं खुद को, क्योंकि मुझे लगता है सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, एंड सेल्फिश नहीं होता है, सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहते हैं ना, जब हम खुद से प्यार करते हैं तो सारी दुनिया हमसे प्यार करती है। और मैं आपसे कहती हूँ कि दूसरों से प्यार करने से पहले आप खुद से प्यार कीजिए। जब आप खुद से प्यार करेंगे ना, तो सारे लोग आपको प्यार करेंगे। और कोई ऐसा स्पेशल ट्रैक जो आप खुद को डेडिकेट करना चाहते हैं कि हाँ, ये गाना तो मुझ पर खूब जचता है, तो फटाफट से आप मुझे कीजिएगा। नंबर है 9837896896। फ्राइडे वाली मॉर्निंग है भाई, वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, लगना तो चाहिए ना कुछ स्पेशल। और आप काम में व्यस्त हैं मैं जानती हूँ, ओहो घर के इतने काम होते हैं ना कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं, है ना। तो आप चिंता मत करो, खुशी यहाँ पर आपके लिए लेकर आई है एंटरटेनमेंट का डोज, जो आपकी मॉर्निंग को बनाएगा और भी ज्यादा हैपनिंग एंड शानदार, अमेजिंग। तो बस बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए, चिपके रहिए ऑनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और एक स्पेशल गाना आप सभी के लिए। मुझे पता है कि आप भी शीशे में देख के खुद को शर्मा जाती हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप बहुत सोनी लगती हैं, नो डाउट, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। हाँ जी, और एक गाना मैंने आज की सुबह आप सभी के लिए यहाँ पर, सुबह सुबह मैंने कहा चलिए थोड़ी सी खुराफाती करते हैं, थोड़ा सा अमेजिंग ट्रैक अपनी जो फीमेल्स हमारी सुन रही हैं, जी हाँ जो बिमनिया, जो गर्ल्स हमें सुन रही हैं, उन सभी के लिए आज की सुबह ये अमेजिंग ट्रैक आप इंजॉय कीजिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों।

किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

Hi everyone, good morning. This is me. You're listening to FM Muradabad 89.6 और दोस्तों यहाँ पर वक्त हुआ है 10:41। अभी आपने जस्माने की आवाज में अमेजिंग ट्रैक सुना, मनु लहंगा ले दी महंगा जमरजानिया। दोस्तों ये गाना सुनकर ही ना माहौल ही रंगीन हो गया, लेकिन अब जरा एक प्यारी सी बात करते हैं। अक्सर हम अपनी मैंने आपको कहा कि अपनी फैमिली के लिए, अपने सिस्टर ब्रदर के लिए, दोस्तों के लिए, अपने किसी खास के लिए हम गाना डेडिकेट करते हैं, लेकिन आज मैंने आपसे कहा है कि ऐसा कौन सा गाना है जो आप सिर्फ अपने लिए सुनना चाहते हैं। जी हाँ, सुनना चाहेंगे, क्योंकि जिंदगी की भागदौड़ में हम सबका ख्याल रखते रखते कभी कभी खुद को ही भूल जाते हैं। याद रखिए, सेल्फ लव कोई स्वार्थ नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट की पहली सीढ़ी है। जब आप खुद की खुशी का ख्याल रखते हैं, खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, तभी आपकी मुस्कान दुनिया तक पहुंचती है। तो मैं कहती हूँ खुद से प्यार कीजिए और बताइएगा कुछ ट्रैक जो आप स्पेशली अपने लिए सुनना चाहते हो। जी हाँ, हम भी तो जाने कि हमारे श्रोता अपने लिए कौन सा ट्रैक आज चुनते हैं। फ्राइडे की मॉर्निंग है और क्या कुछ स्पेशल है बता दी मैं आपको। दोस्तों आज सेलिब्रेट किया जाता है 19 जून को नेशनल रीडिंग डे। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय पठन दिवस आज मनाया जाता है। कहते हैं एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त पूरी लाइब्रेरी के बराबर होती है, और अगर दोनों मिल जाएं तो जिंदगी और भी खूबसूरत बन जाती है। पढ़ना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं होता है, बल्कि सोच को बड़ा बनाना, नए विचार सीखने और दुनिया को बेहतर समझाने का सबसे आसान तरीका है। आज के डिजिटल दौर में जहां मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, वहीं अगर हम रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट भी किसी अच्छी किताब को दें तो हमारी भाषा, सोच और आत्मविश्वास तीनों में निखार आता है। अच्छा दोस्तों, क्या आपको भी किताबें पढ़ने का शौक है? तो मुझे आप बताइए आपकी फेवरेट बुक कौन सी है जो आप पढ़ना पसंद करते हैं। अगर आप भी रीडिंग करने के शौकीन हैं, किताबें पढ़ने के, बुक पढ़ने का अगर आपको भी शौक है, तो आप मुझे बताइए अपनी फेवरेट बुक जो आप पढ़ा करते हैं अक्सर। आप मुझे अपने मैसेज पहुंचा सकते हैं, मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896, और यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आ गए हैं तो मैं उनको जल्दी से शामिल करती हूँ बिना किसी देरी के, क्योंकि सब भी सब्री से इंतजार कर रहे हैं ना। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, आदरणीय प्रसारक जी को हमारा प्यार भरा आदाब, आपको भी आदाब। ये मैसेज हमें पहुंचाया है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान जी ने। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से निशाद हुसैन अंसारी जी का, और साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं शाद अंसारी जी, शहीद शारिक अली जी, बाबू अंसारी जी, महराज अंसारी जी, और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं बहुत अच्छी हूँ, आपका शो हम सुनते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, दिल से थैंक यू। एंड इन्होंने एक प्यारे सी गाने की रिक्वेस्ट भी हमें भेजी है, हम श्योर ये ट्रैक आपको सुनवाएंगे, लेकिन मैंने कहा है आज गाना जो आप खुद के लिए सुनना चाहते हैं, स्पेशली अपने आपको, अगर आज आपको हम ये मौका दे रहे हैं कि आप खुद को एक स्पेशल ट्रैक डेडिकेट कर सकते हैं, तो वो कौन सा गाना होगा जो आप खुद के लिए सुनना चाहेंगे बताइए। इतना सोचने की नीड नहीं है, क्योंकि आप खुद अपने, देखो इंसान अपने आप से बेहतर, कोई इंसान खुद को बेहतर तरीके से जान पाता है अपने आप को, दूसरा इंसान इतना नहीं जान पाएगा जितना आप खुद को अपने बारे में जानते हैं। तो बताइएगा एक गाना जो आपकी लाइफ पर एकदम परफेक्ट बैठता है, जो आपके
ले एकदम आपको शूट करता है वो गाना। कौन सा ट्रैक है जो आप खुद के लिए सुनना चाहते हैं आज की? हाँ, ये गाना तो सिर्फ मेरे लिए ही बना है। कौन सा है वो ट्रैक बताओ जल्दी से। नंबर मैं आपको बता रही हूँ 9837896896। और यहाँ पर मैसेज हमारे पास आया है नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ सर। और ये मैसेज हमें पहुंचाया है कहाँ से, ज़रा देख लेते हैं हम। ये मैसेज हमारे पास आया है काशी नगरी बनारस से, एंड इन्होंने मैसेज हमें पहुंचाया है। मोहसिन अंसारी जी, सरताज अंसारी जी, शाहिद अंसारी जी का मैसेज हमारे पास आया है और ये कहते हैं, आदतें लगाव, साथ रहने की इच्छा और वह सुकून जो सिर्फ तुम्हारी आवाज़ से मिलता था, सब धीरे धीरे मुझे छिनता गया। तुम्हारे जाने के बाद मैंने जाना कि खालीपन सिर्फ कमरों में नहीं होता, कभी कभी मन भी पूरी तरह सूना हो जाता है। ओ हो हो, सुबह सुबह शायरियाँ, हाँ हाँ हाँ। चलिए नेक्स्ट मैसेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है सैयद मंसूर जी का, साइना हसन जी का मैसेज हमारे पास आया है और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं कुमार हीरा सहारनपुर से, और कहते हैं कि आपको हमारा आदाब, आपको भी आदाब सर। नेक्स्ट मैसेज मुझे मिला है यहाँ पर जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का, और ये भी अपनी पूरी फैमिली के साथ इस समय राइट नाउ रेडियो को सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, सुबह सुबह जब हम रेडियो सुनते हैं ना और अपने फेवरेट शो आ जाए, अपने फेवरेट आरजे आ जाए, तो फिर दिन ही बन जाता है। क्यों दोस्तों, आपके मन में भी कुछ अगर चल रहा है तो बता सकते हो मुझे, मतलब मेरे साथ आप बात कर सकते हो, मैसेज पहुंचा सकते हो अपना। और देखिए मैं आपकी फ्रेंड हूँ, दोस्त हूँ ना, और दोस्त से कुछ छुपाते नहीं है, ठीक है? तो कोई भी अगर बात है आप मुझसे बताइएगा, ठीक है श्रोताओं, मैं आपके साथ हूँ ना, आपकी खुशी। चलिए अभी सुनवाती हूँ मैं एक अमेजिंग ट्रैक आज की सुबह, एंड मुझे उम्मीद है कि ये गाना आपको पसंद आएगा। और गाना कौन सा है बताते हैं आपको, चलिए बता देते हैं। गुरु रंधावा जी की आवाज़ में एक अमेजिंग ट्रैक मैं यहाँ पर प्ले कर रही हूँ, उसके बाद लौट कर आऊँगी, करूँगी आपसे बहुत सारी बातें। बताइएगा कौन सा ट्रैक है जो आप खुद के लिए सुनना चाहते हैं।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
2: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
5: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
5: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
0: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

Hi everyone, good morning. Once again, welcome back. आप सुन रहे हैं आपके अपने सिटी का नंबर वन रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी जी हाँ जो आपकी मॉर्निंग को बनाती है और भी ज्यादा अमेजिंग ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ एंड अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ. और दोस्तों वक्त हुआ है 11:04 और मेरे जो माइंड में ना बहुत देर से खुराफाती चल रही है. मैंने कहा फ्राइडे का दिन है, वीकेंड है एंड कुछ तो स्पेशल आज होना चाहिए. और स्पेशल ये कि कोई फन सवाल मैं आपसे पूछती हूँ जी हाँ, जो आपकी बचपन की यादों में आपको ले जाएगा आज का एक मज़ेदार बचपन की याद ताज़ा करते हुए. यादों को ताज़ा करते हुए एक सवाल मेरे जहन में चल रहा है, मैं आपसे मालूम करना चाहती हूँ. आप मुझे बताइए आपके घर में भी कभी ऐसा हुआ था क्या कि मम्मी ने बचपन में आपके छोटे भाई को बहन की फ्रॉक या ड्रेस पहना दी हो या फिर बहन को भाई के कपड़े पहनाकर फोटो खिंचवा दी हो और बाद में वो तस्वीर देखकर सब खूब हंसे हों. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कोई फनी सा किस्सा तो आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा. हाँ जी होते हैं ना बचपन में, मैंने बहुत सारी ऐसी बचपन की मेमोरीज हैं एंड बचपन में ऐसा होता था छोटे जब बहन भाई होते हैं ना तो अक्सर मम्मी भाई को सिस्टर के कपड़े पहना देती हैं और सिस्टर को ब्रदर के कपड़े पहना देती हैं और फिर फोटो भी क्लिक करते हैं. और बचपन में जब बड़े हो जाते हैं तो उन तस्वीरों को हम देखते हैं या फिर अपने दोस्त या फिर मेहमान जो घर पर आते हैं गेस्ट उनसे हम बोलते हैं गेस्ट करके बताओ कि ये फोटो किसकी है, पहचानिए है ना. तो बताइएगा आप भी कोई फनी सा किस्सा जो आपको आज भी याद है और आपके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है वो फोटो को देखकर. तो किस्सा हमारे साथ भी आप शेयर कीजिएगा. हाँ जी आपको, आप मुझे बताइए कि आपके घर में कभी ऐसा हुआ है कि मम्मी ने बचपन में आपके छोटे भाई को बहन की फ्रॉक या ड्रेस पहना दी हो या फिर बहन को भाई के कपड़े पहना दिए हो और फोटो क्लिक करा दी हो और बाद में तस्वीर देखकर सब खूब हंसते हो. अगर आपके साथ भी ऐसा कोई फनी किस्सा हुआ है तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896. बचपन में ना मम्मियाँ भी ना कभी भाई को गुड़िया बना देती थी तो कभी भाई को छोटा हीरो, हाँ बहन को छोटा हीरो. आपके घर में कभी ऐसा फनी जी हाँ फनी ऐसा एक्साइटमेंट मोमेंट हुआ है क्या, जरा आप मुझे बताइएगा. कोई मजेदार किस्सा आप मुझे शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9837896896. और हमारे पास यहाँ पर कुछ और संदेश आए हैं, मैं उनको भी शामिल करती हूँ. हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है आरजे खुशी जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार. ये मैसेज हमें पहुँचाया है धनोरी तिलीवाला से निसार सलमानी नौशाद सलमानी जी ने. थैंक यू सो मच अपना मैसेज पहुँचाने के लिए. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रणवीर सिंह जी का मुरादाबाद से, कहते हैं सुबह की मांगी हुई विश पूरी हो जाती है, हम ईश्वर से आपकी और एफएम मुरादाबाद सुनने वालों का दिन हमेशा खुशियों से भरा रहे यही विश करते हैं. अरे वाह बहुत अच्छी विश है आपकी, थैंक यू सो मच सर. ओहो तभी हम सोचे कि हमारा दिन इतना खूबसूरत कैसे गुजरता है. हाँ जी जब सभी जब सच्चे दिल से हम सभी के लिए विशेष करते हैं ना, दुआएं मांगते हैं तो वो भगवान जी एक्सेप्ट करते हैं. नेक्स्ट मैसेज मेरे पास आया है गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी डियर. ये मैसेज हमें पहुंचाती है राधिका. नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है मैडम जी को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. और ये कहते हैं इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर्स आज की मॉर्निंग हमें भेजा है उमा शंकर सिंह जी ने, साथ में अविंदिका सिंह है, अर्जित सिंह है, रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से अपना मैसेज पहुंचाते हैं. थैंक यू सो मच सर. और दोस्तों चलिए सुनते हैं एक बहुत प्यारा सा गाना और इस ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजी है इरशाद हुसैन अंसारी जी ने, निगाहें मिलाने को जी चाहता है. सुनते हैं उसके बाद लौट कर आएंगे और आपसे करेंगे और भी बहुत सारी बातें.
आप बने रहिए, सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी के साथ हैं आप। शो चल रहा है मॉर्निंग मसाला, जहां पर बहुत सारी अपडेट्स आपको मिलती हैं एंड फन एक्टिविटीज भी होती हैं। और आपके यहां पर जो ब्यूटीफुल मैसेज आते हैं, मैं उनको भी रीड करती हूं। और ये मैसेज हमारे तमाम लाखों श्रोता भी आपका सुनते हैं। आपकी एक थॉट जो न जाने किसी की लाइफ में भी अगर बदलाव लेकर आ सकती है तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मैं भी कहना चाहती हूँ आपसे, अगर आपके मन में कोई थॉट है जो लाइक आपको लगता है कि हाँ, इससे लोगों की सोच में थोड़ा चेंज आ सकता है, पॉजिटिविटी आ सकती है, तो श्योर आप अपना मैसेज हमें पहुंचा सकते हैं। मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, 9837896896। और वक्त हुआ है 11:18। और अभी आपने ट्रैक सुना, तरस ना आया तुझको। वैसे एक बात, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, तरस ना आया तुझको ट्रैक आपने सुना है, लेकिन गाने में किसी को तरस आए या ना आए ये अलग बात है, बट सूर्य देव को भी जरा सा भी तरस नहीं आ रहा है ना। देखिए ना, धूप इतनी तेज है कि बाहर निकलते ही लगता है जैसे गले मिलने आ गई हो, है ना। ऐसा मतलब इतनी तेज गर्मी है, बाहर निकलने का दिल ही नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आप अपना ख्याल रखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। पानी समय समय पर पीते रहिए, चाहे प्यास लगे या ना लगे। अगर जरूरी काम ना हो तो दोपहर की तेज धूप से थोड़ा बचिए, और बाहर निकले तो छाता, टोपी या गमछे का इस्तेमाल जरूर कीजिए। याद रखिए, गर्मी से लड़ने का सबसे आसान तरीका है हाइड्रेट रखिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल अच्छे से रखिए। आपकी सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है दोस्तों, तो इससे कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। और यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आए हैं, तो मैं उनको जल्दी से शामिल करती हूँ। और मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था, बड़ा इंटरेस्टिंग सा था। मैंने आपसे पूछा था कि आज आपके बचपन की कुछ मजेदार जो मेमोरीज हैं, जो यादें हैं, उनको फिर से ताजा करते हैं। कि आपके घर में कभी ऐसा हुआ था कि मम्मी ने बचपन में आपके छोटे भाई को या छोटे भाई को आपकी सिस्टर के फ्रॉक ड्रेस पहना दी हो, या फिर बहन को भाई के कपड़े पहनाकर फोटो खिंचवा दी हो और बाद में तस्वीरें देकर सब खूब हंसे हों। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई फनी किस्सा हुआ है तो आप मेरे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। वैसे हमारे पास यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है, और ये मैसेज हमें प्रतीक्षा ने पहुँचाया है विकास नगर से। कहते हैं, हाय गुड मॉर्निंग मैम। अरे मैम, मेरे साथ तो ऐसा सच में हुआ है। एंड ये कहती हैं, जब मेरा भाई बहुत छोटा था ना, तो मम्मी ने उसे कई बार मेरी फ्रॉक बनाकर तैयार कर दिया था, उसकी छोटी छोटी दो चोटी बना दी थी और फिर फोटो भी खिंचवा दी। आज जब हम वो पुरानी एल्बम देखते हैं तो लोग सच में कंफ्यूज हो जाते हैं, इनमें से मेरा भाई कौन है और बहन कौन है। सबको लगता है कि फोटो में दोनों बहनें ही हैं, फिर जब हम बताते हैं इनमें से एक मेरा भाई भी है, तो सबकी हंसी छूट जाती है। अमेजिंग यार। और दोस्तों, बचपन की यही तो सबसे प्यारी बातें होती हैं। उस समय शायद समझ नहीं आता है, लेकिन आज वही तस्वीरें सबसे खूबसूरत यादें बन जाती हैं। और हमारे पास नेक्स्ट मैसेज किनका आया है, मैं क्विकली चेक करती हूँ। मेरे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हेलो खुशी मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं मोहम्मद शाजिद जी। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है मोहम्मद इरफान जी का, और ये

कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन सर, मैं बहुत अच्छी हूँ और आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, खुशी जी जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। दुर्गेश सैनी जी का मैसेज हमारे पास आया है कल्याणपुर मुरादाबाद से, नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। अंसार हुसैन जी का मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, वैसे आपके संदेश यहाँ पर देखकर जो खूबसूरत मैसेज आते हैं ना, सच में दिल बहुत हैप्पी हो जाता है। इतने प्यार से आप मेरी बातों को सुनते हैं, उसके बाद रिप्लाई करते हैं, अमेजिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा ट्रैक, एंड प्रतीक्षा की रिक्वेस्ट पर अमेजिंग ट्रैक इन्होंने सुनने की रिक्वेस्ट हमें की है, तो सुनते हैं, उसके बाद हम आपसे फिर से कनेक्ट होते हैं। तब तक आप भी अपने मैसेज पहुंचाना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए। अगर आज आपका मन है कुछ बाहर से ऑर्डर करने का, कुछ बाहर का खाने का, तो बिल्कुल खा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कभी खाने में कोई इश्यू नहीं है, अगर हम रेगुलर बाहर का खा रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर कभी मन नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाहर खाने का मन है तो खा सकते हैं, कभी कभी कोई इश्यू नहीं है, कभी कभी खा लेना चाहिए, क्योंकि दिल है मानता नहीं है, क्या कर सकते हैं। चलो ये अमेजिंग ट्रैक से ना मैं लौट कर आती हूँ अभी।

0: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
7: अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

बिल्कुल जी, हम आ चुके हैं आपके अपने एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे दोस्तों, और ये अमेजिंग ट्रैक अभी आपने सुना, जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। तो आपका जब मन ना लगे ना, तो आप एफएम मुरादाबाद 89.6 को ओपन कर लेना, और आपका मन भी लगेगा और आपको खुशी भी मिलेगी। तो हुआ ना डबल प्रॉफिट।

दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी लग्जरी हमेशा महंगे होटल या आलीशान घर में नहीं होती। कभी कभी सुकून वही मिल जाता है जहां दिल को शांति मिले। हाल ही में कॉमेडियन और अभिनेता सुनील ग्रोवर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर में वे गंगा घाट पर खुले आसमान के नीचे चादर बिछाकर आराम करते नजर आए। तस्वीर के साथ उन्होंने मज़ेदार अंदाज में लिखा, तारे ज़मीन पर। और बस यही तस्वीर लोगों का दिल जीत रही है। दोस्तों, इस तस्वीर से एक बात तो समझ आती है कि कभी कभी मोबाइल की स्क्रीन से दूर प्रकृति के बीच बिताए गए कुछ पल ही असली रिचार्ज बन जाते हैं। वैसे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ दोस्तों, अगर आपको एक दिन पूरी तरह फ्री मिल जाए, जी हाँ, उसमें कोई काम नहीं, बस फ्री आपके लिए, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? पहाड़ों की ठंडी वादियों में, समुद्र किनारे, या फिर किसी नदी के किनारे जहाँ सिर्फ शांति हो और सुकून? अपना जवाब हमें भेजिएगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपको एक दिन पूरी तरह फ्री मिल जाए तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? पहाड़ों की वादियों में, समुद्र किनारे, या फिर किसी नदी के किनारे जहाँ सिर्फ शांति और सुकून हो? अपने जवाब हमें पहुँचाएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मुझे उम्मीद है आपकी जो इंटरेस्टिंग यहाँ पर आंसर है वो ज़रूर आएंगे। और हमारे पास यहाँ पर कुछ और खूबसूरत मैसेज आए हैं, मैं उनको क्विकली शामिल करती हूँ। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान जी का। और ये इनकी, इन्होंने एक बड़ी प्यारी सी वीडियो शेयर की है, उसमें छोटा सा बेबी है, वो रेडियो सुन रहा है और बड़ा हैप्पी भी है। मतलब रेडियो की दीवानगी इस तरह है कि अभी वो छोटा सा बेबी है, आई थिंक बोलता तो होगा लेकिन बड़ा क्यूट सा है और वो रेडियो को इतने प्यार से सुन रहा है। यही होती है असली रेडियो की दीवानगी। हम भी छोटे थे तो इस तरह से लाइक किया करते थे, और रेडियो हमने भी बचपन से सुना है, इतना मतलब प्यार था। हम एक टाइम को ना मतलब कहते हैं ना कि खेलना हम मिस कर देते थे, लेकिन रेडियो पर जब कोई फेवरेट शो हमारा आता था तो हम वहीं चिपक कर बैठ जाते थे। और पीछे से मम्मी आवाज़ लगा रही है कि आ जाओ बेटा खाना खा लो, लेकिन हम बोलते थे मम्मी अभी नहीं, अभी पहले हमें सुनने दो ना, क्योंकि जब अपना फेवरेट शो आता है ना तो हम फिर अलग ही दुनिया में खो जाते हैं, है ना। मैं तो ऐसा किया करती थी, मुझे रेडियो से बहुत ज़्यादा प्यार है, तभी रेडियो हमारे दिल के इतने करीब है ना दोस्तों। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमारे पास आया है जीत कसाना जी का। साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं ग्राम पोस्ट लदावली से। कहते हैं लवली सिलेक्शन विद मेमोरेबल प्रेजेंटेशंस एंड कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर, आपको हमारा शो पसंद आता है, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ये मैसेज हमारे पास आया है, सलमान खान का मैसेज हमारे पास आया है। ओ माय गॉड, सलमान जी का मैसेज हमारे पास आया है। और इन्होंने कहाँ से मैसेज पहुँचाया ये हमें नाम नहीं बताया। देखिए, आप जब भी अपना मैसेज पहुँचाएं ना तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अपना जहाँ से भी आप मैसेज पहुँचा रहे हैं, सिटी हो, विलेज हो, आप उसका नाम भी मेंशन किया करो, हमें भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, हेलो खुशी मैम, गुड मॉर्निंग। बबली अनजान जी का मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, साथ में गीता कश्यप हैं और ये राधे राधे भी पहुंचाते हैं। राधे राधे आपको भी।

तो चलिए दोस्तों सुनते हैं कुछ अमेजिंग ट्रैक। एंड अभी हमने बात की थी गंगा किनारे, तो मुझे बहुत ही प्यारा सा ट्रैक यहाँ पर अभी मेरे जहन में आया है, तो मैंने कहा चलिए अपने श्रोताओं को भी सुनवा देते हैं एक अमेजिंग सा ट्रैक। बस मैं लौट कर आती हूँ और ये ट्रैक है जुबिन नौटियाल जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।

हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और यहाँ पर खूबसूरत संदेश भी आए हैं, मैं उनको भी शामिल करूंगी। दोस्तों, जिंदगी से जुड़ा हुआ एक खूबसूरत सा विचार जो आपके लिए है, हम सबकी जिंदगी से कनेक्टेड है। दोस्तों, शॉर्टकट कभी भी लंबे समय तक साथ नहीं देता। जल्दी कामयाब हुआ हुआ पैसा, जल्दी मिली सफलता या फिर आसान रास्ता कई बार उतनी ही जल्दी छूट भी जाता है, लेकिन मेहनत से कमाया हुआ अनुभव, धैर्य और अच्छी आदतें, ये ऐसी पूंजी हैं जिन्हें कोई आपसे छीन नहीं सकता। अगर आज समय थोड़ा कठिन चल रहा है तो घबराइए मत, मौसम बदलने में भी समय लगता है लेकिन बदलता ज़रूर है। इसीलिए अपने खर्चों का ध्यान रखिए, अपने मन को मजबूत रखिए, परिवार के साथ जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए। याद रखिए दोस्तों, बुरा समय इंसान को ख़त्म करने नहीं आता बल्कि उसे पहले से ज़्यादा मजबूत और समझदार बनाकर जाता है, और जो मुश्किल समय में खुद को संभाल लेता है वही अच्छे समय में सबसे ऊँची उड़ान भरता है। इसीलिए साथियों, सकारात्मक सोच के साथ आपके इस प्यारे से दिन को हम और भी ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे, और जब आप सब मुस्कुराते हैं या फिर मुरादाबाद सुनते हुए तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो कभी भी अगर आपकी लाइफ में कठिन वक्त आए ज्यादा, तो उस समय भी आपको थोड़ा धैर्य रखना है, पेशेंस बनाकर रखना है और मुश्किलों से घबराना नहीं है, उसका सामना करना है, उनसे सीखना है, क्योंकि मुश्किलें हमें हराने नहीं बल्कि सिखाने के लिए आती हैं। और हमारे पास यहाँ पर बड़ा प्यारा सा मैसेज आया हुआ है जो बहुत देर से हमारे पास आया हुआ है, और वो भी इंतजार कर रही होंगी कि अभी तक मैम ने हमारा मैसेज शामिल नहीं किया, तो अभी कर लेते हैं। ये मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप? आपकी आवाज में जादू है जो एकदम से मूड फ्रेश कर देता है। एंड ये मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है शबीना खान जी का, रहमत नगर गली नंबर 1 से मुरादाबाद से मैसेज हमें पहुंचाती हैं, और शबीना जी ने एक रिक्वेस्ट हमें भेजी है। तो शबीना जी, थोड़ा इंतजार कीजिएगा, ये ट्रैक हम आपको जरूर सुनवाएंगे। एंड हमारे पास टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं तो मैं उनको भी जल्दी से शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है संजू का, और ये कहती है, हाय खुशी दी, कैसी हैं आप? और ये कहती है, हाँ मैम, हम भी बहुत अच्छे हैं, और मेरे भाई को मेरी छोटी बहन के कपड़े पहना दिए थे और दो चोटी भी बांधी थी, और इसी बहाने सबके चेहरे पर हंसी भी आ गई थी। अरे वाह, क्या बात है। वैसे छोटे बच्चे बहुत क्यूट होते हैं, और पता नहीं चलता कि कौन गर्ल है कौन बॉय है, लेकिन बहुत प्यारे लगते हैं छोटे बच्चे। जब देखिए, आपको आपने कभी देखा है जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो और आप किसी मासूम से, किसी प्यारे से बच्चे का चेहरा देखते हो तो आपका गुस्सा अचानक से सब गायब हो जाता है। और अगर आप कभी टायर्ड फील कर रहे हो, कभी बहुत ज़्यादा थक कर ऑफिस से घर आए हो, और जब आप अपने बच्चों का मुस्कुराता हुआ खिलखिलाता हुआ चेहरा देखते हो तो आपकी सारी थकान भी दूर हो जाती है। तो बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, उनकी मासूमियत इतनी खूबसूरत होती है ना कि सभी के दिल को मोह लेती है। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, हाय खुशी जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कहते हैं कि आज गर्मी बहुत तेज हो रही है, और कार्तिक कह रहे हैं कि मैम अपना ख्याल रखिएगा। कार्तिक गुप्ता का मैसेज हमारे पास लाइन पार से आया है। आप सब भी अपना ख्याल रखो एवरीवन, और एक प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं, उसके बाद फिर से मैं आप सभी के साथ कनेक्ट होती हूँ। आप यूं ही मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और एक अमेजिंग ट्रैक जो सोशल मीडिया पर ना बहुत वायरल हुआ था, याद है आपको? ओहो, आप भूल गए, चलो मैं याद दिलाती हूँ आपको। लता मंगेशकर जी की आवाज़ में प्यारा सा ट्रैक, मुझे उम्मीद है आपको पसंद जरूर आएगा।

क्या अमेजिंग ट्रैक सुने ना दोस्तों आपने, ओल्ड वर्जन यू नो किशोर कुमार जी की आवाज़ में। और अब मेरे जाने का भी वक्त हो गया है दोस्तों, लेकिन बस जाते जाते यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी बहुत तेज़ भाग रही है, लेकिन कोशिश कीजिए कि इस भागते दौड़ते समय में अपने लोगों के लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालिए, क्योंकि घड़ी की सुइयाँ तो वापस घूम सकती हैं लेकिन गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप खूब मुस्कुराइए, दिल से हंसिए, अपनों का ख्याल रखिए, सबसे जरूरी है अपना भी ख्याल रखिए। फिर होगी मुलाकात नई बातों के साथ, नए ट्रैक के साथ एंड कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। अब खुशी को दीजिएगा जाने की अनुमति। नमस्कार दोस्तों, हमेशा यूं ही खुश रहिएगा, अपनों के साथ रहिए और दिन को सबसे खूबसूरत सबसे

खूबसूरत। हाँ जी, वजह भी दीजिए और वो वजह क्या है। FM मुरादाबाद 89.6। देखिए आप भी सुनिए और अपने आसपास वालों को भी कहिए कि आप भी FM मुरादाबाद सुनिए। अगर आप अकेले हैं तो फिर आप वो अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली की वजह से बाहर रहते हैं, दूर, जॉब की वजह से, स्टडी की वजह से, या फिर और भी काम होते हैं जिसकी वजह से हम फैमिली से दूर रहते हैं। लेकिन एक तो कोई ऐसा होना चाहिए जो हमारे साथ हो, और वो है आपका अपना FM मुरादाबाद 89.6। तो दोस्तों मिलेंगे आपको हम 3 से 5, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन।

राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद राष्ट्रपति आज से उड़ीसा के दो दिन के दौरे पर रहेंगे। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तीन दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद राष्ट्रपति आज से उड़ीसा के दो दिन के दौरे पर रहेंगे। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तीन दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन में छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस अधोरी घाट ओनरीहार की वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चार राज्यों तमिलनाडु गुजरात उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों के बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मिजोरम में 8,75,000 मतदाताओं का 95% से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। राज्य की संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी एंथेल रोथांगपुई ने बताया कि राज्य में कल तक 8,35,000 से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के 11 जिलों में 100% डिजिटलीकरण हो गया है। इस बीच राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुरोध पर आयोग ने मिजोरम के लिए मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि को पहले की 5 जुलाई से संशोधित करके 4 जुलाई कर दिया है। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि भी 4 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हुए गलत तरीके से दिखाया गया है। वीडियो में दावा किया गया है कि 22,000 रुपए की एकमुश्त जमा राशि से प्रतिदिन 80,000 रुपए तक का रिटर्न मिल सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा बनाया गया है। भारत का LNG टैंकर दिशा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने के बाद आज सुबह गुजरात के दाहिज बंदरगाह पर पहुंच गया। ये कतर के रस लाफान टर्मिनल से 62,370 मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG लेकर आया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। भारत ने समझौते को मौजूदा हालात के विपरीत बताते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है वो सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकता। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिस
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ
3: 9412111111।
4: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: सभी श्रोताओं का हमारी सेहत की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। सेहत सही लाभ का एक नए एपिसोड में स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी। और आजकल हर जगह पोषण माह की चर्चा हो रही है, लेकिन सच बताऊं, पोषण शब्द सुनते तो हैं, हम समझते कम हैं। हम सोचते हैं पेट भर गया है मतलब पोषण पूरा हो गया है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेहतिया भैया और साथ में एक पोषण विशेषज्ञ भी हैं, जो हमें बताएंगे कि सेहत भोजन कैसे हमारी जिंदगी बदल सकता है। सेहतिया भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।

0: आरजे खुशी और सभी श्रोताओं को भी मेरा धन्यवाद। आज की चर्चा बहुत जरूरी है क्योंकि बीमारी अस्पताल में नहीं रसोई में शुरू होती है और स्वास्थ्य भी वहीं से बनता है।
1: वाह क्या बात कही आपने, लेकिन सच बताऊं कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसने मुझे बहुत चिंतित कर दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार हमारे देश में 6 महीने से 5 साल तक के 67.1% बच्चे एनीमिया से प्रभावित हैं। इतने छोटे बच्चों में खून की कमी, ये कैसे हो सकता है?
0: यही तो पोषण की असली तस्वीर है और यह समस्या सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। 15 से 19 साल की किशोर लड़कियों में भी 59% से ज्यादा एनीमिया है और गर्भवती महिलाओं में लगभग 52%। इसका मतलब यह है कि हमारे भोजन में कहीं ना कहीं बहुत कमी है।
1: तो क्या इसका मतलब यह है कि हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन सही पोषण नहीं मिल पा रहा है?
0: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे, पोषण सिर्फ खाना नहीं सही संतुलित भोजन है। शरीर को ऊर्जा, ताकत, दिमागी विकास, बीमारी से बचाव सब भोजन से ही मिलता है। भोजन हम खाते हैं वही हमारे खून, हड्डियों, मांसपेशियों और दिमाग को बनाता है।
1: तो सबसे आसान भाषा में बताइए पोषण आखिर होता क्या है?
0: पोषण का मतलब यह है कि पोषण का सही मतलब है संतुलित भोजन जो शरीर की जरूरत पूरा करे। भोजन से मिलने वाले तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स।
1: ये थोड़ा कठिन लग रहा है, जरा आसान करके समझाइए।
0: देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी बड़े पोषण तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये शरीर को ऊर्जा देते हैं और शरीर का ढांचा बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी विटामिन, खनिज जैसे आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, जिंक, ये कम मात्रा में चाहिए लेकिन बहुत जरूरी होते हैं।
1: मतलब अगर भोजन में विविधता नहीं होगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा?
0: बिल्कुल सही कहा आपने। स्वास्थ्य आहार 4 सिद्धांतों पर आधारित होता है, पर्याप्तता, संतुलन, संयम और विविधता। यानी भोजन इतना हो कि जरूरत पूरी हो, ऊर्जा संतुलित हो, हानिकारक चीजें सीमित हो और खाने में विविधता हो।
1: गांव में लोग कहते हैं कि पोषण वाला खाना महंगा होता है।
0: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हमारे गांव की दाल, बाजरा, ज्वार, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, ये सब सबसे अच्छे पोषण देते हैं। महंगा पैकेट वाला खाना पोषण नहीं देता बल्कि कई बार बीमारी दे जाता है।
1: तो शरीर को ऊर्जा सबसे ज्यादा किससे मिलती है?
0: कार्बोहाइड्रेट से, साबुत अनाज, दालें, फल, सब्जियां ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कुछ ऊर्जा का लगभग आधा हिस्सा इन्हीं से तो आता है।
1: और प्रोटीन?
0: प्रोटीन शरीर की मरम्मत करता है, मांसपेशियां बनाता है, दाल, चना, दूध, अंडा, ये सब अच्छे स्रोत है। शाकाहारी भोजन से भी पूरी प्रोटीन मिल सकता है।
1: वसा यानी फैट को लोग अक्सर बुरा मानते हैं।
0: जरूरी नहीं है, शरीर को कुछ वसा चाहिए लेकिन सही वसा सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी तेल बेहतर है। ज्यादा घी, तला भोजन और ट्रांस फैट नुकसान कर सकते हैं।
1: आजकल गांव में भी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बढ़ रही है, क्या इसका संबंध भोजन से है?
0: बिल्कुल इसका बहुत गहरा संबंध है। जैसे कि ज्यादा नमक, चीनी, प्रोसेस फूड, प्रोसेस भोजन कहा जाता है, ये इनकी बड़ी वजह है। नमक दिन में 5 ग्राम से कम होना चाहिए, ज्यादा नमक दिल की बीमारियां बढ़ा सकता है।
1: फल और सब्जियों का कितना सेवन जरूरी है?
0: वैसे तो आमतौर पर हर व्यक्ति को रोज लगभग कम से कम 400 ग्राम फल और सब्जियां लेनी चाहिए। इससे शरीर को फाइबर, विटामिन और खनिज मिलते हैं।
1: बच्चों के लिए पोषण कितना महत्वपूर्ण है?
0: जीवन के पहले 1000 दिन गर्भ अवस्था से लेकर बच्चों के 2 साल तक सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही समय दिमाग और शरीर का विकास करने के लिए सबसे फायदेमंद और सबसे तेज बनाता है दिमाग।
1: तो शिशु को क्या खिलाना चाहिए?
0: पहले कुछ महीने केवल माँ का दूध, इसके बाद घर का बना अर्ध ठोस भोजन जैसे कि खिचड़ी, दाल, सब्जी, फल। नमक और चीनी नहीं डालनी चाहिए इसमें।
1: गांव में एक धारणा है कि कुपोषण प्रोटीन की कमी से होता है।
0: असल में अधिकतर मामलों में ऊर्जा की कमी होती है, यानी बच्चा पर्याप्त मात्रा में खाना ही नहीं खा रहा होता है। दाल रोटी भी सही मात्रा में अगर बच्चे को मिले तो वह स्वस्थ रह सकता है।
1: और गर्भवती महिलाओं को पपीता या केला नहीं खिलाना चाहिए, ये बात सही है?
0: नहीं नहीं बिल्कुल गलत, ये फल सुरक्षित है और विटामिन से भरपूर है, ऐसी मिथक महिलाओं को पोषण से दूर कर।
1: सरकार इस दिशा में क्या कर रही है?
0: जैसे कि आपने सुना होगा 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों में हिग्नापन, कुपोषण, अनीमिया है। आंगनवाड़ी केंद्रों में हर महीने पोषण गतिविधियां होती हैं, पोषण बैठक, स्वास्थ्य जांच, जागरूकता कार्यक्रम, ये सब चलते रहते हैं।
1: सुना है तकनीकी भी इस्तेमाल हो रही है?
0: जी बिल्कुल सही सुना आपने, जैसे पोषण ट्रैकर ऐप से बच्चों और माताओं की जानकारी रियल टाइम में दर्ज की होती है, इससे सेवाएं सही लोगों तक पहुंच पाती है।
1: महिलाओं और बच्चों के लिए भोजन कैसा होना चाहिए?
0: अनाज, दाल, दूध, हरी सब्जियां, फल रोजाना भोजन का हिस्सा होना चाहिए। तेल सीमित मात्रा में लें, तला हुआ ज्यादा मीठा और पैकेट स्नैक्स कम करें।
1: आजकल बच्चे जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं।
0: जी हाँ, यही तो भविष्य की बीमारी का कारण बनेंगे। बच्चे की आदतें पूरी जिंदगी चलती हैं, इसलिए घर का खाना सबसे बड़ा निवेश है।
1: सेहतिया भैया, क्या भोजन से गंभीर बीमारियां भी रोकी जा सकती हैं?
0: हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। स्वस्थ आहार मधुमेह, दिल की बीमारी, स्ट्रोक और कैंसर तक के खतरे को कम कर सकता है। यानी सही भोजन दवा से भी बड़ा बचाव है।
1: सेहतिया भैया, आपने अभी कहा कि सही पोषण सिर्फ शरीर नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल देता है। क्या आपके पास कोई ऐसी सच्ची घटना है जिससे हमारे श्रोता जुड़ सके?
0: हाँ आरजे खुशी जी, मैं आपको हमारे ही इलाके की एक लड़की आरती की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सिर्फ आरती की ही नहीं बल्कि हमारे देश की हजारों बेटियों की कहानी है।
1: जरूर सुनाइए, मुझे लगता है श्रोता भी बहुत ध्यान से सुनना चाहेंगे।
0: जी बिल्कुल। आरती एक छोटे से गांव में रहती थी। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, काम में तो मन कितनी तेज थी, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। घर में अक्सर यही सोच रहती थी कि पेट भर खाना मिल जाए, बस यही काफी है।
1: यानी भोजन तो मिल रहा था लेकिन पोषण पर ध्यान नहीं था।
0: बिल्कुल, आरती सुबह चाय और बची हुई रोटी खाकर स्कूल चली जाती थी। दिन में कभी नमक रोटी तो कभी सिर्फ चावल। हरी सब्जियां या फल बहुत कम मिलते थे। परिवार को लगता था कि वे ये सब शौक की चीजें हैं, जरूरी नहीं।
1: और इसका असर कब दिखना शुरू हुआ?
0: इसका असर धीरे धीरे दिखाई देता है। जैसे आरती जल्दी थकने लगी, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलती थी, अक्सर चक्कर आते थे, लेकिन घर वाले कहते कमजोरी तो लड़कियों में होती ही है।
1: ये बात तो आज भी कई जगह सुनने को मिलती है।
0: हाँ, और यही सबसे बड़ा खतरा है। कुछ साल बाद आरती को शादी हो गई, शादी के बाद वह गर्भवती हुई, लेकिन उसके शरीर में पहले से ही खून की कमी थी जिससे किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं।
1: क्या उसने जांच नहीं करवाई?
0: पहले तो नहीं करवाई, उसे लगता था कि सब ठीक है, लेकिन गर्भ व्यवस्था के चौथे महीने में उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। एक दिन खेत में काम करते करते वे बेहोश तक हो गई थी। उसे तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया, वहाँ जांच हुई तो डॉक्टर ने बताया कि उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, गंभीर एनीमिया पाया गया। डॉक्टर ने परिवार से कहा अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो माँ और बच्चे को खतरा हो सकता है।
1: यह सुनकर तो परिवार घबरा गया होगा ना?
0: हाँ, पहली बार में उन्हें समझ ही नहीं आया कि पोषण कोई छोटी बात नहीं है। डॉक्टर ने आयरन की गोलियां दी, पोषण आहार समझाया, हरी सब्जियां, दाल, गुड़, चना, मूंगफली, दूध और नियमित जांच भी बताई।
1: क्या आरती ने सलाह मानी?
0: शुरू में मुश्किल हुई, उसे गोलियों से हल्की मिचली होती थी, लेकिन आशा दीदी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने समझाया कि यह सामान्य है और दवा जारी रखना जरूरी है। परिवार ने भी धीरे धीरे भोजन में बदलाव किया।
1: मतलब पूरा परिवार सीखने लगा।
0: जी हाँ, घर में पहली बार रोज हरी सब्जी बनने लगी, गुड़ और चना नाश्ते में शामिल हुआ, आरती को आराम करने दिया जाने लगा।
1: फिर प्रसव के समय क्या हुआ?
0: नियमित देखभाल और बेहतर पोषण की वजह से स्थिति संभल गई। कुछ महीनों बाद आरती ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने कहा अगर समय पर सुधार नहीं होता तो परिणाम बहुत गंभीर भी हो सकते थे।
1: यानी सही समय पर पोषण ने दो जिंदगियां बचा दी।
0: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात आरती खुद अब गांव में महिलाओं को समझाती है। वो कहती है मैंने कमजोरी को सामान्य समझकर गलती की, अब कोई और ये गलती ना करे।
1: वाह, ये तो सच में प्रेरणादायक कहानी है।
0: हाँ, आज आरती अपने बच्चों को समय पे स्तनपान कराती है, पूरक आहार देती है और गर्भवती महिलाओं को जांच और पोषण की सलाह भी देती है।
1: तो इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या है?
0: सीख तो बहुत साफ है, कमजोरी किस्मत नहीं होती, अक्सर पोषण की कमी होती है। सही भोजन, समय पर जांच, सरकारी सेवाओं का उपयोग जीवन बचा सकता है।
1: दोस्तों, आरती की कहानी हमें बताती है कि पोषण कोई बड़ी या महंगी चीज नहीं है, ये छोटी छोटी रोज आदतों से बनता है।
0: और याद रखिए, स्वस्थ माँ ही स्वस्थ पीढ़ी की नींव है।
1: धन्यवाद सिहतिया भैया, सच में ये कहानी दिल को छू गई और बहुत बड़ी सीख दी गई।
0: बिल्कुल, स्वस्थ माँ मतलब स्वस्थ पीढ़ी।
1: तो अंत में श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है?
0: विविध भोजन खाइए, गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त भोजन दीजिए, 6 महीने तक केवल स्तनपान कराएं, बच्चों को घर का पौष्टिक भोजन दीजिए, नमक चीनी कम कीजिए और रोज सक्रिय रहिए।
1: दोस्तों, हम अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेंगे, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे, साफ सफाई अपनाएंगे, नियमित जाँच करवाएंगे और संतुलित आहार अपनाएंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ होगा तभी देश मजबूत होगा।
1: इसी संदेश के साथ आपकी आरजे आपसे अलविदा लेती है, पर जाने से पहले लेंगे हम अपनी सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वस्थ को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
0: व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रह सके,
1: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही
1: लाभ कई, धन्यवाद। सेहत सही तो लाभ कई, धन्यवाद। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
3: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

0: स्वागत है दोस्तों साथियों आपका, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम एफएम मुरादाबाद 89.6, आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं, आज तो मैं कसम से बता रहा हूँ बहुत थक गया हूँ, और ये मैं सच में आपको बता भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि फिलहाल स्वागत करते हैं, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम पसंदीदा सेहत सही लाभ कहीं, और मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद। सच कहूँ तो आज आवाज में जोश कम और गर्मी ज्यादा है। अभी स्टूडियो में बैठा हूँ एसी चलाकर, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंगीठी के सामने बैठा हूँ। सुबह जब से घर से निकला हूँ तब से ऐसा लग रहा है जैसे आज दिन थोड़ा ठीक नहीं गया मेरा, लेकिन जैसे तैसे सूरज ऊपर चढ़ा तो लगा कि भैया आज हालत तो खराब होने वाली है। अभी घड़ी में सिर्फ सुबह के 10 बज रहे हैं और लग रहा है जैसे दोपहर की एकदम घड़ी सर पर खड़ी है। तो दोस्तों, पहले सिर्फ मौसम गर्मी हुआ करती थी, लेकिन अब ये जैसे एक मुसीबत बन गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ गर्मी है या कुछ और भी गड़बड़ चल रहा है हमारे आस पास।
1: अरे आरजे आनंद, इतनी घबराहट क्यों? गर्मी तो है, पसीना आएगा ही, लेकिन आपकी बात भी गलत नहीं है। इस बार की गर्मी वकाई कुछ ज्यादा ही तेज है, और जो आप महसूस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है, पूरे देश में लोग यही महसूस कर रहे हैं।
0: बिल्कुल टीकन भाभी, आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि ये सिर्फ गर्मी बढ़ गई वाली बात नहीं है, इसके पीछे कुछ गड़बड़ चल रहा है और कुछ बड़ा चल रहा है। लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, क्या ये सिर्फ मौसम का उतार चढ़ाव है या फिर हम इंसानों को भी इसमें कोई भूमिका निभानी है? सच बताऊं तो अभी गर्मी डराने लगी है, पहले जैसी नहीं हो रही है।
1: अरे आरजे आनंद, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। असल में इसके पीछे कई परतें हैं। सबसे पहले तो प्रकृति का अपना एक सिस्टम होता है। जब उत्तर पश्चिमी भारत, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, तो वह हवा को ऊपर उठने नहीं देता बल्कि नीचे की तरफ दबा देता है।

0: अब तो ये है कि जो गर्म हवा है जो जमीन के पास ही फंस जाती है, बाहर निकल ही नहीं पाती, और जब ऊपर से बादल नहीं होते, बारिश नहीं होती, तो सूरज की किरणें सीधे जमीन को तपाती रहती हैं, जमीन सूख जाती है और उनमें नमी नहीं रहती, और फिर वो गर्मी को और तेज से पकड़ती है, जैसे तवा गर्म होता जाता है।
1: इसका मतलब ये है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ धूप नहीं है, बल्कि ऊपर आसमान से लेकर नीचे जमीन तक सब कुछ मिलकर ये गर्मी बना रहा है।
0: बिल्कुल सही समझे आप, ये एक पूरा सिस्टम है, हवा, जमीन, सूरज और बारिश सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, इसमें एक और बहुत बड़ा कारण जुड़ जाता है, जलवायु परिवर्तन। अब जो हम देख रहे हैं, जैसे गर्मी का जल्दी आना, लंबे समय तक टिके रहना और पहले से कई ज्यादा तेज होना, ये सब उसी का असर है। पहले लू मई जून में चलती थी, लेकिन अब तो मार्च से ही उसके तेवर दिखने लगते हैं।
1: मतलब ये सिर्फ आज की परेशानी नहीं है, ये आने वाले समय की एक चेतावनी है, और शायद हालात और भी कठिन हो सकते हैं।
0: हाँ अजय आनंद, यही सच्चाई है, और सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो सबसे कम सुरक्षित है, जैसे खेत में काम करने वाले किसान, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले जो पूरे दिन धूप में रहते हैं, साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये गर्मी और भी खतरनाक होती है।
1: तो भाभी अब ये बताइए कि लू क्या होती है? लोग अक्सर कहते हैं लू लग गई, लेकिन असल में शरीर के अंदर क्या होता है?
0: देखिए, लू कोई साधारण गर्मी नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। आमतौर पर आप हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो पसीना आना भी बंद हो सकता है, और उस समय शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है और यहीं से लू लगने की शुरुआत होती है। इसके लक्षणों में तेज सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी होना, त्वचा का सूख जाना, तेज बुखार और कभी कभी बेहोशी भी शामिल है।
1: मतलब ये तो बहुत ही गंभीर बात है, क्या ये जानलेवा भी हो सकता है टीकन भाभी?
0: हाँ बिल्कुल, अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो यही हीट लू स्ट्रोक में बदल सकती है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और उसका असर सीधे दिमाग पर पड़ सकता है। कई बार इसमें व्यक्ति बेहोश हो जाता है, बोलने में दिक्कत होने लगती है या शरीर के कुछ हिस्से काम करना बंद कर सकते हैं। इसीलिए लू को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये सिर्फ गर्मी लगना नहीं है बल्कि शरीर के लिए एक गंभीर खतरा है।
1: तो फिर भाभी इससे बचने का तरीका क्या है, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये खतरा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि हम सब के लिए, घर में हो या बाहर, हर कोई इससे प्रभावित हो सकता है।
0: देखिए आरजे आनंद, घबराने से ज्यादा जरूरी है समझदारी से काम लेना। सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है पानी, हमें बार बार पानी पीना चाहिए, भले ही प्यास लगे या ना लगे। कई बार हम इंतजार करते हैं कि प्यास लगे तब पानी पियेंगे, लेकिन तब तक शरीर में पानी की कमी शुरू हो चुकी होती है, इसीलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके हम कुछ देर में पानी पीते रहे। इसके साथ ही छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी, ये सब शरीर को ठंडक रखने में बहुत मदद करते हैं और कमजोरी भी नहीं आने देते।
1: चिकन भाभी, आपने पानी, छाछ, नींबू पानी की बात तो बताई, लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि ORS भी बहुत जरूरी होता है। अब ये ORS क्या होता है और ये कब लेना चाहिए टीकन भाभी?
0: बहुत अच्छा सवाल है आरजे आनंद। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये एक ऐसा घोल होता है जो शरीर में पानी की कमी के साथ साथ नमक और जरूरी मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। जब हम बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं तो सिर्फ पानी ही नहीं, शरीर से नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। ऐसे में सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता, ORS बहुत मदद करता है।
1: मतलब ये सिर्फ बीमारी में नहीं बल्कि गर्मी में भी काम आता है?
0: बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है, बार बार पसीना आ रहा है, कमजोरी हो रही है या चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, तो ORS बहुत फायदेमंद होता है। इसे छोटे छोटे घूंट में पीना चाहिए। और अगर घर में ORS का पैकेट ना हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। घर पर भी घोल बनाया जा सकता है। 1 लीटर साफ पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर ये भी शरीर को संभालने में मदद करता है।
1: वाह, मतलब ये तो बहुत ही आसान है और हर घर में इसे कोई भी बना सकता है। सच में छोटी छोटी जानकारियाँ कितनी बड़ी मदद कर सकती हैं।
0: बिल्कुल RJ आनंद, गर्मी में पानी के साथ ORS दोनों हैं जरूरी डोज। अगर शरीर को समय पर ये मिल जाए तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।
1: हाँ, ये तो सही बात बोली टीकन भाभी आपने। अक्सर हम काम में लगे रहते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं, लेकिन क्या बाहर जाने से भी बचना चाहिए?
0: बिल्कुल, खासकर दिन के सबसे गर्म समय में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से जितना हो सके बचना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाए, और जब भी निकले तो शरीर को ढककर निकले, चाहे गमछा हो, टोपी हो या छाता। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने ताकि शरीर को हवा मिलती रहे और गर्मी कम लगे।
1: क्या बात है टीकन भाभी। और खाने पीने में क्या बदलाव करना चाहिए? क्या गर्मी में खाना भी कभी कभी भारी लगने लगता है?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी में हमें अपने खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। भारी, तला भुना और ज्यादा मसालेदार खाना शरीर में और गर्मी पैदा करता है, इसीलिए इसे कम करना चाहिए। इसके बजाय हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाए। साथ ही ऐसे फल और सब्जियां ज्यादा ले जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, संतरा। ये ना सिर्फ शरीर को ठंडा रखते हैं बल्कि पानी की कमी भी नहीं होने देते।
1: भाभी, ये तो हम अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दिन भर बाहर काम करते हैं, जैसे मजदूर, किसान, रिक्शा चलाने वाले, उनके लिए भी तो और भी मुश्किल होगा उनका ये।
0: आपने बहुत जरूरी बात उठाई है। ऐसे लोगों के लिए सबसे अहम है कि वे अपने काम का समय थोड़ा बदले। कोशिश करें कि सुबह जल्दी काम शुरू करें और दोपहर की तेज धूप में आराम करें। बीच बीच में पानी पीते रहें और जहां भी हवा मिले वहां थोड़ी देर रुककर शरीर को ठंडा करें। लेकिन सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के लिए पानी और छांव की व्यवस्था हो। अगर हम अपने आसपास किसी को धूप में परेशान देखते हैं तो कम से कम पानी देने की कोशिश तो कर ही सकते हैं।
1: मतलब हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या सबकी है।
0: बिल्कुल, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, ये लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इनका विषय ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जल्दी लू की चपेट में आ सकते हैं।
1: बिल्कुल टीकन भाभी, अगर सच में किसी को लू लग जाए टीकन भाभी, तो उसे उस समय क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बार लोग घबरा जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि ऐसे में वो क्या करें।
0: ऐसी स्थिति में सबसे पहले उस व्यक्ति को तुरंत धूप से हटाकर छांव या ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए। उसके शरीर पर ठंडा पानी डाले या गीला कपड़ा रखे ताकि शरीर का तापमान कम हो सके। अगर पंखा या हवा का इंतजाम हो सके तो और अच्छा है। और सबसे जरूरी बात, जितनी जल्दी हो सके उसे डॉक्टर या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि देरी खतरनाक हो सकती है।
1: भाभी, एक बात और बताइए, ये गर्मी तो हमें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन क्या जानवर भी इससे उतने ही प्रभावित होते हैं?
0: अरे RJ आनंद, जानवर भी उतने ही परेशान होते हैं, बल्कि कई बार उनमें उनसे भी ज्यादा, क्योंकि वे अपनी परेशानी बता नहीं पाते। जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते और यहाँ तक कि पक्षी भी इस गर्मी से प्रभावित होते हैं। उन्हें भी ठंडी जगह, छांव या साफ पानी की जरूरत होती है। अगर उन्हें ये सब ना मिले तो उन्हें भी हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसीलिए गर्मियों में हमें उनके लिए भी पानी और छांव का इंतजाम करना चाहिए। ये भी हमारी जिम्मेदारी है।
1: तो भाभी, इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उन बेजुबान जानवरों की भी चिंता करनी चाहिए जो बोल तो नहीं सकते लेकिन इस गर्मी को उतना ही झेलते हैं जितना हम।
0: बिल्कुल आरजे आनंद, और कई बार तो उनसे भी ज्यादा, क्योंकि उनके पास अपने बचाव के साधन नहीं होते। अगर हम अपने घर के बाहर या आंगन में एक बर्तन में पानी भरकर रख दे तो वे किसी प्यासे पक्षी या जानवर के लिए जीवनदान बन सकता है। ये छोटा सा काम है लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा होता है और यही असली इंसानियत है।
1: साथियों, आज की इस बातचीत ने हमें एक बहुत ही जरूरी बात सिखाई है। गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं रहा, ये एक चुनौती बन चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ी समझदारी दिखाएं, तो इससे बचना बिल्कुल संभव है। हम बस अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके, जैसे समय पर पानी पीना, तेज धूप से बचना, हल्के और सूती कपड़े पहनना और अपने शरीर को आराम देना, और सबसे जरूरी अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, कोई बच्चा हो, या कोई मजदूर हो, या फिर कोई बेजुबान जानवर, क्योंकि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना ही हमारी असली ताकत है श्रोताओं। तो याद रखिए, पानी पिए बार बार, लू से रहे हम सब तैयार, और एक बात, धूप से बचाव है जरूरी, तभी रहेगी सेहत पूरी। क्या बात है श्रोताओं, भाभी आपकी बातें सुनकर एक बात समझ आ रही है कि अगर हम लापरवाही करेंगे तो ये गर्मी बहुत खतरनाक हो सकती है हम सभी के लिए। क्या आपने भाभी कभी कोई ऐसा मामला देखा है जहाँ लापरवाही भारी पड़ गई हो?
0: हाँ आरजे आनंद, और ये बात मैं बहुत भारी दिल से बता रही हूँ। हमारे पास के एक गांव के पिछले साल एक छोटा बच्चा था, सिर्फ 5 साल का। उसके माता पिता दोनों खेत में काम करते थे। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी, लेकिन बच्चे को भी साथ ले गए। तेज धूप थी और बच्चे को बार बार प्यास लग रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर में पिला देंगे। धीरे धीरे बच्चा चुप हो गया, खेलना बंद कर दिया, और फिर उसे चक्कर आने लगे। जब तक वे समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने तक बच्चा बेहोश हो चुका था और डॉक्टर ने बताया उसे गंभीर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक हुआ था।
1: ये तो बेहद ही दुखद है भाभी।
0: हाँ अजय आनंद, और सबसे दुख की बात ये है कि ये रोका जा सकता था अगर समय पर पानी पिला दिया जाता, अगर उसे धूप से बचाया जाता। यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं गर्मी को हल्के में मत लीजिए, खासकर बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं।
1: सही कहा टीकन भाभी। साथियों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है। एक छोटी सी लापरवाही एक मासूम की जान ले सकती है। इसीलिए आज से ही तय कर लीजिए अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और खुद को इस गर्मी से बचाना है।
0: और अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, लू को कभी भी हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ गर्म हवा नहीं है, ये शरीर पर सीधा हमला है। अगर हम समय रहते सावधान हो जाए तो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है।
1: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं श्रोताओं, लेकिन जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं एक प्यारी सी शपथ।
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई।
1: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद, अब लेता हूँ आपसे अलविदा। फिर मिलूंगा इसी शो में, यानी सेहत सही लाभ कई के एक और नए विषय और एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, और हाँ दोस्तों, पानी पीते रहिए, और से रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। और श्रोताओं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और हाँ, याद रखिए, पानी पीते रहना ही आपकी एक सही जिम्मेदारी है। छांव में रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। अच्छा चलिए श्रोताओं, अब मैं लेता हूँ आपसे जाने की इजाज़त। बाय बाय, नमस्कार।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइन्स नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।

0: उन्हें आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। अपने दौरे के अगले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर जाएंगी, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकाडातु परियोजना मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है और कावेरी जल पर तमिलनाडु के अधिकारों का हनन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की पहली सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर घरेलू चुनौतियों और आतंकवाद को निरंतर समर्थन देने से ध्यान भटकाने के लिए दुष्प्रचार का आरोप लगाया। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि यात्रा के दौरान राष्ट्रीय पठन दिवस और पठन माह से जुड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर। संपर्क करें 9548539705।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट

प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और आज आनंद अकेला नहीं है। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, एक बार फिर से एक नए प्रोग्राम में हम हाजिर हो गए हैं और कुछ नया नया लेकर आए हैं एक बार फिर से। और आज सोच बदलो का जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत है। आज का विषय है क्या कहेंगे लोग। अक्सर मैं और आप यही सोचते हैं ना कुछ भी करने से पहले कि यार अगर हमने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे, वो किया तो लोग क्या सोचेंगे। हम लोगों के बारे में इतना सोचते हैं कि उनके बारे में सोच सोच के ना अपना फ्यूचर, टाइम, अपना एनर्जी सब कुछ खराब कर लेते हैं। और इसी पर जो है बात करने के लिए मैंने एक नई मेहमान को स्टूडियो में आमंत्रित किया है और एक हमारी प्यारी सी होस्ट एंड दोस्त है और एक और दोस्त है, तो मतलब कुल मिला के चार लोगों के टॉपिक पे चार लोग आए हैं अपनी अपनी राय देने। सो सबसे पहले तो वेलकम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ आरजे, और मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। कई बार मैं आ चुकी हूँ और आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार ही आई हूँ। हर बार मुझे एक न्यू फीलिंग आती है और मुझे हर बार लगता है कुछ नया है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये नया जब हम आप लोग एफएम पे आते हो तो हमें भी लगता है कि हमारे साथ भी कुछ नया है। आपको देख के लग रहा है कि आज एक नई मेहमान है, मतलब कुछ नया है।
1: कुछ नया है
0: बिल्कुल। अपने बारे में थोड़ा बताओ हमारे सुनने वालों को।
1: मैं शैली सिंह, मैं प्रिंसिपल रही हूँ आरएसएम पब्लिक स्कूल
0: जी
1: छजलैट, और रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर जो जॉब स्विच करी कुछ कारणवश, और मैं जिम ट्रेनर भी हूँ। योगा जिम मेरा पैशन है, योगा मेरा मैं खुद के लिए करती हूँ। हाउसवाइफ हूँ अभी तो फिलहाल मैं।
0: तो आज का जो ये प्रोग्राम है इसका नाम है सोच बदलो। जैसे कि इसका नाम ही बताता है कि सोच को बदलना बहुत जरूरी है। आजकल हमारा युवा पीढ़ी सब लोग अपने मोबाइल तक ही सीमित रह गए हैं, सबको मोबाइल में घुसने की आदत है, तो मुझे लगता है कि मोबाइल से बाहर निकल के सोच बदलने की जरूरत है, राइट? और हमारे साथ कुमकुम भी है, रीना भी है, तो आप लोगों का भी स्वागत है। आप लोग भी थोड़ा हेलो हाई करो इस प्रोग्राम में। हेलो बोलिए जी, सोच बदलो में आपका स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच आरजी आनंद
0: जी।
2: मैं कुमकुम, आप सबकी प्यारी दोस्त, फिर से आपका एक और बार स्वागत करती हूँ मैम हमारे नए शो में
0: जिसका नाम है
2: सोच बदलो।
0: रीना जी आप कुछ बोलेंगी?
3: हेलो एवरीवन, मैं आरजे रीना, आप सभी मुझे जानते हैं और हम ढेर सारी बातें करने वाले सोच बदलो के ऊपर।
0: बिल्कुल जी, तो सोच बदलो में जैसे कि हमने आज टॉपिक उठाया है क्या कहेंगे लोग, तो सबसे पहले श्रोताओं आपको भी पता है जैसे कि मैंने आते ही जिक्र किया, हम अक्सर कोई भी चीज करते हैं तो हमारे दिमाग में हमारे जहन में एक ही बात आती है कि लोग क्या कहेंगे। तो शैली जी इस पे आपका क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हर दुनिया का दूसरा इंसान यही सोचता है कुछ भी करने से पहले?
1: पहले तो मैं शैली सिंह आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और चार लोग क्या कहेंगे, ये ना बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे जितनी बात की जाए वो कम है। चार लोग उस समय कहाँ होते हैं कि जब हमारे बच्चे की फीस नहीं जा रही होती है,
0: करेक्ट?
1: वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का चूल्हा नहीं जल रहा होता है। वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का कोई सदस्य हॉस्पिटल में होता है। वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं और हमारे पास कोई नहीं होता जिनसे हम अपनी फीलिंग शेयर कर पाए। वो चार लोग तभी क्यों आते हैं जब हम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम ग्रो कर रहे होते हैं, वो चार लोग तभी क्यों आते हैं? तभी उनमें हमें हर चीज में कमियां क्यों दिखाई देती हैं? उससे पहले लाचार बेचार उनके सामने बने रहो तो उनके लिए अच्छे हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी अपने मन की कर ली तो आप वहीं पे पूरे।
0: तो मतलब आपका कहने का ये है कि कुल मिला के इन चार लोगों के बारे में नहीं सोचना है, जब जब ये चीजें होती हैं तो ये चार लोग गायब होते हैं, जब आपकी प्रोग्रेस शुरू होती है तो ये लोग।
1: उन चार लोगों के बारे में नहीं सोचना है, वो चार लोगों के बारे में आपको ये सोचना है कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है ठीक है, और आपके वो लोगों के कहने पे आप अपने बच्चों को घर नहीं भेज रहे हो पढ़ने के लिए,

0: जाते हैं, और जब एक्चुअल में हमें इन लोगों की जरूरत होती है तब ये लोग आते नहीं है, जब हमें इनकी जरूरत नहीं होती तब ये लोग आके टांगड़ आते हैं, है ना। बट ये चार लोग आज तक किसी को समझ में नहीं आए हैं। मुद्दे की बात ये है, क्यों कुमकुम कभी तुम्हें लगा है कि ये चार लोग तुमने देखे हैं कभी कहीं?
1: नहीं, वो चार लोग आपको हर जगह दिख जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चार लोगों के सामने कैसे बिहेव करते हैं और किस तरह की से उनकी बातें अपने ऊपर लेते हैं।
0: और तुम रीना, तुम्हें क्या लगता है चार लोगों के बारे में?
2: मेरा मानना ये है कि चार लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बस आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने करियर पर ध्यान दो, क्योंकि जब आप चार लोग की बात सुनोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
0: जी हाँ दोस्तों, चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो प्रोग्राम है सोच बदलो। थोड़ी देर में लौट कर आते हैं कुछ और खास बातों के साथ।

0: एक बार फिर से वेलकम बैक है आप सभी का। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद और प्रोग्राम है सोच बदलो। श्रोताओं, जब भी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं या जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही सवाल आता है, क्या कहेंगे लोग? अगर मैं असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, अगर लोग मुझ पर हंसेंगे तो मुझे बड़ी बेइज्जती होगी, मुझे बड़ी शर्म आएगी। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ऐसा लगेगा मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। कई बार लोगों के चक्कर में हम जो चीज हम करना चाहते हैं एक्चुअली वो कर नहीं पाते हैं, और इसी पर हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। तो शाली जी, क्या मुझे लगता है कि मुझे तो लगता है ऐसा कि लोगों को सोच बदलने की जरूरत है, आपको क्या लगता है, क्या हमें इन चालू के बारे में सोचना चाहिए या अपना फ्यूचर अपना करियर सेट करने के बारे में सोचना चाहिए?
1: को मेरा क्या सभी का मानना यही होना चाहिए कि चार लोगों को साइड करो, अपने करियर पे, अपनी फैमिली पे और अपने आप पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ के लिए फोकस करो। क्योंकि जब आपके पास एवरीथिंग होगा ना, पैसा पावर सब होगा, वो चार लोग आपके घर में ही बैठे नजर आएंगे और रोज नजर आएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत ही अच्छा बोला आपने शैली जी। डरते रहेंगे जो लोगों की बातों में आएंगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो लोगों की बातों में आएंगे। तुम्हें क्या लगता है कुमकुम?
2: मुझे भी यही लगता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उनको यही सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे वो साइड में रख दिया जाए और खुद के सपनों की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।
0: ग्रेट जी, शैली जी कुछ कह रही हैं आप?
1: वो एक सॉन्ग है, राजेश खन्ना जी का है शायद, मेरे ख्याल से उसमें वही है कुछ तो

0: कहेंगे।
1: ग्रेट, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए अब जब शैली जी ने इतनी खूबसूरत आवाजों में इस गाने को गाई दिया, इतनी ब्यूटीफुल आवाज में, तो अब इस गाने को सुनी लेते हैं, फिर थोड़ी सी देर में लौट कर आते हैं सोच बदलों में।

0: इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। तो रीना, आपको क्या लगता है सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी? क्या सच में उन्हें भी सोच बदलने की जरूरत है? चार लोगों को लेकर जो लोग सोचते हैं, हम और आप अक्सर सोचते रहते हैं, मुझे नहीं पता तुम सोचती हो नहीं, मैं कभी कभी सोच लेता हूँ।
1: नहीं नहीं यार, मैं अक्सर सोचती हूँ और मुझे लगता है कि चार लोगों की जरूरत जब आपको पड़ती है वो आपके साथ नहीं खड़े होते, बल्कि जब आपको जरूरत नहीं होती तब आपके साथ रहते और बोलते यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तेरे साथ था, बस यार बताना चाहिए था ना। मतलब वो सहानुभूति देते हैं, आपको दिखाते हैं कि मैं तेरा साथ हूँ, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आपके साथ नहीं आएंगे, बहाना बना लेते हैं कि यार मेरे पास कुछ काम है मैं भी नहीं आ सकता। तो ये है, तो बस आप अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी दुनिया बोलने सुनने के लिए है।
0: बहुत अच्छा बोला रीना आपने, और मुझे भी लगता है श्रोताओं, देखिए सोच बदलने के साथ साथ ना अपने इरादों को भी बदलिए और लोगों की बातों को छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे लगता है लाइफ आपकी है तो डिसीजन भी आपके होने चाहिए। क्यों शैली जी?
2: बिल्कुल, आजकल का जो सोशल मीडिया का जमाना है, आप उसमें देखिए हमारी कितना फ्रेंड सर्कल फैला पड़ा है, कितना दोस्त है, ठीक है, लेकिन जब आप परेशान होंगे आपके मोबाइल में एक नंबर नहीं मिलेगा कि आप उसको डायल करें और कहें यार मैं बहुत परेशान हूँ आ जा।
0: करेक्ट,
2: वो एक नंबर नहीं होगा आपके पास।
0: बिल्कुल, और मुझे ऐसे लगता है कि चार लोगों को ना हम ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पे भी आजकल वो चीज नहीं डालते हैं जो हमारी पसंद की है, वो डालते हैं जो लोगों को पसंद आए।
2: बिल्कुल,
0: है ना, वो इसलिए ताकि कोई डिप कमेंट ना कर दे। तो आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में भी हम चार लोगों का सोच रहे होते हैं, जबकि हमारा अपना अपना खुद का प्रॉपर्टी है सोशल मीडिया। भाई अगर मेरा अकाउंट है तो मेरा अपना प्रॉपर्टी है, मैं उसका राजा हूँ, तो मुझे क्यों दुनिया के बारे में सोचना? जो मुझे अच्छा लगे मैं तो वो डालूंगा ना, बट फिर भी हम वहां भी लोगों का सोच रहे होते हैं कि नहीं यार अगर हमने ये चीज डाल दी तो इस पे लोगों के क्या कमेंट। स्पेशली लेडीज को मुझे लगता है बहुत जरूरत है सोच बदलने की, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। आप क्या कहेंगी?
2: मैं तो इस चीज को आनंद
0: एक्सेप्ट नहीं करती,
2: फेस करती हूँ रोज।
0: ओके,
2: फेस मतलब जब से मेरी जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैंने फेस करा, क्योंकि मैंने कभी लोगों की सुनी ही नहीं,
0: मतलब इसका
2: और सही मैं जब सुनी ही नहीं हूँ तो आज मेरे बच्चे सेटल हो रहे हैं, मैं ग्रो कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरा जो हस्बैंड का सपोर्ट है ना वो बहुत ज्यादा है। वो भी कहते हैं जो सही है वो सुनो, जो गलत है उसे मत सुनो।
0: करेक्ट करेक्ट, मुझे लगता है कि श्रोताओं सोच बदलनी सिर्फ लेडीज को नहीं जेंट्स को भी होगी, और जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे तब तक चीजें अपनी जगह पे सेट नहीं होंगी, और यही हमारा भी एक मकसद है इस प्रोग्राम के जरिए कि हम आपको एक सही और सटीक मैसेज दे सकें, और ताकि हमारे आसपास में जो हमारे समाज में लोग हैं जब तक उनकी सोच नहीं बदलेगी तब तक चीजें सेटल नहीं होंगी। तो सोच बदलो का एक छोटा सा मकसद यही है कि हमें अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा समय के साथ साथ, जैसे हम अपना खान पान चेंज करते हैं, जैसे मौसम चेंज होता है, वैसे ही सोच का चेंज होना भी बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको मैम? जरूरी है ना?
1: मैं एक बात कहती हूँ, सुनो
0: प्लीज।
1: तुमने देखा होगा जब इंसान सामने होता है ना, हम उसकी तारीफ नहीं कर पाते हैं, जब वही इंसान हमसे दूर चला जाता है हम फिर बोलते हैं यार वो इंसान था बहुत अच्छा, लेकिन कभी हमने उसके सामने नहीं बोला होगा। तो आप इतना क्यों सोचते हो यार किसी के बारे में, हम क्यों सोचे किसी के बारे में?
0: करेक्ट करेक्ट,
3: आप दोनों मैम की बातों से मुझे एक बात मेरी बहुत अच्छी याद आई कि जैसे मैं अपने कॉलेज टाइम में थी मैं भी बहुत सोचती थी कि चार लोग क्या कहेंगे, बट अब जब शादी के बाद मैंने अपनी सोच को बदला है कि लोगों को छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, लोग तो कहेंगे जो कहना है, उनका काम है कहना। बट जब से उन चार लोगों में से कुछ ऐसे चार लोगों से मैं मिली हूँ जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक तो आप ही हो गए आज ही आनंद,
0: आपकी शादी होगी बताया नहीं था आपने मुझे, ये मेरे को आज ही पता चला है। अच्छा हाँ, आगे बोलो
3: जी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीछे रह के खंजर भौंकने का काम करते हैं, तो उन लोगों से बच के मैं इन लोगों में आई हूँ। कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको पीछे खींचेंगे, कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे।
0: करेक्ट, सही कहा है।
1: तो आप उनके साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ाते हैं।
2: ये बात बहुत अच्छी है कि चार लोग बुरे ही नहीं होते हमेशा, हाँ, चार लोग अच्छे
1: भी होते हैं,
2: चार लोग केवल निगेटिव नहीं पॉजिटिव भी होते हैं।
0: क्या बात है, इसी इन्हीं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो
1: एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है और अब हमारा जाने का समय हो गया है, लेकिन जाने से पहले हम चार लोग हैं तो हम चार लोगों की एक एक मैसेज तो होनी चाहिए सोच बदलो प्रोग्राम को लेकर। जी शैली जी, आपका क्या संदेश होगा हमारे तमाम सुनने वालों के लिए?
1: मेरा संदेश तो सबसे पहले महिलाओं के लिए है कि सबसे पहले उन्हें बदलने की जरूरत है। हमारी बेटी या हमारा बेटा कहाँ जाएगा, किसके साथ शादी करेगा, कैसे पढ़ेगा, तो पहले वो अब जो घर की लीडर है वो है, उन्हें सोच बदलिए कि आपने बच्चों को दूसरे के ऊपर मत छोड़िए, उनको अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है, जो आपके बच्चों को ठीक लगता है वो करने दीजिए।
0: करेक्ट। और आप कुमकुम क्या कहेंगी?
2: मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जैसा कि मैम ने कहा महिलाओं के लिए, मैं पुरुषों के लिए कहना चाहूंगी कि जो भी हस्बैंड है ना, वो अपनी वाइफ को जब सपोर्ट करते हैं तो वो आसमान छूती हैं, तो उनको पूरा सपोर्ट कीजिए और वो आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करने दीजिए जिससे कि वो आगे बढ़ पाए।
0: रीना?
3: मैं यही कहना चाहूंगी, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, हमें कभी भी किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, मोटिवेट करो आप उनको ताकि वो आगे बढ़े अपनी जिंदगी में।
0: बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, हम चार लोग चार राय रख रहे थे अपनी अपनी, मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा एपिसोड। फिलहाल हमारा जाने का समय हो रहा है, जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा कि रुक चाहा दुनिया ने हर बार, फिर भी सपनों ने उड़ना नहीं छोड़ा, जो डर गए लोगों की सोच से उन्होंने खुद को जीना नहीं सीखा। तो आप जो है जीना सीखना चाहते हैं तो लोगों की बातों को छोड़िए, अपने आप पे और अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये दुनिया ऐसी है, आगे पीछे बातें होती रहेंगी। इनफैक्ट मैं तो ये भी जानता हूं कि जब आप आगे बढ़ते हो ना तो आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं। जैसे शैली जी ने कहा, नेगेटिव भी चार लोग नहीं होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो उन पॉजिटिव लोगों को तलाशिए, वो आपको जरूर आपके आसपास मिल जाएंगे। और बाकी चार पॉजिटिव लोग हम भी हैं, हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, हम भी आपके साथ हैं। फिलहाल यहाँ से लेते हैं हम जाने की इजाजत। थैंक यू सो मच गाइज, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू कुमकुम, थैंक यू रीना। ओके चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड पे इसी चैनल पर। तब तक के लिए सुनते रहिए
1: 89.6 FM रेडियो मुरादाबाद।
0: क्या बात,
3: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: चलिए गाइस, बाय बाय।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: नमस्कार, सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। और आज मैं हूं आपका दोस्त आरजी आनंद, एक बार फिर से आपका फेवरेट प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गया हूं, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। हम बताते हैं उन कहानियों को जिनमें स्वाद भी है, संस्कार भी है और स्वरोजगार का विस्तार भी है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ कौन है? मेरी प्यारी दोस्त आरजे ईशी। हेलो ईशी, कैसे हो आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दो।
1: आपकी अपनी आरजे ईशी। आज हम आपको लेके चल रहे हैं पूर्वांचल की उस धरती पे जहाँ मिठास सिर्फ चीनी में नहीं परंपरा में घुली है। जी हाँ, आज की कहानी अम्बेडकर नगर।
0: यहाँ की गलियों में सुबह की शुरुआत होती है बालूशाही और देसी घी की खुशबू से, और शाम ढलती है चाट की चटपटी महक, और मेलों में खजला वे लाल गन्ने की गोटी की मिठास लोगों को जोड़ती है।
1: बालूशाही का नाम लेते ही मन में एक तस्वीर आती है, बाहर से कुरकुरी अंदर से नरम चाशनी में डूबी हुई।
0: बालूशाही उत्तर प्रदेश की पारंपरिक मिठाइयों में गिनी जाती है। खास करके इतिहासकार बताते हैं कि ये मुगलानी रसोई से प्रेरित मिठाई है, बादुशाह या बदुशाह से मिलता जुलता है। अम्बेडकर नगर की बालूशाही की खासियत है कि देसी घी में धीमी आंच पर तलना, मुख्य सामग्री जैसे मैदा, घी, मोयन के लिए दही, बेकिंग सोडा और हल्की फुलावट के लिए इलायची और गाढ़ा चीनी का चाशनी।
1: और इसका टेक्सचर कैसे बनता है?
0: घोल को ज्यादा नहीं गूंधा जाता, हल्के हाथों से मोड़ कर गोल आकार दिया जाता है ताकि तलने पर अंदर से परत बने। धीमी आंच पर तलकर गुनगुनी चाशनी में डुबोया जाता है। यही तकनीकी इसे बाहर से कुरकुरा और अंदर से मुलायम बनाती है।
1: विवाह, तिलक, दीपावली, होली हर शुभ अवसर की शान।
0: जी हाँ, यही अतिथि सत्कार और सम्मान का प्रतीक भी मानी जाती है। कई हलवाई परिवार पीढ़ियों से इसकी विधि मौखिक परंपरा से आगे बढ़ रहे हैं।
2: एक जनपद एक व्यंजन जो सरकार की नई पहल है, इसके अंतर्गत जनपद अंबेडकर नगर में बालूशाही और चाट का चयन किया गया है। जनपद अंबेडकर नगर के ग्रामीण बाजारों में, हाटों में, चौराहों पे बालूशाही बहुत ही पसंद की जाती है और बहुत बड़े स्तर पे बिक्री होती है इसकी। साथ ही जनपदवासी चाट का भी बहुत लुत्फ उठाते हैं और चाट को भी बहुत पसंद करते हैं। अंबेडकर नगर का खजला गोविंद साहब के मेले में बहुत ही पसंद किया जाता है और मेले का प्रमुख आकर्षण होता है। इसी प्रकार से बुनिया भी अतिष्ठानों और अलग अलग अवसरों पे बनाया जाता है जनपद में। बालूशाही और चाट और इस तरह के जितने भी ये व्यंजन है, और इस पहल से ये बहुत बड़ा एक फायदा हो रहा है कि छोटे उद्यमियों को हम बढ़ावा दे पाएंगे और जनपद में रोजगार सृजन के नए अवसर तैयार होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये अनोखी पहल उत्तर प्रदेश को निश्चय ही पूरे देश में और विश्व में एक अलग पहचान।
3: अग्रारी मिष्ठान भंडार रामबाबू बाजार की बालूशाही है, और अग्रारी मिष्ठान भंडार की बहुत फेमस बालूशाही है। अगल बगल के 10-15 किलोमीटर के एरिए में, क्या और ज्यादा दूर तक, मतलब समझ लीजिए पूरे जिले में बहुत फेमस बालूशाही है, बहुत अच्छी बालूशाही है, बहुत लोकप्रिय हो चुका है अग्रारी मिष्ठान भंडार रामबाबू बाजार की बालूशाही, बहुत स्वादिष्ट बालूशाही है।
4: सरकार एक व्यापारियों के लिए एक स्कीम लेकर के आई है, एक जनपद एक व्यंजन, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
3: भाजपा सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी योजना है। इससे व्यापारियों को बहुत लाभ होगा ही, साथ ही अम्बेडकर नगर जनपद की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, उससे हर तरह से बहुत फायदा सभी लोगों को, पूरे जनपद को मिलेगा। और इसके लिए भाजपा सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे जनपद को इतनी अच्छी योजना दी है, जिससे व्यापारियों को भी लाभ होगा और हमारे जनपद की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
5: चाट यहाँ का बहुत बढ़िया है, आप सब आइए और खाइए, यहाँ पर एकदम साफ सुथरे से चाट बनता है और यहाँ की क्वालिटीज जो है बहुत बढ़िया है। बस आप लोग यहाँ पर आइए आनंद नगर चौराहा किसने चाट भंडार।
6: चाट जो है भैया बहुत बढ़िया बनाते हैं और एकदम साफ सुथरा तरीके से बनता है, और दूसरी बात चटपटा इसमें उतना ही रहता है जितना आदमी अच्छे से मजे लेके खा सकता है। तो हम तो बोलेंगे कि आप एक बार आइए और जरूर ट्राई कीजिए, यहाँ का सबसे फेमस है।
5: हम लोग यहाँ पिछले 3 साल से चाट खाने आते हैं और यहाँ पे इनका चाट मशहूर है आनंद नगर में। ये इनका चाट यहाँ पे खट्टी मीठी चटनी के लिए मशहूर है।
1: अब चलते हैं शाम के बाजार में जहाँ तवे पे सिकते हैं आलू टिक्की की आवाज आ रही है।
0: अम्बेडकर नगर की चाट जनपद की सामाजिक संस्कृति का सा है। मुख्य सामग्री है आलू की टिक्की, उबले मटर या चना, दही, इमली की मीठी चटनी, हरा धनिया, पुदीना की चटनी, चाट मसाला, सेव और धनिया।
1: इतिहासकार बताते हैं कि चाट की शुरुआत उत्तर भारत में मुगल काल के दौरान मानी जाती है, जहाँ मसालों का संतुलन स्वाद और पाचन दोनों के लिए किया जाता है।
0: यहाँ की खासियत है स्थानीय मसाले मिश्रण दुकानदार परिवार पीढ़ियों से मसालों का संतुलन सीखते आए हैं। मेले, रामलीला, ईद, सामाजिक आयोजन, हर घर हर जगह चाट की धूम मची रहती है।
1: अब बात करते हैं खजला के, जो विशेष रूप से गोविंद साहब मेले में प्रसिद्ध है।
0: खजला मैदा, घी और चीनी या गुड़ से बनाया जाने वाला परतदार और कुरकुरा व्यंजन है। इसे कई परत में बोलकर, मरोड़कर और धीमी आंच पर तलकर तैयार किया जाता है। ये लंबे समय तक खराब नहीं होता, इसीलिए लोग इसे मेले से घर लेकर जाते हैं।
1: पूर्वांचल की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा ये व्यंजन धार्मिक आस्था और स्वाद का संगम है।
0: अब चलते हैं खेतों की ओर, जहां लाल गन्ने की फसल लहरा रही है।
1: लाल गन्ने की गोटी ग्रामीण जीवन और कृषि परंपरा का प्रतीक है। विधि है मैदा और चावल के आटे में मोइन डालकर कड़क गूंदना, लोई बनाकर छड़ जैसा आकार देना, धीमी पर तलना, गुड़ की गाढ़ी चाशनी में डुबोना, लकड़ी के बर्तनों में फैलाकर सुखाना और ठंडा होने पर गुड़ की सफेद या भूरे रंग की परत जम जाना, यही है इसकी पहचान।
0: यह उत्पाद अयोध्या, सुल्तानपुर, बसंती, आजमगढ़ तक लोकप्रिय है। फसल उत्सव और ग्रामीण मेलों में इसका विशेष महत्व होता है।
1: अब बात करते हैं रोजगार।
0: जनपद में लगभग 105 से अधिक इकाई, 400 प्रत्यक्ष, 500 अप्रत्यक्ष रोजगार, 55 से अधिक विमम निर्माण इकाई, 50 से अधिक स्ट्रीट वेंडर और स्वयं सहायता समूह सक्रिय है। भट्टी ब्लॉक को एक उत्पाद के तहत इन व्यंजनों के लिए चयनित किया गया है।
1: ये सब सुनकर लगता है कि अम्बेडकर नगर का स्वाद अब सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहा, ये तो लोगों की रोजी रोटी बन चुका है।
0: बिल्कुल, और इसके बदलाव के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार, दूरसंचार की सोच और लगातार मिल रहे प्रोत्साहन और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP योजना और अब वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी ODOC योजना, सरकार का उद्देश्य साफ है, स्थानीय स्वाद को वैश्विक पहचान देना।
1: लेकिन RJ सरकार सिर्फ योजना बनाती है या जमीन पर भी मदद पहुंचा रही है?
0: अरे अब तो सरकार सीधा कारीगरों और छोटे उद्योग के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। सोचिए, जो हलवाई कभी सिर्फ मेले तक सीमित था, आज उसकी मिठाई ऑनलाइन ऑर्डर होकर दूसरे शहरों तक पहुंच रही है। जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह घर में खचला बनाते थे, आज उन्हें पैकेजिंग और ब्रांडिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है।
1: वाह, यानी परंपरा प्रोफेशन बन रही है।
0: बिल्कुल, सरकार द्वारा उद्यमी को मिल रही है कई सुविधाएं, खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगने पर अनुदान और सब्सिडी, मुद्रा योजना और बैंक ऋण के माध्यम से आसान वित्तीय सहायता, जिला उद्योग केंद्र में निःशुल्क प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम, आधुनिक पैकेजिंग, फूड सेफ्टी और गुणवत्ता सुधार की विशेष कार्यशालाएं, स्वयं सहायता समूह और महिलाओं को उद्योग को विशेष प्रोत्साहन, निवेश मित्र पोर्टल के जरिए आसान ऑनलाइन पंजीकरण और लाइसेंस की सुविधा, राज्य और राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल में अपने उत्पाद को प्रदर्शित करने का अवसर, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ने की पहचान,
1: यानी अब चाट के ठेले से लेके मिठाई की दुकान तक हर हाथ को मिल रहा है सरकार का साथ।
0: सही कहा आपने RJ जी, सरकार की कोशिश है कि अम्बेडकर नगर की हर पारंपरिक स्वाद को सिर्फ स्थानीय पहचान न रहे बल्कि ब्रांड उत्तर प्रदेश का हिस्सा बने।
1: और यही तो असली आत्मनिर्भरता है, जहां परंपरा भी बचे, रोजगार भी बढ़े और युवा अपने जिले में ही भविष्य तलाशे।
0: बिल्कुल, आज का यह हुनर सिर्फ तवे और कढ़ाई तक सीमित नहीं है बल्कि नए भारत की आर्थिक ताकत बनता जा रहा है।
1: यानी सरकार स्वाद को बना रही है, ब्रांड और परंपरा को दे रही है मार्केट।
0: कुछ चुनौतियां भी हैं, आधुनिक मशीनरी और अभाव गुणवत्ता की असंगति, स्वास्थ्य को लेकर भ्रांतियां, लेकिन सरकार प्रशिक्षण और जागरूकता इन चुनौतियों को अवसर में बदल रही है।
1: तो श्रोताओं, अम्बेडकर नगर की ये कहानी सिर्फ मिठाई की नहीं बल्कि मेहनत, परंपरा और विकास की कहानी है।
0: जब देसी घी की खुशबू, चाट की चटकार, खजले की कुरकुराहट और गन्ने की रोटी की मिठास सब मिलते हैं, तब बनता है विकास का स्वाद।
7: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: जहाँ परंपरा भी है,
1: प्रगति भी है
0: और हर थाली में आत्मनिर्भरता की मिठास भी है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की एक नई कहानी। आज हम बात कर रहे थे अम्बेडकर नगर के बारे में, यहाँ की खूबसूरती के बारे में, यहाँ के खाने पीने की चीजों के बारे में। फिलहाल इस कार्यक्रम से अब मैं लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत, और मेरे साथ थी आरजे शिका। तो शिका, आप चले?
1: जी बिल्कुल,
0: बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आप रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।

श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार

चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर गृह के निर्माण

0: में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसिलिंग करना। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गाँव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।

कार्यक्रम के दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में

0: के शहरों तक किया है। एसटीपीआई पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एसटीपीआई को टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहां पर पटना में साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी एसटीपीआई जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, एआई के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69(1) के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप

0: सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
1: Our position on Indus Water Treaty is well known.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती, जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता, जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूत
0: रहा। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुद्र की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
6: मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना और मेरे साथ आरजे खुशी है और आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं महिला मंच शो, जहाँ हम बात करने वाले हैं जनगणना के बारे में। सो मोस्टली देखा जाता है कि घर पर हमारी प्यारी महिला ही रहती है और कई बार जल्दी जल्दी में हम ऐसी जानकारी भी दे देते हैं जो हमें नहीं देना चाहिए। इसीलिए आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे जनगणना में क्या बताना सही है, क्या नहीं, और कैसे खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। याद रखिए, सही जानकारी देना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन OTP, ATM, PIN, बैंक पासवर्ड या मोबाइल पर आया कोई कोड किसी को भी नहीं बताना होता है। अगर कोई व्यक्ति जनगणना के नाम पर बैंक डिटेल या OTP मांगे तो तुरंत सतर्क हो जाए, क्योंकि असली सरकारी कर्मचारी कभी ऐसी जानकारी नहीं मांगते हैं। तो चलिए आज के इस जरूरी और जागरूक करने वाली बातचीत के शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे जनगणना की। जनगणना यानी देश में रहने वाले लोगों की गिनती और उससे जुड़ी जरूरी जानकारी इकट्ठा करना। इसमें सिर्फ संख्या नहीं बल्कि उम्र, शिक्षा, रोजगार और परिवार की जानकारी भी शामिल होती हैं। सरकार इन्हीं आंकड़ों के आधार पर तय करती है कि कहाँ स्कूल बनेगा, कहाँ अस्पताल की जरूरत है और किन इलाकों में सुविधाएं पहुँचानी हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए, सही जानकारी देना ही जरूरी है।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और रीना जी ने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन जानकारियां दी रही हैं बैक टू बैक। शो का नाम है महिला मंच और दोस्तों जनगणना क्यों जरूरी है? अगर सरकार को यही नहीं पता होगा कि किस इलाके में कितने लोग रहते हैं तो विकास की योजना कैसे बनेगी? जनगणना सरकार को ये समझाने में मदद करती है कि कहाँ सड़क चाहिए, कहाँ अस्पताल, कहाँ स्कूल। आपकी एक सही जानकारी देश के भविष्य को बेहतर बना सकती है। लेकिन सावधान रहें, कई बार सरकारी कर्मचारी आपसे बैंक OTP या फिर ATM पिन नहीं मांगता। अगर कोई मांगे तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। सही जानकारी दें लेकिन अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखें।
6: क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताई तुमने खुशी। और अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि सही जानकारी देना क्यों जरूरी है। अगर लोग गलत एज, गलत संख्या, गलत जानकारी तो सरकारी रिकॉर्ड भी गलत बनेगा और जब रिकॉर्ड गलत होगा तो योजनाएं भी सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए हमेशा सच बोलिए, लेकिन ध्यान रखिए बैंक डिटेल, पासवर्ड और OTP जैसी चीजें कभी शेयर मत करिए। जागरूक बनिए, देश के विकास में योगदान दीजिए। और श्रोताओं एक बात और मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, बहुत सी महिलाएं जो घर पर ही होती हैं और वो घबरा जाती है जब उनसे कोई पूछने के लिए आते हैं जनगणना के समय में, तो आपने घबराना नहीं है, बस सही जानकारी देनी है। कभी कभी होता है ना कि हम भाई सच नहीं बोलेंगे, हम गलत बोल देते हैं, और जब आप गलत बोलते हैं तो आपकी सारी जो डिटेल्स है वो गलत ही साबित हो जाती है, तो फिर जो आपको योजनाएं मिलने वाली होती है उसमें भी दिक्कत आती है, रुकावटें आने लग जाती है, तो उसी के बाद हमें फिर से चक्कर लगाने पर जाते हैं। इसीलिए हमेशा सच बोलिए, सही जानकारी दीजिए।
1: कि सही जानकारी देना बहुत जरूरी है। जब आप सही जानकारी देंगे तब आपके आने वाले फ्यूचर में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी एंड आप गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आएगी तो उसमें भी आप लाभ उठा सकते हैं। और आजकल तो मोबाइल फ्रॉड बहुत बढ़ गया है दोस्तों। OTP यानी वन टाइम पासवर्ड आपके बैंक खाते और ऑनलाइन अकाउंट की सुरक्षा के लिए होता है। इसे किसी के साथ शेयर करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, सरकारी कर्मचारी कभी ओटीपी नहीं मांगते। अगर कोई जनगणना के नाम पर ओटीपी मांगे तो तुरंत सावधान हो जाइए। आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है,
6: क्योंकि जागरूक रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अब हम बात करेंगे पहचान पत्र कब दिखाना चाहिए। जब कोई सरकारी अधिकारी जानकारी लेने आए तो पहले उसका पहचान पत्र जरूर देखें। बिना पहचान पत्र वाले किसी व्यक्ति को आधार कार्ड, पैन कार्ड या जरूरी दस्तावेज हाथ में मत दीजिए। सही अधिकारी हमेशा अपनी पहचान बताते हैं। याद रखिए, सुरक्षा सबसे पहले। जागरूक रहे और दूसरों को भी जागरूक बनाए। और इस चीज में बिल्कुल ना घबराए, क्योंकि जो आपसे जनगणना के लिए आ रहा है वो भी आपको बताएगा कि हम सरकार की तरफ से, उसके गले में आई कार्ड जरूर होगा। इस चीज का ध्यान रखना है।
1: बैंक डिटेल क्यों नहीं बतानी चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। कई बार क्या होता है ना, कुछ फ्रॉड इंसान भी आ जाते हैं और वो ऐसे ही डिटेल्स कुछ पूछ लेते हैं जो पर्सनली होती हैं, जो हम हर किसी से हमें नहीं शेयर करने चाहिए। दोस्तों, जनगणना में आपकी बैंक जानकारी नहीं पूछी जाती। अगर कोई व्यक्ति बैंक अकाउंट नंबर, एटीएम पिन या मोबाइल बैंक पासवर्ड पूछे तो समझ जाइए कि वे धोखेबाज हो सकता है। सरकारी प्रक्रिया में आपकी निजी बैंक जानकारी जरूर नहीं होती, इसलिए सतर्क रहें और किसी भी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। तो श्रोताओं, अभी आपसे मिलते हैं म्यूजिकल ब्रेक के उस पार और करेंगे आपसे और भी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ। आज हमारे पिटारे में शो का नाम है महिला मंच, करेंगे आपसे और भी गुफ्तगू और बहुत सारी जानकारियाँ जो आपके लिए, हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है।

0: नमस्कार श्रोताओं, एक बहुत ही प्यारे गाने के बाद फिर से हम आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं, जहां हम महिला मंच में जनगणना के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि सही जानकारी देना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे महिलाओं के लिए जागरूक सावधानी। अगर घर में महिलाएं अकेली हो तो किसी भी अनजान व्यक्ति को तुरंत घर के अंदर ना आने दे। पहले पहचान पत्र देखे, जरूरी हो तो पड़ोसी या परिवार के सदस्य को बुला ले। सुरक्षा और जागरूकता दोनों जरूरी है। याद रखे, सही जानकारी दे लेकिन अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे।
1: जागरूकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आपने कहा जैसे कि अकेली महिलाएं घर में होती हैं और कोई भी अनजान व्यक्ति आ जाता है, तो वो लाइक घर में आने

0: की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें तुरंत उनको अंदर नहीं अलाउ करना चाहिए। और आपको लगता है कहीं अगर कोई डाउट है कि ये व्यक्ति सही नहीं लग रहा है, तो आप अपने पड़ोसी को भी बुला सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को भी बुला सकते हैं, उसके बाद ही उनसे बातचीत करें। और कार्यक्रम को हम बैक टू बैक आगे बढ़ा ही रहे हैं, जानकारियां भी आपके लिए लेकर आए हैं श्रोताओं। तो अक्सर बुजुर्ग लोग जल्दी भरोसा कर लेते हैं, आपने देखा होगा जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो जल्दी भरोसा कर लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें समझाइए कि OTP, ATM, पिन और बैंक पासवर्ड किसी को ना दें। अगर कोई फोन पर या घर आकर निजी जानकारी मांगे तो पहले परिवार के किसी सदस्य से सलाह लें। जागरूक परिवार ही सुरक्षित परिवार होता है रीना।
1: सिर्फ इसमें बुजुर्ग और महिलाएं नहीं, बल्कि हमें बच्चों को भी सावधान करना चाहिए, क्योंकि बच्चे होते हैं मन के सच्चे, उनसे जो पूछो वो सच ही बताते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि क्या हमें नहीं बता। इसीलिए अपने साथ साथ बच्चों को भी जागरूक करें। सो अब हम बात करेंगे बच्चों को क्या सिखाएं। बच्चों को बचपन से ही सुरक्षा की बातें सिखाना जरूरी है। उन्हें बताइए कि घर की निजी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को ना बताएं। OTP और पासवर्ड क्या होते हैं ये सभी समझाइए। सुरक्षा की शुरुआत घर से ही होती है, क्योंकि जब आप बच्चों को सिखाएंगे, कहते हैं ना, जैसा बीज बो फल भी आपको वैसा ही मिलता है। इस तरीके से जैसे आप बच्चों को समझाएंगे, बच्चे वही काम करेंगे। और बच्चे सच बताओ बड़े सिंसियर होते हैं, क्योंकि एक बार आपने उस चीज के लिए मना कर दी कि ये काम नहीं करना है, तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि बच्चों को समझाना उनके आगे भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है।
0: अच्छा रीना, कई बार ना फर्जी कॉल आ जाते हैं।
1: हाँ ये तो है।
0: और फर्जी कॉल से कैसे बचें दोस्तों, ये हम आपको बताते हैं। अगर कोई आपको फोन करके कहें कि जनगणना के लिए बैंक डिटेल दीजिए, सरकारी कर्मचारी फोन पर OTP या बैंक पासवर्ड नहीं मांगते। अनजान नंबरों पर भरोसा करने से पहले जांच जरूर करें, आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है।
1: और साथ ही साथ आपको भी पता है कि डिजिटल जमाना हो गया है, सोशल मीडिया पर आजकल हर चीज अवेलेबल है, आपको वहीं से जानकारियां भी मिल जाती है। और कभी कभी ऐसा फेक न्यूज भी आ जाता है जहां आपको कहा जाता है कि हम आपको लिंक शेयर करेंगे, आपको इसको फिल करना है, पूरी डिटेल्स भरना है। लेकिन इस चक्कर में ना कभी कभी हम भी सच मान लेते हैं, यार ये तो सच होगा, और घर बैठे बैठे हम अपना फॉर्म भर सकते हैं और इससे अच्छा क्या ही होगा। लेकिन याद रखिए, हर बार सही जानकारी और लिंक आपको ऐसा नहीं मिलता है। इसीलिए जब भी आप कोई लिंक के सोशल मीडिया के थ्रू फॉर्म फिल करते हैं, तो उन पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आजकल लोग आधार कार्ड और निजी दस्तावेज सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। अपने जरूरी दस्तावेज हमेशा सुरक्षित रखें और इंटरनेट पर सोच समझ कर ही कुछ पोस्ट करें। सुरक्षित इंटरनेट, सुरक्षित जीवन।
0: अरे वारीना, ये तो आपने बहुत कमाल की अपडेट बताई है, बहुत अच्छी जानकारी दी है। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है रीना जी, सोशल मीडिया पर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, कि हमें ना जैसे शॉपिंग को लेकर हो गया, या फिर कोई ऐसी चीज है कि आपको घर बैठे जॉब मिल जाएगी, तो इस तरह से कि आपको ये आपको फॉर्म फिल करना है और आपको आसानी से आपको जो आप कोर्स करना चाहते हैं, चाहे मैनेजमेंट का हो, चाहे वो ब्यूटी का हो, एंड बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो फेक भी होते हैं, उनकी फेक वेबसाइट होती है। अगर आप कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी लें, उस वेबसाइट के बारे में पूरा जाने, उसके बाद ही आप किसी भी लिंक पर क्लिक करें। और दोस्तों, अफवाहों से भी बच के रहिए, कई बार लोग अफवाहें फैला देते हैं, लेकिन सही सरकारी प्रक्रिया में डरने की जरूरत नहीं होती है, बस जागरूक रहने की जरूरत होती है। सही जानकारी दें और अफवाहों से दूर रहें।
1: क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात कही तुमने। और जनगणना और गांव की बातें करेंगे हम। जनगणना सिर्फ शहर के लिए नहीं होती, गांव के लिए भी उतनी ही जरूरी होती है। इसी से पता चलता है कि कहां सड़क चाहिए, कहां स्कूल और कहां अस्पताल की जरूरत है। आपकी जानकारी गांव के विकास में मदद कर सकती है। इसीलिए जब भी आपसे कोई पूछने आए, जनगणना करने आए,

0: क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने। और गाने के बाद फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महिला मंच शो में, जहां हम बात कर रहे हैं जनगणना के बारे में। जागरूक नागरिक बनिए, देश की प्रगति सिर्फ सरकार नहीं बल्कि जागरूक नागरिक भी तय करते हैं। सही जानकारी देना और दूसरों को जागरूक करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए मिलकर जिम्मेदार नागरिक बने। देखिए, अगर आपको पता चल जाए किसी चीज के बारे में कि हमें इसके ऊपर सही बोलना चाहिए, सही जागरूकता देनी चाहिए, तो आप अपने आसपास के जो व्यक्ति हैं, जो बोलने से झिझकते हैं, आप उनको भी समझा सकती हैं साथ ही साथ।
1: और मैं अभी बताना चाहूंगी, परिवार की सुरक्षा जरूरी है। अपने परिवार को ऑनलाइन फ्रॉड और धोखाधड़ी के बारे में जरूर बताइए। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से जागरूक बनाइए। सुरक्षित परिवार ही खुशहाल परिवार होता है। देखिए, कई बार ऐसा होते ना श्रोताओं, मैं आपको बताती हूँ कि हमारी फैमिली में बड़े बुजुर्ग होते हैं और आजकल तो फोन हर किसी के हाथ में होता है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों या फिर हम जैसे यूथ हों। तो हम तो क्या होता है, कई बार जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो इतना एजुकेटेड नहीं होते हैं, और कई बार होते भी हैं तो उनको फोन के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है। कभी कभी वो क्या करते हैं, जैसे ऑनलाइन कॉल्स आ जाते हैं, बहुत सारे कॉल्स आ जाते हैं, फ्रॉड कॉल्स आ जाते हैं, जिस पर वो कॉल पर जानकारियां मांग लेते हैं जो आपकी पर्सनली होती है। तो आप अपने बड़े बुजुर्गों को समझाइए, छोटी बच्चों को भी बताइए कि

0: ऑनलाइन कोई भी अगर फोन पर कोई लिंक आ रहा है तो उस पर तुरंत क्लिक ना करें, पहले घर में जानकारी लें, उसके बाद ही उसको टच करें, क्योंकि कई बार ये छोटी सी गलती ना बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है।
1: जब कोई सरकारी अधिकारी आए तो सहज से सहयोग करें, जरूरी सवालों के सही जवाब दे और किसी भी बात को समझने में परेशानी हो तो पूछने में संकोच ना करे। जागरूकता और सहयोग दोनों जरूरी है। क्या होता है श्रोताओं, कभी कभी कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आती है और वहाँ पर हम झिझकते हैं कि यार मैं इसे दोबारा पूछूं या ना पूछूं, कभी ये कुछ बोले ना। देखिए, आपको कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, आप जितनी बार हो सके उतनी बार आप पूछ सकते हैं, क्योंकि जब आपको सही सवाल पता होगा तभी आप सही जानकारी दे पाएंगे।
0: अब दोस्तों हमारे जाने का भी वक्त हो गया है और जाते जाते बस अंतिम संदेश आपको हम देना चाहेंगे। साथियों, जनगणना देश के विकास का आधार है, सही जानकारी दीजिए, लेकिन OTP, ATM, पिन, बैंक पासवर्ड और निजी दस्तावेज किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर मत कीजिए। जागरूक बनिए, सुरक्षित रहिए और देश के विकास में अपना योगदान दीजिए। मैं RJ खुशी अब लेती हूँ आपसे जाने की अनुमति। सुनते रहिए, ऐसे ही बहुत सारी जानकारी वाले कार्यक्रम लेकर आते हैं हम आपके लिए एवरीडे महिला मंच में। तो अब हमें जाने की अनुमति दीजिए, मिलेंगे आपको कल नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, ये है आपके अपने शहर का फर्स्ट सामुदायिक रेडियो स्टेशन, जहां पर आप सुनते हैं एवरीडे हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जी हाँ, और यहाँ पर होती है ढेर सारा फन, ढेर सारी एक्टिविटीज, ढेर सारा आपकी फेवरेट गानों का एंटरटेनमेंट रोज हम यहाँ पर आपको देते हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप ही इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं अभी, राइट नाउ ओपन किया है आपने, रेडियो ऑन किया है, तो आप फटाफट से मुझे कॉल लगा सकते हैं। एवरीवन, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और अभी यहाँ पर समय हुआ है 3:14। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपकी मुस्कान के साथ फुल चार्ज होगी आपके फ़ोन की बैटरी भी, क्योंकि मैं आपके साथ रहने वाली हूँ 5 बजे तक, और आपके फेवरेट गाने भी यहाँ पर हम प्ले करेंगे। तो जल्दी से फटाफट से आप मुझे कॉल लगाओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, और तब तक मैं सुनवाती हूँ आपको एक अमेजिंग ट्रैक। जो आपकी दोपहर को बनाएगा और भी ज्यादा खूबसूरत। बस आप कहीं मचाइए, यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और देखिए दोस्तों, जब हमें आपकी याद आती है ना, तो हम चले आते हैं ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर आपके साथ। ढेर सारी हमारी यादें भी जुड़ी होती हैं, क्योंकि जब आप सब हमारे साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो ये शो और भी ज्यादा खूबसूरत बन जाता है। और दिन है आज फ्राइडे का, वक्त हुआ है 3:15, 19 जून की तारीख है। खुशी आपके साथ है और ये अमेजिंग ट्रैक आप एंजॉय कीजिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ अभी।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, याद तो हमें भी आपकी आती है। जब आपकी यादें आती है ना, तो खुशी जो है ना, वो आपकी और खींची चली आती है। और जैसे ही घड़ी में 3 बजते हैं, मुझे पता है कि आपके दिल की जो हार्ट बीट है ना, वो जोरों से चलने लगती है ना। एंड आप दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस शो में ना आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो अपने दिल की आवाज़ है ना। हाँ, इस समय आपका दिल कौन से गाने का, मतलब सुनने का मन कर रहा है? आपके दिल का कौन सा गाना है जो आपके दिल को बहुत सुकून देता है, जो आपके दिल के बहुत करीब है? अगर कोई ट्रैक ऐसा है तो आप मुझे फटाफट से कॉल कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और दोस्तों, अभी हम बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हमारे साथ कौन कहां से कनेक्ट हुए, क्या उनका नाम है, बातचीत होगी उनसे। अभी लाइव उनसे ऑन ईयर बात करते हैं। अगर आप भी एक्साइटमेंट है इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, एक्साइटमेंट है अगर आप भी हैं, तो फटाफट से कॉल लगाओ बिना किसी देरी के। हमें कोई बहाना नहीं चाहिए, ठीक है? बस आपको सीधा फोन लगाना है। और बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से जो कनेक्ट हुई है हमारे साथ। हेलो फरमाइश जी। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपको, बताइएगा जरा।
1: रामपुर से शबनम भी बात कर रही हूँ
0: जी। बताइएगा शबनम जी, कैसे हाल चाल है आपके?
1: मैम बहुत अच्छे, आप बताइए आप कैसे हो। मुरादाबाद में सभी लोग?
0: हाँ जी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और एफ एम मुरादाबाद में भी सभी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर आप बताइएगा शुभनम जी, आपके यहाँ का वेदर कैसा है, मतलब कैसा मौसम है अभी राइट नाउ? वहाँ पर बादल हैं या फिर गर्मी है इधर की तरह, जैसे हमारे अभी मुरादाबाद में बहुत तेज धूप है
1: जी। मैम बिल्कुल, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम तो। धूप भी इतनी तेज हो रही है, कड़कड़ाहट कमरे में बैठी हूँ।
0: अच्छा,
1: नहीं कर रहे आप, बाहर निकल लगे?
0: ओके, आप रूम में आराम कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, रेस्ट भी करना चाहिए। और बताएगा शुभनम जी, आपकी फैमिली में सब ठीक है?
1: सब ठीक है मैम, आप बताएं?
0: जी बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ पर भी ऑल गुड। आप बताइएगा, आज आपने बहुत दिनों की बात कॉल किया है, क्या फरमाइश है आपकी?
1: जी दीदी, फिल्म का नाम है राजा और गाने के बोल है फूल मांगू ना बहार मांगू।
0: अच्छा, मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। हाँ ओके, चलिए ट्रैक आपको सुनवाते हैं। कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ जी बताइएगा।
1: मैम बस 2-3 नाम लेना चाहूंगी।
0: श्योर श्योर, बताइए। ठीक है मैम, सबके साथ सुनवाते हैं गीत आपको। शुक्रिया कॉल करने के लिए, बाय। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक शबनम जी की रिक्वेस्ट पर, फ्रॉम द मूवी राजा। और आवाज है उदित नारायण जी, साथ में अलका याग्निक जी की बहुत ही मधुर आवाज में ये अमेजिंग ट्रैक आप सब एंजॉय कीजिएगा। बस मैं आती हूँ इस ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत करती है आरजे खुशी आप ही के अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और आपका अपना फेवरेट शो भी चल रहा है हेलो फरमाइश, जहां पर आप मुझे कॉल करते हैं एंड अपने पसंद के गाने यहां पर सुनने का आपको मौका मिलता है। तो ये चांस आपको खुशी देती है एंड मैं कहती हूँ कि अभी आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है, तो प्लीज इसे मिस ना करें। फटाफट से आप हमें कॉल लगा सकते हैं। मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837869689। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुई है। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका? निशा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मुरादाबाद
0: से बात कर रहे हैं। ओके, बताइए निशा जी, क्या करती हैं आप?
1: पढ़ाई कर रहे हैं।
0: क्या स्टडी कर रही हो निशा? ओके, और बताइएगा फैमिली में सब कैसे हैं आपके यहाँ पर? हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली राइट। ये बताइएगा आप अभी मुझे, स्टडी के अलावा क्या शौक हैं आपके जो आपको करना बहुत पसंद है? हाँ, स्टडी तो ज़रूरी है, पढ़ना पसंद भी है और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि लाइफ में अगर हम क्वालिफिकेशन तो हमने ले लिया, लेकिन नॉलेज देना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो उसके अलावा क्या अच्छा लगता है? पढ़ाई तो है, मोस्ट है, लेकिन उसके अलावा क्या अच्छा लगता है? और नेक्स्ट
1: सब अच्छा,
0: सबसे अच्छा लगता है हंसना बोलना। ओके, कुकिंग करना पसंद है आपको? कुछ खाना स्पेशल बनाना खाने में?
1: खाना,
0: अच्छा, तो आपको सबसे अच्छा क्या बनाना आता है कुकिंग में? अच्छा, बिरयानी आप सबसे अच्छी बनाती हैं। ओके ओके, अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपके गेस्ट आए हो और फैमिली मेंबर्स कभी बाहर जाना हुआ, बाहर गए हैं किसी काम की वजह से और आप अकेले घर पे रहे और आपने फिर बनाकर खिलाया, तो उन्होंने कहा अरे वाह, आपने तो बहुत टेस्टी खाना बनाया है? कभी ऐसी तारीफ सुनने को मिली है? तो कैसा लगता है, इतने दिल से, इतनी शिद्दत से आप खाना बनाती हैं और जब सबको गर्मा गर्म परोसती हैं तो वो प्यार, वो खुशबू उसमें झलकती है, राइट? देखिए, अपनी जो इन्होंने तारीफ है ना, उसमें भी मतलब बताने में भी शर्मा रही है लड़की। हाय, अच्छा बताइएगा निशा आप। एग्जैक्टली राइट, बताइएगा आप कौन सा गाना सुनोगे आज?
1: कहीं ना कहीं तो है वो लड़की दीवानी।
0: ओके, और ये ट्रैक इनके लिए सुनना चाहते हैं आप? ओके, चलिए सुनवाते हैं प्यारा से गाना। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक मैम की पसंद का। और आप भी मुझे कॉल लगा सकते हैं, नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837869689। रेडियो बजाते रहिए और ऐसे ही प्यारे से स्माइल आप बना अपने चेहरे पर ना यूँ बरकरार रखिए और गाने गुनगुनाते रहिए, क्योंकि गाने हैं आप सबकी पसंद के। और अगर आप भी कोई ट्रैक सुनना चाह रहे हैं, आपको बहुत मन है, तो आप बस कॉल लगाओ, मैं रिसीव करने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ ना। आप टेंशन ना लो, बस फ़ोन लगा दो, ठीक है? बाकी जिम्मेदारी सब मुझ पर छोड़ दो आप।

0: एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और शो चल रहा है आप सभी का पसंद का। जी हाँ, आप सभी का पसंदीदा शो हेलो फरमाइश। और यहाँ पर समय हुआ है दोस्तों 3:40। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: जी बहार उल्लाह सिंह सिद्दीकी बोल रहे हैं, जिला अमरोहा नई बस्ती फतेहखाल से।
0: जी बताएगा सर, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं मैम, आज टाइम मिला तो फोन लगा लिया आपको।
0: जी बहुत अच्छा किया आपने कॉल किया सर। बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी?
1: फिल्म का नाम है हकीकत, ये अजय की फिल्म है।
0: जी
1: उसमें एक गाना था, मेले लगे हुए हैं हसीनों के शहर में, ये गाने के बोलते।
0: अच्छा, और किन के लिए सुनना चाहते हैं आप ये ट्रैक?
1: जैसे मोहम्मद आलम सिद्दीकी है, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी है, बेटी अलीसा सिद्दीकी है, सिफान सिद्दीकी, नाविया सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, यासिन अंसारी, सुदेश जॉन, अतीक तौफीक, दानी सिद्दीकी, महेश प्रकेम से, इकराम प्रेमी साहब रामपुर से, नवाबुद्दीन भाई रामपुर से, दुल्लापुर मुर्दाबाद से, मुकेश कश्यप जी है, राशिद अंसारी है, पागवाड़े से मुजाहिर अंसारी।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा सा गीत आपको। शुक्रिया कॉल करने के लिए,
1: धन्यवाद।
0: मोस्ट वेलकम, आपको भी नमस्कार। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं खूबसूरत सा गीत, और आप भी मुझे कॉल लगाइएगा। मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896, और एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी वादा।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: एवरीवन नमस्कार, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और शो चल रहा है आप सभी का फेवरेट हेलो फरमाइश। यहाँ पर वक्त हुआ है दोस्तों अभी 3:48 एंड अभी कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए उनसे डायरेक्टली बात करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार। क्या नाम है आपका सर? रिजवान खान जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छे, आप बताओ आप कैसे हो?
0: हाँ जी, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं ग्राम बीजना।
0: अच्छा, ग्राम बीजना से बात कर रहे हैं जी। बताइएगा सर, कैसे हाल चाल है आपकी?
1: मैं बहुत अच्छे हैं, बस गर्मी ज्यादा हो रही है।
0: हाँ जी, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, अपना ख्याल रखिएगा। और बताइए क्या फरमाइश है आज आपकी?
1: मैम सॉन्ग है मेरे साथ चलते चलते, ये कहाँ ठहर गए तो?
0: अच्छा ठीक है सर, ये गीत आपको सुनवाते हैं। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। तो चलिए विवन, सुनते हैं ये ब्यूटीफुल ट्रैक, लौट कर आते हैं हम। बस आप कॉल लगाइएगा, हम इंतजार कर रहे हैं आपके फोन कॉल का।

0: हाई एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, अभी आपने ये अमेजिंग ट्रैक सुना एंड कुछ गाने ना बहुत ज़्यादा दिल को टच कर जाते हैं, हार्ट टचिंग सॉन्ग होते हैं, जो बस अकेले बैठे हों, पास में कोई ना हो, हम हों और प्यारी सी यादें हों। लेकिन मेरे साथ तो इस समय बहुत सारे श्रोता कनेक्ट हैं जो इस शो को लाइव अभी ऑन ईयर सुन रहे हैं। हमारे साथ एक और बड़ी प्यारी सी लिसनर भी कनेक्ट हुए हैं। कौन है वो, उनसे बात करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका सर? जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, हम भी बहुत ही अच्छे हैं। बताइएगा, आप क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: गाने का बोल है, तुम ना मिले तो क्या मिले।
0: जी, ये वाला प्यारा सा ट्रैक आपको सुनवाते हैं। थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए। जी तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये गाना। लेकिन उससे पहले कुछ एड ब्रेक के टाइम भी हो गए हैं, तो एड ब्रेक के बाद हम लौट कर आते हैं। आप यूं ही मुस्कुराते रहिए और हाँ, हमें फ़ोन लगाते रहिए। फ़ोन लगाना बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। आप नंबर है 9837896896।
2: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
3: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
5: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
6: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो हाई एवरीवन, गुड इवनिंग। लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6, खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, अभी राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 4:15। शो चल रहा है आप सभी का फेवरेट हेलो फरमाइश, जहां पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं एंड अपनी पसंद का कोई भी ट्रैक प्ले करवा सकते हैं। तो ये अच्छा ऑप्शन है आपके पास, फटाफट से मुझे कॉल कीजिएगा, इस गोल्डन चांस को बिल्कुल भी मिस ना करें आप। हमारी यही रिक्वेस्ट आपसे है, नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: जिला मुरादाबाद, ग्राम महेश्वर खान से अतीक अहमद सिद्दीकी आपसे बात कर रहा हूँ मैडम
0: जी। बताइएगा अतीक जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैडम, आप कैसी हैं?
0: हाँ जी, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। क्या करते हैं आप, जरा अपने बारे में बताइएगा हमें।
1: जी हम जो है खेती किसानी का काम करते हैं।
0: अच्छा, खेती का काम करते हैं। तो इस वक्त खेतों में क्या लगा हुआ है सर?
1: इस समय तो गन्ना है और अब धान की रुपाई होगी मैडम।
0: अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी तो फिलहाल तैयारी चल रही होगी ना?
1: जी जी, तैयारी चल रही है
0: जी। आप बताइएगा सर, आज कौन सा ट्रैक आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है पति पत्नी तबायद।
0: हाँ जी।
1: और गाने के बोल है, तेरी मोहब्बत मेरी जवानी बन के रहेगी कोई कहानी, तरह से गाने के बोल है।
0: जी सर, ठीक है, सुनवाते हैं प्यारा सा गीत आपको। शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: सुनने वाले हैं
0: जी, बताएगा
1: बड़े भाई साहब तौफीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानी सिद्दीकी, अजीत ससाना, राजवीर सिंह यादव, हिनू खान, बस यही लोग सुनना चाहते हैं।
0: ठीक है सर, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। शुक्रिया आपने कॉल किया। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं सर की पसंद का शानदार सा ट्रैक। मैं लौट कर आती हूँ, बस आप मुझे फोन लगाना बिल्कुल भी ना मिस कीजिएगा। नंबर मैं आपको अगेन बताती हूँ 98-378-96-96। बस मिलती हूँ मैं इस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के उस पार।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू माय ऑल लवली लिसनर्स। वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। वो बहुत ज़्यादा यू नो एक्साइटमेंट है बात करने के लिए, एक्साइटेड हैं, और उन्होंने हमें बहुत देर से वो हेलो हेलो कर रहे हैं, तो आइए उनसे ऑन एयर बात ही कर लेते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्ते।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर। अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: हमारा शुभ नाम है हरिओम शर्मा।
0: हरिओम शर्मा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: हम मैन बुद्धा पार्क से बात कर रहे हैं।
0: अच्छा, ओके, क्या करते हैं सर?
1: हाँ, हमें गाना सुनना था मैम।
0: हाँ जी, ट्रैक तो हम सुनवाएंगे, लेकिन आप करते क्या हैं प्रोफेशनल लाइफ में?
1: हम ट्रैक जॉब करते हैं मैम।
0: ओके, तो बताइएगा कौन सा ट्रैक आज आप सुनना चाहते हैं?
1: हमारा एक गाना है अरे पुत्र का मैम, आंखों से दिल में उतर के।
0: ओके ठीक है सर, ये ट्रैक आपको सुनवाते हैं। धन्यवाद आपने कॉल किया। मोस्ट वेलकम सर, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको खुशियाँ देना खुशी का काम है।
1: खुशी ही नाम है शायद आपका।
0: हाँ जी, शायद नहीं, खुशी ही नाम है मेरा सर। हाँ जी, ओके,
1: अच्छा, जिले के फोन आते हैं, से आते हैं, खाली हमारे से आते हैं।
0: हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा किया, प्रयास किया और आपका कॉल भी लग गया है। अभी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक। आपने कॉल किया, धन्यवाद सर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा। मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ, 9837896898।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। Thank you.

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और शो चल रहा है आप सभी का फेवरेट हेलो फरमाइश। मैं आपके साथ आपकी खुशी हाजिर हूँ। दोस्तों, अभी समय हुआ है 4:36 और यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे आप सभी के कॉल्स भी आ रहे हैं, आपके फेवरेट गाने भी हम प्ले कर रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। आप सबकी चॉइस बहुत ही अमेजिंग होती है दोस्तों। तो चलिए अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से और जानते हैं उनके क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम
0: है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप सर?
1: मैं कर रहा हूँ
0: जी मुरादाबाद से।
1: जी जी जी।
0: ओके, बताइएगा सर क्या फरमाइश है आपकी।
1: फरमाइश तो मेरी ये है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना।
0: वाओ, किशोर कुमार जी की आवाज में।
1: हाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगा।
0: हाँ जी, टेल मी, बताइए।
1: मैम देखिए, जैसे कि मुरादाबाद में नए रेडियो स्टेशन भी खुल रहे हैं FM।
0: हाँ जी।
1: तो आपको भी अपना स्टाइल थोड़ा बिल्ड करना चाहिए। आप बहुत बोरिंग स्टाइल में कर रहे हो।
0: ओके, थोड़ा न्यू हमें चेंज करना है। ओके श्योर, करते हैं हम ट्राई। ओके, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक, लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाओ, मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। बनाएंगे आपके सफर को और भी ज्यादा हैपनिंग एंड ब्यूटीफुल। अभी देखिए, वक्त तो मैंने आपको बता ही दिया है, अगेन फिर से बताती हूँ, समय हुआ है 4:37 और आप भी अगर इस समय ऑन द वे कार में है या फिर घर में है या फिर किचन में है तो आप मुझे फटाफट से कॉल लगा सकते हैं। नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गन गुनाते रहिए और सुनते हैं किशोर दा की आवाज में अमेजिंग सा गाना।

0: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
7: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
8: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
7: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू माय ऑल लिसनर्स। वेलकम है आपका हेलो फरमाइश शो में। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, ये है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन, जहाँ पर आप अमेजिंग ट्रैक के साथ साथ बहुत सारी आपको जानकारियां भी मिलती हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस समय फ्री बैठे हैं राइट नाउ, सोच रहे हैं कि काश मेरी भी पसंद का कोई गाना प्ले हो जाए, तो आप बिना किसी देरी के हमें कॉल लगा सकते हैं। एवरीवन, मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ, 9833789689। और हाँ, अगर आप अभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, तो मैं बोलना चाहूंगी कि इंस्टाग्राम को साइट में करके हमें कॉल लगाओ, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब इंस्टाग्राम ओपन करते हैं ना, तो उसमें कब हमारा एक से डेढ़ घंटा गायब हो जाता है वो किसी को भी नहीं पता चलता है ना। वो ऐसा अट्रैक्शन है अपनी तरफ ना, ऐसे अट्रैक्ट करता है कि हमारा जो समय है वो उसी में गायब हो जाता है। लेकिन रेडियो हमारा एक ऐसा साथी है, जब हम इसको ऑन करते हैं तो अपने काम भी बाकी हम कर सकते हैं मैनेज, और कोई इशू भी नहीं होता, एंड हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो, हाय
1: हाय मैडम।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: मैडम मेरा नाम चेतन राजपूत है।
0: चेतन राजपूत जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी मैडम, मैं मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ।
0: मुरादाबाद में कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
1: मुरादाबाद के पास एक गाँव है मैडम।
0: ओके, हाँ जी, ओके, क्या करते हैं सर, जरा अपने बारे में बताइएगा आप।
1: मैडम मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। और मैं वहीं से बात कर रहा हूँ।
0: ओके, तो अभी लंच ब्रेक हुआ है क्या आपका?
1: नहीं मैडम, मैं बाहर आया हुआ था, तो थोड़ा सा फ्री था, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था।

0: अरे वाह,
1: मैंने 56 बार लगाया तब जाके मिलाया था।
0: ओह माय गॉड, रियली। अच्छा तो बताइएगा आप क्या सुनना चाहते हैं सर?
1: मैडम कोई भी एक अच्छा गाना सुनवा दीजिए।
0: अच्छा आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, आप अक्सर गुनगुनाया करते हैं?
1: मैडम कोई भी देशभक्ति की।
0: अच्छा ठीक है सर, सुनवाते हैं फिर आपको। कुछ कहना चाहते हैं आप? ओके, रैंडमली ऐसा हो जाता है, जो चीजें हम बोलने वाली होती है वो भी भूल जाते हैं, है ना? कोई बात नहीं सिस्टर, ओके नेक्स्ट टाइम जरूर कॉल कीजिएगा और सुनवाते हैं एक प्यारा सा देशभक्ति गीत। जी मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं एक प्यारा सा देशभक्ति गीत और लौट कर आते हैं हम। बस आप यूं ही मुस्कुराते रहिए एंड गाने गुनगुनाते रहिए। मैं लौट कर आती हूँ इस ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।
2: हेलो राम।

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत से गाना सुना फ्रॉम द मूवी वीर ज़ारा से। और दोस्तों, समय हुआ है 4:56। और कितने खुशनसीब हैं हम कि इस मिट्टी में हमने जन्म लिया, जहां तिरंगे की शान हमारी पहचान है और हमारे वीर जवान हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। जब हम अपने परिवार के साथ सुकून से रहते हैं, तो कहीं ना कहीं सीमा पर कोई जवान अपनी नींद, अपना आराम और कभी कभी अपनी जिंदगी तक देश के नाम कर देते हैं। दिल से सलाम है उन सभी वीर जवानों को, अपने सभी वीर सैनिकों को दिल से हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार। क्या नाम है आपका सर?
1: हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: अच्छे हैं दीदी, और काफी दिनों के बाद आपके कार्यक्रम में जुड़ा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है दीदी।
0: जी धन्यवाद। अपना नाम बताइएगा आप।
1: भगवान सिंह परमार, मध्य प्रदेश से।
0: एमपी से बात कर रहे हैं, बताइएगा एमपी का मौसम कैसा है अभी सर?
1: मौसम तो दीदी अभी धूप निकली हुई है, थोड़े बहुत बादल हो रहे हैं, पानी का कोई आसार अभी दिख नहीं रहा। 8 दिन बाद बरसात चालू होगी दीदी, मानसून अभी आए नहीं है, फ्री मानसून की बरसात कहीं कहीं होती है।
0: जी जी जी, तो बताइएगा आज कौन सा गाना सुनने का मन है आपका?
1: दीदी फिल्म का नाम है राजा भैया और गाने के बोल है कहता है मेरा जिया।
0: ओके, चलिए खूबसूरत सा आपको ट्रैक सुनवाते हैं। धन्यवाद आपने कॉल किया सर।
1: धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत आपका भी कॉल शामिल करने के लिए।
0: जी तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं सर की पसंद का ही प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी राजा भैया, जो 2003 में आई थी सुनिधि चौहान जी साथ में उदित नारायण जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में ये खूबसूरत सा गाना। और दोस्तों, अब मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मिलूंगी आपको संडे को। तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान यूं ही एफएम मुरादाबाद 89.6 बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपनी शाम को बेहतरीन बनाते रहिए।

0: तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया यात्रा के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि युवाओं को असंख्य अवसर प्रदान करना विकसित भारत की मूल परिकल्पना है। युवा कार्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा लिखित एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवंशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में ना लें, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना है। मुझे लगता है इस चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अधिक प्रभावी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए का था। पिछले वित्त वर्ष में ये बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। श्री सिंह आज नागपुर के अंबाझरी स्थित यंत्र इंडिया लिमिटेड के आयुध निर्माणी परिसर में 10,000 टन क्षमता वाले आधुनिक एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज विधानसभा में राज्य का संशोधित बजट 2026-27 पेश किया। अपने बजट भाषण में उन्होंने समावेशी विकास तथा सतत अवसंरचना के नए केरल का संकल्प लिया। श्री सतीशन ने संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार के पहले बजट में स्वास्थ्य सेवा और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। अस्मिता चालिहा मकाओ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने आज क्वार्टर फाइनल में कोरिया की किम मिन सिन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news.
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।
6: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
5: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विशेष कार्यक्रम एक खास मुलाकात में। एक और खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। आपने ट्यूनिंग किया है आपके शहर का पहला अमेजिंग रेडियो स्टेशन जो गाने नहीं बजाता है, आपके लिए काम की बातें भी लेकर आता है। और आज जो ये पूरे फिर से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। सो डोंट फॉरगेट, पूरा सुनिएगा, बिकॉज आज जो हमारे स्टूडियो में मौजूद है बड़े कमाल के शख्स मौजूद है। तो सर का जो है, आइए जरा आपसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ श्री प्रदीप कुमार सिंह, जिला आपदा विशेषज्ञ मुरादाबाद से मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं
0: जी। सर आप अच्छे हैं, आप बहुत फैंटास्टिक हैं। आपको कैसा लग रहा है स्टूडियो में आके, पहले ये बताइए।
1: बहुत अच्छा लग रहा है और हमें सबसे बड़ी खुशी है
0: जी
1: कि हमारी बातें आम जन तक बहुत ही आसानी से
0: रेडियो के माध्यम से
1: पहुंचा सकते हैं, जो कि शायद आज के परिवेश में बहुत ही जरूरी है।
0: क्या बात है सर। मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे होगा वो हीट वेव के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो हीट वेव आपदा बेसिकली क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वाले जो लिसनर्स हैं उनको बताइए।
1: देखिए ऐसा है कि हीट वेव आपदा जो है
0: जी,
1: ये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदा की श्रेणी में आता है। हमारे पास बेसिकली कुछ आपदाएं ऐसी हैं जो प्राकृतिक कारणों से घटित होती हैं, केंद्र सरकार के तहत होती हैं, उनको हम प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित होती हैं। और जो स्थानीय परिस्थितियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदा होती है, उसमें जो राहत है वो राज्य सरकार के एसटीआरएफ फंड से रिलीज किया जाता है। तो ये हीट वेव भी जो है स्थानीय आपदा के तहत आता है और इसमें जिला प्रशासन समन्वित रूप से कार्रवाई करता है और उसके हिसाब से हम कार्ययोजना बना के उस पर काम करते हैं।
0: वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा आपने बताया। सर मैं अगर बात करूं, इसी में एक और मेरा सवाल रहेगा आपसे कि आपदा के समय जिला प्रशासन कैसे काम करता है, जरा ये बताइए।
1: इसके लिए ये है कि एक डीएम एक्ट 2005 है, उसके तहत डीडीएमए का गठन किया गया है जिला में, जिसके अध्यक्ष माननीय जिलाधिकारी महोदय होते हैं और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व होते हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी हैं वो सदस्य होते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी सदस्य होते हैं, मुख्य विकास अधिकारी जी सदस्य होते हैं, इसके साथ एक वरिष्ठ एक्शन जो होंगे वो सदस्य होते हैं। और इस तरह से जब कोई भी आपदा आती है तो उस पे पूरे जिला प्रशासन को इंटीग्रेटेड रूप से काम करना होता है।
0: अच्छा ओके सर। सर जैसे हीट वेव एक बहुत ही गंभीर विषय है, जैसे अभी आपने बताया भी, ऐसे में बहुत सारे अग्निकांड भी हम सुनते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो ये जो अग्निकांड होते हैं, जैसे कहीं पे आग लग जाना, एकदम से ये आपदा ही होती है सर। तो ऐसे में इसके बारे में थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताइए सर।
1: क्या आपदा के बेसिकली हम अगर बात करें एक समन्वित रूप से
0: जी,
1: तो हम लोग तीन स्टेप पे इस पे काम करते हैं। एक होता है कि आपदा के पहले, एक होता है आपदा के दौरान और एक होता है आपदा के बाद। ये तीन तरह की कार्रवाइयां होती। तो जब आपदा के पहले होता है उसको हम लोग प्रिपेयरनेस फेज बोलते हैं।
0: right.
1: और उसमें क्या होता है कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जैसे अभी आपने कहा हीट वेव का सीजन अभी अप्रैल शुरू हो रहा है,
0: 100%.
1: लेकिन जिलाधिकारी महोदय के आदेश से हम लोगों ने इसकी तैयारी फरवरी से ही शुरू कर दी। तो फरवरी में सर के निर्देश पे, सर की अध्यक्षता में जिला स्तर पे एक बैठक की गई, जिसमें सभी जिला स्तरीय और तहसील स्तरीय सारे अधिकारी वहां पे सर के निर्देशन में मीटिंग होती है, उनको कार्रवाई के लिए किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी वो जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित कर दिया जाता है कि कौन किस जिम्मेदारी को किस तरह से तैयारी करके निभाएगा। अब जैसे आपने अग्निकांड की बात की, तो ये बेसिकली जैसे जो हमारी फायर सर्विस होती है उनको सेंसिटाइज किया जाता है। वो उनका जो एक्शन है वो ये होता है कि अगर कहीं अग्निकांड की घटना हो रही है तो पहले तो जिला प्रशासन ये प्रयास करता है कि प्रचार प्रसार से हम लोगों को जागरूक करें कि अग्निकांड की घटनाएं हो ही ना, जिससे कि लॉस हो। तो एक तो हमारी पहले इसलिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जैसे आज भी हमें यहाँ पे, कि अग्निकांड से लोग कैसे बचें। तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे जागरूकता के विषय होते हैं कि भाई हम छोटी छोटी सावधानी, जैसे हम आपको बताएं कि जैसे मोस्टली आप सुनते होंगे कि जो अग्निकांड की घटनाएं होती है शॉर्ट सर्किट से होती है, शॉर्ट सर्किट से, जैसे कि कहीं ट्रांसफार्मर में दिक्कत है उसकी वजह से आग लग गई, कहीं हमारे वायर जो है घरेलू वायर ढीले हैं वहां से आग लग गई। तो और कुछ आजकल देखे जा रहे हैं सिलेंडर की लापरवाही, पुराने सिलेंडर हैं उनकी डेट नहीं देखी गई, वो ब्लास्ट हुआ उससे घटनाएं हो जा रही। तो इसके लिए एक ड्राइव होता है कि लोग जागरूक रहें और फायर सर्विस रेगुलर बेस पे जागरूकता अभियान इसके लिए चलाते रहते हैं कि लोग जागरूक रहें, अग्निकांड से बचाव हो। अगर अग्निकांड की घटना हो रही है तो तत्काल आप उनके जो टोल फ्री नंबर है उस पे आप सूचना दे सकते हैं। और उससे ये रहता है कि हम लोगों का ये निर्देश रहता है कि जितनी जल्दी हमारी फायर की गाड़ियां वहां घटना स्थल पे पहुंचेंगी उतनी जल्दी हम आग को काबू पा लेंगे। इसके साथ में हम लोग ये है कि हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं
0: हाँ जी,
1: उनको भी जैसे अग्निमित्र जो है उसको भी ये माना जाता है कि समुदाय हमारा प्रथम रिस्पॉन्डर होता है, तो अग्निमित्र हैं, आपदा मित्र हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं
0: जी।
1: तो ये जो नजदीकी जहां भी ऐसी घटना हो रही तो उन लोगों को भी ये सेंसिटाइज किया जाता है कि आप मौके पे पहुंच करके और आग को बुझाने का काम करें। तो ये एक पूरा सिस्टम मिलके काम करता है पब्लिक के साथ।
0: सर अभी आपने जैसे इस पूरी जानकारी में टोल फ्री नंबर का भी जिक्र किया जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं, तो वो नंबर अगर किसी को डायल करना है तो वो कौन से नंबर होते हैं?
1: जैसे हमारा आपदा का ये 1077 1077 है जो जिला आपदा कंट्रोल रूम है कलेक्टर ऑफिस में कलेक्ट्रेट में
0: जी,
1: वहाँ का नंबर है। कोई भी आदमी 24 आवर कभी भी अगर कॉल करेगा तो वहाँ पे कॉल तुरंत पिक होगी और संबंधित विभाग को उसको तुरंत ट्रांसफर कर दी जाएगी, जो भी समस्या होगी उसका समाधान कर दिया जाएगा।
0: बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुनकर और काफी अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। सर मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा, आपदाओं की हम बात कर रहे हैं, अभी हमने अग्निकांड का जिक्र किया, वहीं से अगर मैं बात करूँ किसानों के लिए तो किसानों की फसल जो है वो अपनी फसल को कैसे सेफ रखें, सुरक्षित रखें, क्योंकि कहने के उनके लिए भी बहुत लॉस वाली बात हो जाती है अगर हम अग्निकांड की बात कर रहे हैं तो। यहाँ
1: देखिए इस विषय में एक छोटा सा बहुत सारा जो देखा गया है, एक सबसे ज्यादा विषय ये आ रहा है कि अक्सर करके जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उस ज्यादातर देखा जाता है कि किसान जब फसल बो रहे होते हैं
0: जी।
1: तो ट्रांसफार्मर के आसपास भी वो फसल लगा

0: आप जो ट्रांसफार्मर है और उसकी पोजीशनिंग जो है उसका मेंटेनेंस सही रखें, तार ढीले ना रहें, उसके फ्यूज सही रखें, पब्लिक के लिए रहता है खेतों में हो या घर में हो। अक्सर करके हम देखते हैं कि अपने सांस औकत पे और अपनी जरूरतों पे हम ज्यादा व्यय कर लेते हैं, लेकिन जहां इस तरह की बात आती है तो वहां पे जैसे जो घर की वायरिंग है उसको सिस्टमेटिक वे में अच्छे तार डाले जाएं, उसको प्रॉपर चेक कराते रहें, ढीले तार ना रखे जाएं, कटिया बचाने लगाने से बचें, जगह जगह खुले तार हम लोग लगा लेते हैं और जैसे तैसे काम चलाते हैं, ये कभी कभी हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और अक्सर हम वही चीज अवॉइड कर देते हैं
0: जी।
1: सो दोस्तों, आपको ये चीजें बहुत ध्यान से सुननी है और बहुत काम की चीजें। सर अगर मैं बात करूं वही जो लोग पशुपालन करते हैं, तो ऐसे में पशुओं का बचाव कैसे कर सकते हैं वो लोग?
0: देखिये, पशुओं की बात अगर की जाए तो ये माना जाता है कि पशु जो है वो भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं जो किसान होते हैं उनके एसेट्स भी होते हैं और वो उससे जुड़े भी होते हैं। तो जैसे ही हमारा मानव जीवन इस हीट वेव की गर्मी से भयंकर लू से प्रभावित होता है, वैसे पशु भी इससे अछूते नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें बदलते परिवेश में ये ध्यान रखना होगा कि पशुओं को जहां तहां छुट्टा ऐसे ना छोड़ें, बल्कि वो आज के समय में आपकी एसेट्स हैं, आप उनको वैसे ही ध्यान रखें जैसे इंसानों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे मेरी पहली सलाह ये रहेगी कि उनको बंद जगह में जैसे टीन सेट वगैरह है या टाट के बोरे वगैरह से कवर कर लें एरिया को, पानी का छींटा मारे एक दो बार, उनको नहलाते रहें, और खास करके जो सुबह का 10 से 4 बजे का समय उस दौरान पशुओं को बिल्कुल भी बाहर न रखें। और अगर आपको लगता है कि पशु ने खाना छोड़ दिया है, चारा राल वगैरह गिर रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा छूने से पता लग सकता है, तो आप नजदीकी जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, पशु चिकित्सा केंद्र नजदीकी हैं, वहां पे आप संपर्क करके उनको वहां पे स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया। अच्छा सर, जैसे आम पब्लिक आपको सुन रही है, आम जनता, अगर वो कोई आपकी टीम से कनेक्ट होना चाहे या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है या कोई अगर इस तरह की आपदाएं उनके आसपास उन्हें देखने को मिलती हैं, तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? अभी आपने एक तो नंबर भी बताया, मुझे याद है अभी हेल्पलाइन नंबर आपने बताया, इसके अलावा वो और कहाँ संपर्क कर सकते हैं?
0: देखिए, आपदा के लिए अगर हम बात करें तो हमारे जो तहसील में नोडल होते हैं
1: जी जी,
0: ये संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी महोदय जो होते हैं वो वहाँ संबंधित तहसील के नोडल होते हैं आपदा के मामले में, चाहे हीट वेव हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे फसल जो भी हो, तो उसके वो नोडल होते हैं, साथ में तहसीलदार महोदय भी होते हैं। तो ये लोग कोई भी ऐसी घटना घटित होती है तो आप वहाँ पे सहायता प्राप्त कर सकते हैं, उनको प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और उसके हिसाब से वहाँ पे तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, हम छोटे बच्चों की बात कर लेते हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए कौन कौन सी सावधानियां हैं जो पेरेंट्स को रखनी चाहिए ध्यान में?
0: देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं यही कहूंगा कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया होगा कि खाने पीने के मामले में ध्यान रखना होगा हमें। हम अक्सर करके जो हमारा फास्ट फूड का ये सिस्टम आजकल जो चल रहा है संस्कृति, इससे तो हमें निजात पाना चाहिए। साथ में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो भी खाना दीजिए वो ताजा दीजिए और लिक्विड डाइट की मात्रा बढ़ा दी जाए बच्चों में। साथ में हम ये देखते हैं कि अक्सर करके देख लेते हैं कि वो जैसे ज्यादा जो नुकसानदायक चीजें हैं उसमें बच्चों का भी इंटरेस्ट रहता है, तो इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करें। और ये देखते रहें कि अगर टेम्परेचर उनका ज्यादा है, बच्चों का बुखार ज्यादा है, तो आप जिस तरह से उनको स्कूल भेजते हैं, साथ में आप हेल्थ केयर सेंटर भी तत्काल दिखा लें, डॉक्टर की सलाह ले लें, डॉक्टर की सलाह से जो है इलाज करें। हाँ, ये है कि अगर वोमिटिंग जैसी शिकायत है और अगर उसको लूज मोशन हो रहा है तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है, उसको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर दिखाएं। और साथ में ये है कि अगर आप उसको जब हॉस्पिटल ले जा रहे हैं या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले रहा है, तो रूरल एरियाज में अक्सर देखा गया है कि आदमी उसको बहुत कैजुअल ले लेता है, नॉर्मल ले लेता है, और ये जो ये आपकी जो झार फूंक है या बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं लोगों में, कोई बोलता है कि दांत निकल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, और सारे बहुत सारे कारण होते हैं, लोग मान के उसको अवॉइड करते हैं। तो बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो चूंकि एक्टिव भी रहते हैं, तो ऐसे में एक समय तक बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब हेल्थ अंदर से इशू उनका होता है तो वो बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए तत्काल उनको कम से कम, अगर हम बात करें कि उनको वोमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, तो कम से कम चीनी, नमक और पानी जो कि हर जगह उपलब्ध है, साफ पानी गुनगुना कर लें, फिर ठंडा कर लें उसको, और उसमें थोड़ा चीनी नमक डाल के जरूर पिलाते रहें थोड़ा थोड़ा, और जहां नजदीकी हॉस्पिटल है वहां दिखा लें।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, जैसे आपदा के समय में जिला प्रशासन किस तरीके से काम करता है अगर मैं आपसे जानना चाहूँ।
0: देखिये, मैंने जागरूकता के स्तर पे तो आपको बता ही दिया, अब इसके साथ कार्रवाई के स्तर पे अगर हम बात करें, हीट वेव की जैसे ही स्थिति होती है उसके

0: पहले ही हम लोग क्या करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है पानी। तो पानी की आपूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा सभी तहसीलों में और खास करके नगर निगम एरिया में प्याऊ सेंटर होते हैं, जिनको आप जैसे परमानेंट कुछ लगाए गए हैं जिसको वाटर कूलर ठंडा पानी की आपूर्ति हो सके। अभी वर्तमान में अगर बात करें हमारे तो मुरादाबाद में 53 जो है वो परमानेंट वाटर कूलर लगे हुए हैं, उनका मेंटेनेंस भी हम लोग करा लेते हैं, कुछ कुछ खराब हो जाते हैं तो उसकी भी प्रक्रिया भी चल रही मेंटेनेंस कराने की। साथ में अस्थाई प्याऊ सेल्टर भी हम लोग लगाते हैं जिससे कि पानी की आपूर्ति और इसके साथ साथ नगर निगम के द्वारा जो है टैंकर्स जो पानी के होते हैं उससे भी सप्लाई की जाती है, जगह जगह पानी की आपूर्ति की जाती है और जलकल विभाग जल निगम ये भी आपूर्ति सुनिश्चित कराता रहता है। इसके लिए निर्देश है कि पानी की आपूर्ति कहीं भी बाधित ना हो। साथ में ये होता है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो अस्थाई सेल्टर की बात की जाती है, जैसे आपके मजदूर वर्ग हैं, ये ठेला वाले हैं, साथ में जो आपके ये ई रिक्शा वाले हैं, तो कहीं कहीं जगह में आप देखते होंगे कि अगर हरे पेड़ नहीं है, छावदार वृक्ष नहीं है, बहुत खुला बहुत बड़ा चौराहा ही टाइलैंड जिसको बोलते हैं खुली जगह है, जाम लग गया है, तो वहां पे क्या है कि आसपास कोई ऐसा हम अस्थाई सेल्टर भी बनाते हैं टेंट तंबू से, जहां कूलर वगैरह की व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था होती है, फर्स्ट एड किट होती है, डॉक्टर्स की टीम होती है, इसका भी योजना में शामिल किया जाता है एम्बुलेंस वगैरह की, अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो रहा है या किसी को वैसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कम से कम वहां पे वो आराम कर ले और उसको मेडिकेशन दिया जा सके। तो ये भी कार्रवाई हमारे स्तर से होती है और तहसीलों को भी निर्देश दिया जाता है। ग्रामीण इलाकों में खास करके आपने देखा होगा कि तालाब वगैरह बहुत सारे सूख जाते हैं गर्मी में, तो उसको रिचार्ज करने के लिए पानी वैकल्पिक साधनों से उसमें पानी भर दिया जाता है कि पशुओं को भी पानी पीने मतलब पानी की उपलब्धता रहे, तो ये भी कार्रवाइयां वहां पे पैरेलल चलती रहती है। हाँ, एक चीज और हमारा कहना है कि आपदा में आप सावधान रहें और जागरूक रहें। साथ में ये है कि अगर आपदा से नुकसान होता है, जैसे हम बात करें जनहानि की, तो जनहानि में सरकार राह देने का कि उसका जो परिवार है वो हम उस किसी के जीवन को वापस तो नहीं ला सकते अगर किसी की जनहानि हो गई, आपदा से किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन सरकार का प्रावधान है कि 4 लाख रुपए की हम आर्थिक सहायता उसको देते हैं। लेकिन अक्सर करके देखा गया है कि लोग एक नियम होता है पोस्टमार्टम कराने का, तभी हमको कॉज ऑफ डेथ पता लगता कि किस कारण से डेथ हुई है, वो एक सरकारी प्रक्रिया है, प्रावधान है। अब उसमें लोग थोड़ा सा भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं उस समय और अक्सर करके पोस्टमार्टम नहीं कराते, तो ऐसे में उनको राहत देने की कोशिश करते हुए हम चाहते हैं कि तुरंत राहत दे दें, लेकिन जब इस प्रक्रिया से वो लिख के देते थे कि नहीं नहीं मैं पोस्टमार्टम नहीं कराऊंगा, मुझे सहायता नहीं चाहिए, तो ऐसे में जिला प्रशासन बहुत कोशिश करता, काउंसलिंग करता, लेकिन फिर ऐसे में हम नहीं दे पाते तो हमें कष्ट होता है। साथ में ये भी प्रावधान है कि अगर कोई घायल हुआ है, कोई कहीं भर्ती हुआ है, तो उसका भी प्रावधान है, अगर 7 दिन से अधिक कोई किसी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है तो हम उसको 16,000 रुपए तक का राशि देते हैं उसके इलाज में जो व्यय होता है, और अगर 7 दिन से कम रहा है तो उसको 5400 रुपए की सहायता दी जाती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो भर्ती हो प्रॉपर प्रक्रिया में, तहसील में सूचना दे, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन चीजों की जागरूकता लोगों तक होनी चाहिए
1: बिल्कुल,
0: और उसके लिए प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
1: बहुत अच्छा लगा प्रदीप जी, आप आए, आपने तमाम जानकारियां दी हमारे सुनने वालों को, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जाते जाते मैं बस कुछ और सवाल है जो आपसे पूछना चाहूंगा, पहले तो यही जो महिलाएं किचन में खाना बनाती हैं उन्हें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, और जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं, जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अचानक से अग्निकांड में जो है कई सारी गाड़ियों को भी हम देखते हैं, अचानक से गाड़ियों में आग लग जाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हम देखते हैं, तो उसके में आपका क्या कहना है?
0: देखिए, इसमें दो चीजें मैं आपको बहुत ही ईमानदारी से बताना चाहूंगा कि सावधानी ही बचाव है
1: बिल्कुल,
0: और हम आपको इस विषय में थोड़ा सा बहुत ही स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हम मॉड्यूलर किचन बना लेते हैं, लेकिन अगर हम अपने किचन में भी जाके देखें कि क्या वहाँ फायर डिस्टिंग्विशर है, तो शायद लोगों को उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो छोटे फायर डिस्टिंग्विशर जो किचन में रखे जा सकते हैं, या 2 बकेट पानी या बालू की बाल्टी, ये सब रखी जा सकती है, तो जो और अक्सर करके देखिए कि बहुत सारे वैसे ज्वलनशील सामान जो किचन में रहते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं है, तो इन सब चीजों पे हमके जागरूक होने की जरूरत है कि कम से कम अपने किचन को जैसे हम मॉडिफाई करके रखते हैं, तो साथ में सेफ्टी मेजर्स भी रखें, फायर डिस्टिंग्विशर के छोटे आते हैं उसमें जो सेफ्टी की आप तुरंत उनसे आग को काबू कर सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। साथ में ये है कि मॉक ड्रिल कराई जाती है उसमें प्रैक्टिस करें, और पानी की बाल्टी वगैरह रखें गर्मी के दिनों में खास करके, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सभी माताओं बहनों से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि कृपा करके आप खाने का जो बनाने का टाइम है वो चेंज कर ले, सुबह 8 बजे से पहले खाना बना ले और शाम को 4 बजे या 5 बजे के बाद, शाम में देर रात को खाना बनाए, दोपहर में खाना ना बनाएं। इसके साथ एक चीज और ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है कि हम लापरवाही करते हैं, जो आग वगैरह है कहीं भी चलते हुए छोड़ देते हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं। हम सबकी ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि हम उसका भी ध्यान रखें, जो भी आग है उसको बुझा दे ठीक से, जिससे कि कोई भी वैसी घटना ना हो।
1: जी सर, बहुत अच्छा लगा आपने तमाम जानकारी दी।
0: और मैं दूसरी बात, जहाँ तक गाड़ियों का है तो गाड़ी के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि एक तो दो तीन चीजें इस पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप गाड़ियों में भी जैसे वायरिंग वगैरह होती हैं, गाड़ी का इंजन होता है, प्रॉपर सर्विस कराइए, वायरिंग मेंटेन रखिए। और एक छोटे से उसमें भी ये एसओपी है कि आप छोटा डिस्टिंग्विशर आता है उसको आप गाड़ियों में, फायर डिस्टिंग्विशर रहने से उसको ऑपरेट करना बहुत आसान होता है, उसकी मॉडल भी कराई जाती है, तो वो कम से कम ये रहेगा कि आग लगती है जब तक आप इधर उधर कुछ ढूंढने लगते हैं कैसे आग को बुझाएं, तब तक वो बड़ा स्वरूप कर लेती है। एक आमजन को हम और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आम पब्लिक को भी, कि आप अक्सर करके देखते होंगे बहुत लोग इस तरह से नासमझी करते हैं, हालांकि ये मना भी है, कि आप कोई भी ज्वलनशील जैसे चाहे ये पेट्रोल वगैरह है, ये कभी भी गर्मी के दिनों में इसको डिब्बे में लेने की कोशिश ना करें, ना या डिब्बे में लेकर के ना जाएं, क्योंकि ये इतना एक्सप्लोसिव होता है कि कब ये जानलेवा बन जाए। गाड़ी में कभी भी डिब्बे में आप पेट्रोल लेके उस तरह का ज्वलनशील सामान लेके ना चलें, कृपा करके बचाएं। और गर्मी के दिनों में बच्चों को गाड़ियों में बंद करके ना छोड़ें, ये मेरी अपील है। बच्चों को लेके सेंसिटाइज रहें, घर में कहीं अगर आग है, कहीं खाना बन रहा है तो आसपास छोटे बच्चों को ना छोड़ें, उनका ध्यान रखें, क्योंकि ये सब ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जबकि बच्चों में गाड़ी में बच्चे को बंद कर दिया गया, गर्मी का दिन है, वो सफोकेशन से उसको जो है दिक्कत हो गई। तो ये सब थोड़े थोड़े ऐसे उपाय हैं कि हम बचाव कर सकते हैं और इनका ध्यान रखना चाहिए और हम सबकी जिम्मेदारी। साथ में एक बहुत बड़ी अपील मैं आपके माध्यम से और करना चाहूंगा, जो कि सरकारी अभी हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, कि दो चीजें देखने को मिली हैं कि जैसे ग्रामीण इलाकों में जो चूंकि वेजिटेशन ज्यादा है, पेड़ ज्यादा हैं, तो वहां पे गर्मी का इफेक्ट कम देखते हैं, लेकिन शहरी इलाके में क्या होता है, चूंकि बिल्डिंगें बहुत सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगे हैं, तो एयर का जो वेंटिलेशन है वो उस प्रॉपर हो नहीं पाता है, साथ में हमारे ग्रीन कवर भी कम है, तो ऐसे में हमको ये सोचना होगा ऑक्सीजन भी हमारे लिए जरूरी है। तो अगर हम सब इसको जिम्मेदारी को समझें तो हमारा घर भी अच्छा होगा, कि हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर महिला अपने परिवार के गार्जियन से आपस में एक दूसरे से, जैसे बहुत सारे होते हैं हम जन्मदिन मनाते हैं और हम जो है आपके शादी सालगिरह मनाते हैं, तो बहुत सारे गिफ्ट की बात करते हैं, हम चाहेंगे कि बच्चे ये गिफ्ट मांगे अपने पेरेंट्स से कि हमको 10 गमले घर पे पेड़ के लगाने हैं, महिलाएं अपने हस्बैंड से मांगे कि 10 पेड़ घर में लगाने हैं जो आप छत पे सब्जी वगैरह उगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके यहाँ प्रॉपर ऑक्सीजन जनरेशन तो होगा ही, और साथ में क्या है कि जो आपका एनवायरमेंट है वो भी थोड़ा फेयर होगा, अच्छा होगा और मेंटेन होगा। अब आप समझिए, अगर 1,00,000 घर मुरादाबाद शहर में मैं मान लूं हाउस होल्ड, तो अगर 10 पौधा हर घर लगाए अपनी जिम्मेदारी समझ के, तो 1,00,000 पौधे को वो देख भी सकते हैं, उसका प्रॉपर केयर कर सकते हैं और ऑक्सीजन जनरेशन का आप अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि एक चीज और देखी गई है कि जो छत होती है, छत आप भी जानते हैं कि जितना काला होता है वो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है,
1: करेक्ट।
0: तो और व्हाइट शर्ट पहनने के लिए, लूज कपड़े पहनने के लिए भी हम लोग जागरूक करते हैं कि लोग लूज कपड़े पहने, व्हाइट शर्ट पहने, तो क्या है कि एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती, वापस चली जाती एनवायरमेंट में। तो अगर छतों को, छत के ऊपर सिरे को व्हाइट करने के लिए रूफ टॉप हम लोग बोलते हैं, कि आप पूरे घर को बहुत पेंट कराते हो, और होता क्या है कि अगर छत को आप व्हाइट करा दो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो आप अपने घर का टेम्परेचर 2 से 4 अंश सेल्सियस तक कम कर सकते। अब आप अनुमान लगाइए कि अगर 4,000 स्क्वायर फीट, 3,000 स्क्वायर फीट आपकी छत है और उसके टेम्परेचर को हम 2 से 4 अंश सेल्सियस कम कर देंगे, तो उसका एक परिणाम ये भी होगा कि आपको एसी कम चलानी पड़ेगी, ये भी हो सकता है, और घर का टेम्परेचर भी डाउन रहेगा। तो ये मेरी अपील है कि रूफ टॉप के तहत लोग अपनी छत के ऊपरी वाले सिरे को भी व्हाइट पेंट से ये पेंट कराएं। हालांकि सरकारी भवनों को पेंट कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मैम के द्वारा निर्देश चले गए हैं, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं, और 10.5 लाख स्क्वायर फीट छत हम लोगों ने चिन्हित की सरकारी भवनों की, उसमें बेसिक शिक्षा विभाग के हैं, ब्लॉक्स के हैं, फायर सर्विस के, थानों के हैं और जो सरकारी भवन है उनके हैं, जिसपे हमने अभी लगभग 1,00,000 स्क्वायर फीट छतें हमारी व्हाइट रूफ टॉप हो गई हैं, जिससे कि हम इस जो हमारी गर्मी है इसको रिफ्लेक्ट करके वापस कर सकें, एनवायरमेंट को थोड़ा सा मेंटेन कर सकें, मैनेज कर
2: कर सकें।
1: सर बहुत अच्छा लगा, आपने तमाम जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला, इतना महत्वपूर्ण समय हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया। और सबसे अच्छी बात, आपने जो एक गमलों का एडवाइस दिया ना, ये बड़ा अल्टीमेट था, बड़ा यूनिक था, और साथ में आपने बताया कि छत को हम कैसे व्हाइट पेंट करा के गर्मी का टेम्परेचर कम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जब एसी कम चलेगी तो बिल भी कम आएंगे, कहीं ना कहीं उसका फायदा भी है। तो ये आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। तो जाते जाते तमाम लिसनर्स को आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, कोई एक मैसेज, कोई एक संदेश?
0: संदेश देना चाहूंगा कि हमारे जिलाधिकारी महोदय और अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मैम के साथ पूरी जिला प्रशासन टीम आपके सेहत स्वास्थ्य को लेके बहुत ही संवेदनशील है, और सरकार स्पष्ट निर्देश है कि लोगों को जागरूक करिए, लोगों तक बात पहुंचाइए, उनसे अनुरोध करिए। तो जिला प्रशासन की तरफ से, सर की तरफ से आप सबसे पुनः यह अनुरोध है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, गर्मी के दिनों में दोपहर में घर में सुरक्षित रहें, सेफ रहें, बाहर ना निकलें, और बहुत सारे जो उपायों पे बात की गई इसका ध्यान रखें। आपकी सेहत ही हमारी संपत्ति है। धन्यवाद।
1: थैंक यू सर। आप सुन रहे थे FM मुरादाबाद 89.6 विद RJ आनंद। फिर मिलते हैं किसी और नए कार्यक्रम में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कहीं जाइएगा नहीं, रेडियो की सुई बिल्कुल घुमाइएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 5:37 हो चुके श्रोताओं, और आप सभी ने हीट वेव के बारे में सुना और गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखा जाए तो अगर टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मतलब ताबड़तोड़ वाली गर्मी पड़ रही है। और कल भैया 20 तारीख है, और 20 तारीख को आपको ही पता है कि थाई चिली लॉन्च में यानी कि इवेंट होने जा रहे, जो कि पुमनिया के लिए है, लेडीज़ के लिए है, और आपके लिए फ्री हेल्थ चेकअप होने वाले हैं। क्योंकि हम मतलब जो हमारे घर की मम्मियां हैं, लेडीज़ हैं, वो अपनी सेहत को लेकर ना मतलब एक्टिव नहीं रहती हैं। उनका जो उनको जो तो थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है ना तो कहती है यार थोड़ा बहुत दवाई लेके आराम हो जाएगा, मैं आराम कर लेती हूँ। लेकिन हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि छोटी छोटी बीमारी कब बड़े रूप ले ले हमें नहीं पता होता। सो कल फ्री चेकअप होने वाले हैं लेडीज़, और 21 तारीख को, यानी कि आप सभी को पता है फादर्स डे है, और जिन्होंने टिकट्स जीते हैं उनको कहाँ पहुँचना है कहाँ नहीं पहुँचना है आज मैं बताने वाली हूँ। सो आप स्टे ट्यून रहिए, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। आखिरकार इस शो में ढेर सारी बातें करने वाले हैं, अपडेट्स से लेकर आए हैं, और आज कौन सी मूवी रिलीज हुई है। भाई सच बताऊँ, मूवी देखने का क्रेज अलग ही होता है। जो मूवी देखने के दीवाने हैं ना उनसे पूछो, जब भी कोई मूवी रिलीज होती है ना उसी दिन देख कर आ जाते हैं कि नहीं हमें मतलब दूसरे दिन नहीं जाएंगे, हमें पहले दिन ही जाना है। और बहुत से ऐसे हैं कि नहीं अभी 10 दिन के बाद चलेंगे, टिकट्स ये जो प्राइस है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि पहले दिन तो वो महंगे होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो कम हो जाते हैं। सो इस चक्कर में भी बैठे रहते हैं ना। अरे कॉलेज टाइम में यही होता था, हम वेट करते थे आखिर 10-15 दिन हो जाने तो फिर चलते हैं मूवी देखने के लिए, थोड़ा सा टिकट कम हो जाएगा जो प्राइस है उसका। क्योंकि कॉलेज टाइम में तो वैसे भी घर से पैसे लेने पड़ते हैं, और घर से पैसे पूरे हिसाब से हमें दिए जाते हैं कि ये इस काम के लिए मैं पैसे ले रही हूँ, मतलब पूरा बताना पड़ता है आपको, तब जाके पैसे मिलते हैं। सो उसी में थोड़ा सा एडजस्ट हमें करना पड़ता है। चलिए फिलहाल एक प्यारा सा गाना, उसके बाद लौट कर आएंगे, फिर ढेर सारी बातें करेंगे।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आज जरीना के साथ इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करो तो 5:49 हो चुके हैं श्रोताओं, और आप आर जरीना के साथ कनेक्ट है। आप सभी से यही कहना चाहेंगे, देखिए जिंदगी में ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन आप जब भी बाहर निकलते हैं, ट्रैफिक में निकलते हैं, ऑफिस से घर के लिए निकलते हैं, तो बस आप सबसे यही कहते हैं जल्दबाजी में कुछ भूल मत जाइएगा। और कुछ में क्या आता है, सबसे पहले हेलमेट आता है। हेलमेट अपने साथ रखिए, पानी की बोतल अपने साथ रखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ परना दुपट्टा कॉटन के अपने साथ रखिए। जो अपने स्किन का बहुत केयर करते हैं वो सनस्क्रीन लगा कर जाए, बाहर ऐसे ना जाए, और जितना हो सके मतलब 12 बजे से लेकर 5 बजे तक तो कहीं मत जाए। और ज़्यादा ज़रूरी है तो अपने साथ अपनी ज़रूरतमंद चीज़ें ज़रूर बाहर लेके जाने चाहिए, और हेलमेट सीट बेल्ट लगा के रखिएगा ज़रूर। और इस गर्मी में देखिए हम इंसान सहन नहीं कर पाते हैं, इतनी तेज़ धूप है ना, क्या ही कर सकते। ऊपर से आप सभी से कि अनुरोध करना चाहेंगे कि आप सभी की जो गाड़ियाँ हैं, बाइक है, स्कूटी है, उसको भी आप धूप में खड़ा ना करें, क्योंकि धूप में खड़ा करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए धूप से बच कर रहिए और धूप में अपनी गाड़ी मत खड़ा रखिए। साथ ही साथ आप एसी कूलर घर में चलाते हैं तो किन किन सावधानियों का, किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ म्यूजिकल ब्रेक और लौट कर आते हैं श्रोताओं। आप सभी के बीच बने रहिए आर जे रीना के साथ। आप सभी ने जो कल टिकट्स मूवी जीते हैं तो उसके लिए आपको कहाँ पहुँचना है, किस टाइम पहुँचना है, मैं आपको बताऊंगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो बस 6:30 तक मैं वो बातें लेकर आऊंगी, फिर बताऊंगी आप सभी को कि कहाँ आपने पहुंचना है, किस टाइम पहुंचना है। संडे वाला दिन है, 21 तारीख है, फादर्स डे है, आपने वहाँ टाइमिंग से पहुंचना है, तभी आप मूवी देख पाएंगे। और ये मूवी साथ ही साथ वरुण धवन की मूवी है, ये जवानी है तो इश्क होना है, ये मूवी आप देखने जाएंगे। टाइमिंग मैं आपको बता दूंगी, उससे पहले एक प्यारा सा गाना, उसके बाद लौट कर आते श्रोताओं आप सभी के बीच।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। समय की बात करूं तो 5:57 हो चुके हैं श्रोताओं, 5:58। देखिए, मतलब एक सेकंड सेकंड का वैल्यू हमारे जिंदगी में है, टाइम का मतलब। आज वैसे वॉच डे भी है तो उसके बारे में भी बात करेंगे, इंटरनेशनल वॉच डे के बारे में। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं, हर घर में एसी, कूलर, फ्रीज हर घर में है ना। लेकिन हमें बस ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो कूलर की अगर मैं बात करूँ तो उसका पानी आपने डेली चेंज करना है, वरना मच्छर पनपने की, मच्छर उसमें पनपेंगे, फिर काटेंगे, फिर बीमार पड़ोगे आप। दूसरी बात, कूलर को आपने पूरा खोल के देखना है, क्योंकि अभी मैं जस्ट अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि उसमें एक कूलर के अंदर सांप जाके बैठा हुआ था, जहाँ पे मोटर लगाया जाता है ठंडा के लिए। उसको भी ठंड गर्मी लगती है तो सो ठंडा के लिए उसने कूलर के अंदर ही जाके, वो जहाँ पे मोटर लगा होता है वहाँ पे जाके वो बैठ गया। सो इसका भी आपने ध्यान रखना है अगर आप कूलर चलाते हैं अपने घर में तो। और एसी का भी आपने ध्यान रखना है कि एसी में भी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। साथ ही साथ आप अपने फ्रिज के आसपास भी इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि हम अक्सर ध्यान नहीं दे पाते हैं और बस हम एसी कूलर चला लेते हैं, फ्रिज के पीछे भी कभी नहीं देखते। और दूसरी बात, अगर फ्रिज जहाँ भी आप रख रहे हैं तो यानी कि वो थोड़ी दूरी पर ही होना चाहिए, बिल्कुल दीवार के टच करके आपने नहीं रखना होता है, क्योंकि उसका जो गैस होता है वो भी बाहर निकलना चाहिए। तो इस चीज़ का आपने पूरा पूरा ध्यान रखना है श्रोताओं। और कूलर का पानी हमेशा चेंज करके रखिए। और गर्मी है, गर्मी में थोड़ा बस कर रही है, जितना बच करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। घर पर रहते हैं आप और घर छाछ दही ज़रूर अपने डाइट में शामिल करिए, और साथ ही साथ नारियल पानी पीजिए और बेल का जूस पीजिए, जो कि आपकी तासीर को ठंडा रखता है और गर्मी से भी आपको राहत मिलती है। और एक मेरे पास प्यारा सा मैसेज आया है, चलिए उनको भी शामिल करते हैं। विक्की सागर जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से। कैसे हो रीना जी? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे श्रोताओं। और अगले मैसेज की बात करूँ तो दीपक जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से और गुड इवनिंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड इवनिंग सर। और अगले मैसेज की बात करूँ तो रूपाली जी हमारे साथ कनेक्ट होती हैं, गुड इवनिंग पहुंचाती है, वेरी गुड इवनिंग जी। आज थोड़ा लेट आई हूँ मैडम। हाँ जी, आज हमने सोचा हीट वे का जो एक बाइट है वो आप सभी तक सुनाया जाए। इस गर्मी में हमें कैसा ध्यान रखना है, कैसे नहीं ध्यान रखना है। आप किचन में खाना बनाते हैं तो मुझे तो ये लगता है पहले के टाइम में भी ना हम सुबह खाना बना लेते थे, वही शाम तक खाते थे। अब मतलब पता नहीं क्या हो गया कि हर किसी को गरम गरम फुलके चाहिए, गरम गरम सब्जियां चाहिए, गरम ही खाना चाहिए भाई। और तो मतलब उनसे पूछ के देखिए जो किचन में जाकर खाना हमारे लिए बनाती है, क्या उनको गर्मी नहीं लगती? लगती है। तो इसीलिए जैसे, और पहले के जो इंसान के मुकाबले अगर हम अपनी बात करें तो उनके अंदर जो एनर्जी और अपनी एनर्जी कहीं तक कहीं नहीं है, बल्कि वो वही ठंडा खाना खा के उनके अंदर इतना पावर, इतना एनर्जी होता था कि जितना वो काम कर देंगे ना हम नहीं कर पाएंगे। सच्ची में वो जितना चल पाते हैं, अगर उतना ही हम चल लेते हैं तो पैरों में दर्द हो जाता है, सांस फूलने लग जाती है। क्यों? हम बाहर के खाने ज़्यादा खाते हैं और घर पर हमें ताज़ी ताज़ी हर चीज़ ताज़ी चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, और गर्मी से किचन में आप काम करें तो उसका भी ध्यान रखिए, क्योंकि इस गर्मी में बहुत टफ हो जाता है हर एक चीज़ मैनेज करना। चलिए फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक, उसके बाद आज वॉच डे है उसके बारे में भी बातें करेंगे।
1: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। और जैसे ही शाम होता है ना, हम मार्केट की तरफ जाते हैं, जो भी हमें सामान लेना होता है, क्योंकि शाम का जो समय होता है ना, एक तो वेदर हल्की हल्की सी ठंडी होने लग जाती है और हम फ्री भी शायद दूसरे टाइम होते हैं, यानी कि पूरे दिन का भाग दौड़ काम करने के बाद थोड़ा समय शाम को मिलता है जो कि खुद के लिए एंजॉय करना चाहिए हमें। और उसके लिए और ये समय हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, वरना फिर अपने घर वालों को बोलते हैं कि हमारे साथ मार्केट चलिए, हम घूम कर आते हैं। क्योंकि ज़िंदगी है श्रोताओं, खुद तो अपने लिए ना कभी कभी ना हमें टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। इस भाग दौड़ की दौड़ में ना हम खुद के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाते हैं, लेकिन जब आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे तो सोचिए क्या टाइम वापस लौट कर आएगा, कभी भी नहीं। सो आज यानी कि नेशनल वॉच डे, एक कलाई पर बांधी होती घड़ी होती है ना, वो सिर्फ हमें समय नहीं बताती है बल्कि हमारी पहचान अनुशासन की भी निशानी होती है। ये दिन घड़ियों के इतिहास का है, यानी कि खूबसूरत डिज़ाइन समय की अहमियत हमें याद दिलाता रहता है। घड़ी हमें सिखाती है कि समय सबसे कीमती धन है, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, इसीलिए पल हर पल की कद्र करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, जो बीत गया सो बीत गया, उस बात को कभी याद करके ये रिग्रेट फील मत करिए कि काश उस टाइम मैंने ये किया होता, उस टाइम मैंने हाँ कर दिया होता तो शायद आज सब कुछ अच्छा होता। बिल्कुल नहीं, कहते हैं ना किस्मत जो भगवान ने लिख दिया आपकी लाइफ में ना, आपकी ज़िंदगी में ना, तो वो समय कहीं नहीं जाएगा। आप कितने ही कोशिश कर लीजिए, जो चीज़ मिलनी है वो समय पर ही मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस चीज़ को ट्राई भी ना करें, नहीं, कोशिश हमेशा करनी चाहिए, चाहे वो भले हमें समय पर ही, लेकिन कभी भी पिछली बातों को याद करके रिग्रेट फील नहीं करना चाहिए। जो गया सो गया, आगे बढ़िए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, पीछे मुड़कर कभी मत देखिए। हमें घड़ी यही सिखाती है कि समय सबसे कीमती धन है, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसीलिए हर पल की कद्र करना ज़रूरी है। चाहे वो पारंपरिक कलाई घड़ी हो या आधुनिक स्मार्ट वॉच हो, या हर घड़ी में हमें समय के साथ चलने का संदेश देता है। आज के दिन अपनी आपके पास आपको याद है कि क्या कब आपने अपने खुद के पैसे से घड़ी खरीदी थी, या फिर कभी घर वालों ने आपको गिफ्ट दिया है, या घर वालों के पैसे से आपने घड़ी खरीदी है, तो मुझे ज़रूर मैसेज करके बताइएगा। नंबर है 9837896896, क्योंकि अब तो हर किसी के पास स्मार्ट वॉच है ना, घड़ी इतना बहुत रेयर हो, बस वो दिखावे के लिए बांध लेते हैं कि हाँ हम कहीं जा रहे हैं, तो यार बांध लेते हैं ना, घड़ी बांधना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो पहले का क्रेज़ था ना भाई, घड़ी अलग ही लेवल का, जो आपकी एक हाथ की मतलब एक रौनक बन जाती है वो घड़ी। तो आपने मैसेज करके बताना है कि आपने पहली घड़ी कब खरीदी थी। मेरे को याद है जब मैं छोटी थी, जब मेरे पापा ने बहुत छोटी सी घड़ी मुझे दी थी, और वो मैंने अभी भी अपने पास रखी हुई है क्योंकि वो मेरी पहली घड़ी है। और हमेशा हमें कोई भी काम करना हो ना, वो समय पर करना चाहिए। आप कल के ऊपर सब चीज़ छोड़ देंगे, कल के ऊपर डिपेंड रहेंगे, तो आपको भी पता है कल कभी नहीं आता, और जो चला गया वो फिर वापस लौट कर भी नहीं आता। इसीलिए जो करना है आज ही करना है। डिपेंड तो मैं कहती हूँ किसी के ऊपर रहिए ही मत ना, जब आप आए अकेले हैं तो खुद मैनेज करना सीखिए, हर चीज़ को मैनेज करना सीखिए। समय लगता है लेकिन सब कुछ हो जाता है। और एक बहुत प्यारी लाइन, समय बदलता है लेकिन समय की कीमत कभी नहीं बदलती है। इसीलिए हर किसी के साथ मिलजुल कर रहिए और अपने शब्दों पर सोच समझ कर बोलिए कि क्या आप बोल रही हैं, सामने वाले को बुरा ना लग जाए, है ना। चलिए फिलहाल एक गाना, बहुत बोलती रही ना, है ना, उसके बाद लौट कर आते हैं। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: हरियाली से सजे हर गांव,
2: प्रकृति से खुशियों की लहर।
3: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आज जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 6:21 हो चुके श्रोताओं, और आज 19 तारीख, कल 20 तारीख और परसों 21 तारीख को क्या है, यानी कि वर्ल्ड योगा डे भी है, वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है, फादर्स डे भी है। तो वर्ल्ड म्यूजिक डे पर आपने क्या करना है? हम जब भी परेशान होते हैं ना, तो एकांत ढूंढते हैं कि बस एकांत में जाकर बैठ जाए, जहां ना जहां कोई आपको रोकने टोकने वाला ना हो, सवाल पूछने वाला ना हो। हम सब यही चाहते हैं। और कभी कभी तो मन भी ऐसा करता है ना कि बस ऐसे जगह चले जाए जहां पर कोई अपना हो ही नहीं, है ना। तो जब भी आप परेशान होते हैं तो हम एक्चुअल गाना सुनते हैं, फेवरेट वाला गाना सुनते हैं। उसे सुनने के बाद हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। सो परसों यानी कि 21 तारीख को वर्ल्ड म्यूजिक डे है, और वर्ल्ड म्यूजिक डे पर यानी कि शाम 5 बजे पंचायत भवन जरूर आइए, वहां पर म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा है। आपको पूरा फन करने को मिलेगा। आपके अंदर कोई टैलेंट है, अगर आप गाना गाते हैं तो वो भी आपको मौका मिलेगा। तो 21 जून शाम 5 बजे पंचायत भवन जरूर पहुंचिए। भूल मत जाना कि वहां हमें जाना है नहीं जाना है। वहां पर बहुत आपको मिलेंगे प्रोफेशनल, जो आपको वर्ल्ड म्यूजिक डे पर गाने सुनाएंगे और बहुत सारा फन होएगा। सो आप यहां पर ज़रूर जाइए। और आप सभी को पता है कि आप सभी ने मूवी टिकट्स जीते हैं, उसके बारे में भी बताऊंगी। बेधड़क बिंदास रहिए यार, जब रीना है यहां पर तो हर चीज़ आपको बताएगी कि आखिरकार क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कहाँ पहुँचना है आपने, किस टाइम पहुँचना है। हमारे अंदर चुल बहुत ज़्यादा होती है, सच में होती है क्रेज़ यार। जब हमने जीता है टिकट्स तो पता चलनी चाहिए ना कि हमें किस टाइम पहुँचना है, किस टाइम नहीं पहुँचना है। लेकिन उससे पहले हमारे पास जो मैसेज आ गए, वही उनको शामिल करते हैं। इशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं, सैयद शारिक अली इनके दोस्त है। गुड इवनिंग रीना जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं। अभी बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपके शो के जरिए हम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच जी, गाने भी बहुत अच्छे प्ले करती हो। और अगले मैसेज की बात करूँ तो गुड इवनिंग मैम, एक शायरी है गर्मी की, ओके। वो गर्मी भी सजा देती है, वो सर्दी भी सजा देती है, टंकी का पानी हर मौसम में दगा देती है। आय हाय, क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है कि गर्मी में, सच बताऊं तो टंकी का जो पानी होता है ना, ओए होए, बस ऐसा मन करता है बस पानी मत छुओ यार, नहीं छुओ, इतनी गर्म होती है। और सर्दी में इतना ठंडा होता है कि उस टाइम भी मन नहीं करता है, बस यार पानी गर्म होना चाहिए और इस टाइम ठंडा पानी होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाता है। बहुत प्यारी लाइन लिखी है। और इसके बाद एक कड़क सवाल लेकर आऊंगी और आपको बताऊंगी कि मूवी आपने किस टाइम जाना है देखने के लिए। फिलहाल एक प्यारा गाना।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है। आज रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और इसी बीच रीना लेकर आ गई आप सभी के लिए कड़क सवाल। और समय की बात करूँ तो 6:34 हो चुके हैं श्रोताओ, इवनिंग मस्ती शो में आप कनेक्ट है। सो आज का कड़क सवाल ये है कि छोटा बच्चा समझो ना उसको, छोटा बच्चा समझो ना उसको, बहुत शैतानी करता है। मौसी नहीं तो आराम से घूमे, मौसी से ही डरता है बस वो, और किसी से भी नहीं डरता है। पूरे घर में घूमे अगर मौसी उसको दिख गई तो वो डर जाता है, इतना डर जाता है कि उसके आगे आने से भी मतलब एक कदम भी नहीं रख सकता उसके आगे। आपने कहा बताना जी, और हम घर में बहुत परेशान भी रहते हैं उससे। समझ गए होंगे आप क्या है क्या नहीं है। नंबर है 9823789689 पर आपने हमें मैसेज करके बताना है कि एक छोटा बच्चा समझो ना उसको। 896 पर आपने हमें मैसेज करके बताना है कि एक छोटा बच्चा समझो ना उसको, बहुत शैतानी करता है। मौसी नहीं तो हर घर में घूमे, मौसी हो तो डर जाता है। सोचिए और फटाफट मैसेज करिए। और अगला गाना भी बहुत ही खूबसूरत है, और 21 तारीख को वर्ल्ड म्यूजिक डे पर शाम 5 पंचायत भवन पहुंचना है आपको। फ्री एंट्री है, कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे आपसे, ठीक है जी। चलिए फिलहाल गाना।
2: आज बड़ी खुशी हुई कि हमारे यहाँ खास गेस्ट आए हैं। सॉन्ग की पेशकश करो।

क्या बात है जी, जब पंजाबी गाने सुनते हैं ना तो बड़ा ही मज़ा आ जाता है ना। लेकिन श्रोताओं, अब समय आ गया है आप सभी को बताने के लिए कि आप सभी ने टिकट्स जीते हैं मूवी के, तो आपने कहाँ जाना है, यानी कि वरुण धवन की मूवी है जवानी है तो इश्क होना है, और ये मूवी देखने के लिए आपको जाना है मिगलानी में। और आप मिगलानी जाएंगे जब आपने बोलना है कि हम FM मुरादाबाद जो रेडियो है उसकी तरफ से हमने टिकट्स जीते हैं, तो आपको एंट्री मिल जाएगी, आपको अपना आपका सीट मिल जाएगा, आप आराम से मूवी देख सकते हैं। और इसकी टाइमिंग रहेगी 11:30 बजे, मिगलानी आपने पहुंचना ही है। अगर आप लेट हो गए कोई बात नहीं, एंट्री तो आपको मिल जाएगी लेकिन मूवी मिस कर जाएंगे आधी, इसीलिए 11:30 बजे आपने पहुंच जाना है मिगलानी में और आप मूवी इंजॉय कर सकते हैं। आपको टिकट्स वहीं पर मिलेंगे, आपको एंट्री मिल जाएगी, आपकी सीट बिल्कुल ऐसे ही होगी। तो यानी कि 22 तारीख को 11:30 बजे मूवी देखना बिल्कुल ना भूले, मूवी देखने ज़रूर जाए, 11 बजे सुबह की टाइमिंग है तो ज़रूर जाइए। और अपने फादर साहब के साथ जाइए, उनको मूवी दिखाइए, वरुण धवन की मूवी है और आपके फेवरेट एक्टर है तो और भी बल्ले बल्ले जी, है ना। और आज की कड़क सवाल भी बहुत ही आसान पूछा है मैंने, सो उसके बाद आप सभी के ही मैसेज शामिल करने का वक्त आ गया है, क्योंकि कल हम मिलने वाले आप सभी से थाई चिली, वहाँ पे बहुत सी विमनियाँ होंगी, बहुत से गेम्स होंगे, फंस होंगे आप सभी के लिए, और फ्री हेल्थ चेकअप, जिनको भी जो प्रॉब्लम है वो चेक करवा सकते हैं। सो आज का कड़क सवाल ये है, और कल के जो टाइमिंग है वो भी 11:30 बजे ही है। सो क्वेश्चन है आज का, छोटा सा छोटा बच्चा ना समझो, बहुत शैतानी करता हूँ, मौसी नहीं तो आराम से घर में घूमूं, मौसी घर में दिखे तो डर जाता हूँ, आखिरकार कौन है वो छोटा बच्चा जो शैतानी भी करता है, मौसी से बहुत ज़्यादा डरता है। तो श्रोताओं, आपने सोचना है और हमें मैसेज करना है, नंबर है 9837896896। और 21 तारीख मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ, 21 तारीख को अगर आपने टिकट्स जीते हैं तो 11:30 बजे मिगलानी आप पहुंच जाइएगा मूवी देखने के लिए। चलिए जी, फिलहाल गाना एंजॉय करते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं, और आप सभी के जो प्यारे प्यारे मैसेज आए ना भैया, उनको भी तो जरा शामिल करना है, क्या कहने चाहते हैं, इनका क्या आंसर होता है क्या आंसर नहीं होता है।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया अर्जुरीना के साथ। और आप सुन रही अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बचाते रहे गुनगुनाते रहे जी। समय की बात करूं तो 6:00 यानी कि 42 मिनट हो चुके हैं, 6:52 हो चुके श्रोताओं। कभी कभी ये हिंदी वाली जो गिनती होती है ना, उसमें कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होता है। सो आखिरकार अपने शो में आगे बढ़ते हैं और हम जो आपने आप सभी से मैंने पूछा है आज का जो कड़क सवाल, बहुत ही सिंपल है, यानी कि छोटा बच्चा समझो ना मुझको, बहुत शैतानी करता हूँ, मौसी के आते ही डर जाता हूँ, अगर मौसी घर में ना मिले तो मैं शैतानी करता हूँ। चलिए देखते हैं किनका क्या आंसर आता है हमारे पास। ओ भाई साहब देखना चाह रहे भाई, अरे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि घर में हम परेशान हो जाते हैं उसकी वजह से, है ना, कपड़े होते हैं वो भी आपको कटे फटे मिल जाते हैं ना, नए नए कपड़े जो सोचो आपने कभी पहने नहीं होंगे वो भी कटे मिल जाते हैं आपको, वो किससे मिलते हैं अभी पता चल जाता है। विक्की सागर जी का कहना है कि मौसी का भांजा, ओ माय गॉड मौसी का भांजा। अच्छा जी अभी बताते हैं आपको, जल्दी से रुक जाइए बस। अगले मैसेज की बात करूँ तो राहुल जी कनेक्ट होते हैं गांधीनगर मुरादाबाद से और इनका कहना है कि चूहा। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं इरशाद हुसैन अंसारी जी और इनका कहना है कि चूहा। ओके अगले मैसेज की बात करूं तो जय श्री राम रीना जी, बबलू सैनी कनेक्ट होते हैं हमारे साथ मुंबई महाराष्ट्र से और इनका कहना है कि राइट आंसर होता है चूहा। ओके सो अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे पास चाय आ चुका है भैया, क्या बात है जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच दिल से तहे दिल से। और इनका कहना है कि आंसर है चूहा। रीना जी गुड वाली इवनिंग है, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। ये हमारे साथ ललिता कश्यप जी कनेक्ट होती है, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है लेकिन चाय पीना नहीं छोड़ेंगे, इसको बोलते हैं असली चाय लवर। अगले मैसेज की बात करूं तो इनका मैसेज आता है और इनका कहना है कि चूहा है। सर आपका नाम तो मुझे दिख नहीं रहा है कहीं पर भी, लेकिन ये नंबर है यानी कि 4 digit 3938, तो कृपया सर आप अपना नाम भी ज़रूर बताइए, तभी हमें पता लगेगा और हमारे श्रोताओं को पता लगेगा कि आपने राइट आंसर दिया है राइट या राइट आंसर नहीं दिया है। सो अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आते हैं हमारे पास, ये पिंटू जी कनेक्ट होते हैं। ओ भाई साहब क्या ही बात करें, लाइन पर से कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है भांजा होता है मैडम जी। ओके जी, तो भांजा क्या कपड़े को फाड़ देता है, क्या कट कर देता है उसको, बताइए जरा सोचिए। और घर में हम परेशान भी हो जाते हैं। और अगले मैसेज की बात करूँ तो ये रूपाली हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं और इनका कहना है कि मैम चूहा होता है जिससे हम घर में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सच बताऊँ तो एक बार मैं नई ड्रेस लेकर आई थी और मैंने ऐसी अलमारी में रख दिया उसको, और जब मैं निकालने गई 2 दिन बाद तो चूहों ने उसको ऐसे कुतर रखा था ना कि पूछिए मत भाई, क्या ही मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। सो और अगले मैसेज की बात करूँ तो हमारे पास अगला मैसेज आता है यहाँ पर, ये दीपक जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, इनका कहना है कि चूहा होता है मैडम, जो कि मेरे शॉप में ना उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, बताइए गणेश जी से हम विनम्र विनती करते हैं कि कृपया अपने चूहों को समझाइए, गणेश जी पाफ नहीं करना चाहते हम। ओके जी ओके, चलिए गणेश जी ने सुन लिया है और चूहे को वो समझा लेंगे। और इनका कहना है कि भाई जो भी कागज वगैरह रखे रहते हैं ना वो भी कुतर देते कभी कभी, तो ये तो है जी, बस थोड़ा सा उनसे संभल के रहना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि राइट आंसर हमारे पास सबसे पहले पहुंचा है ये राहुल जी का राइट आंसर पहुंचा है, तो आप आज इवनिंग मस्ती शो में विनर बनते हैं राहुल जी। और आप सभी को पता है कि 2 दिन यानी कि हमारे साथ जो जिन्होंने भी मूवी टिकट्स मतलब जो विनर बने हैं उनको परसों 11:30 बजे
मिगलानी पहुंच जाना है और आपको बोलना है वहां पर हम FM मुरादाबाद की टीम की तरफ से हैं, जहां पर हमने टिकट्स जीते हैं और फादर्स डे पर आप अपने फादर्स को लेकर जाके मूवी एंजॉय कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाज़त। कल मिलेंगे, सेम टाइम तो नहीं मिल सकते, लेकिन हम आपको कल मिलने वाले हैं 10 बजे मॉर्निंग मसाला शो में। ढेर सारी बातें करेंगे, बहुत सारा, और आप सभी के जो प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं ना भाई साहब, क्या ही कह सकते, इतने शानदार मैसेज होते हैं आप सभी के श्रोताओं। चलिए फिलहाल इस गाने के साथ मैं जा रही हूँ, बाय।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद।

0: के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद
1: कॉल 7500153841।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
3: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता के विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देशवासियों के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए था। पिछले वित्तीय वर्ष में यह बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले रक्षा निर्यात केवल 1,000 करोड़ रुपए का था, अब यह बढ़कर लगभग 40,000 करोड़ रुपए हो गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की सोच में बड़ा बदलाव आया है। देश की सोच विश्वास, विकास और जन कल्याण द्वारा परिभाषित होकर बेहतर शासन मॉडल की ओर अग्रसर हो रही है। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों तक महत्वपूर्ण संसाधनों को सीधे पहुंचाने के कार्यों को पूरा किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के पहले टेलीग्राम को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करने के सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के पास रोक लगाने के पर्याप्त कारण थे और कानून की प्रक्रिया का ठीक से पालन किया गया है। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल में हिमाचल के तराई क्षेत्रों, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकार और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में आज बिजली चमकने और ओले पड़ने की संभावना है। अश्मिता चालिया मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में आज अश्मिता ने कोरिया के किम मिन सन को हराया। सेमीफाइनल में कल उनका सामना कोरिया की पार्क गा यून से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 7:05 हो चुके हैं और ये वक्त है कार्यक्रम कृषि जगत का।

0: दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद को, और प्रोग्राम का नाम है खेती किसानी। जी हाँ किसान भाइयों, राम राम आप सभी को। कैसे हालचाल है आपके? मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। श्रोताओं एक बार फिर से हमारे साथ एक और विशेषज्ञ मौजूद है। जी हाँ, आपने इनको पहले भी सुना है, डॉक्टर विनय कुमार जी हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित है। एक बार फिर से हम चर्चा करने वाले हैं आप ही के काम के विषय पर। जी हाँ, मतलब ये जो टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है, जिसपे हम आज चर्चा करेंगे। और आज का हमारा विषय है गर्मी के मौसम में गन्ने की फसल का वैज्ञानिक प्रबंधन। इसपे आज हम चर्चा करने वाले हैं, और इसी पर बात करने के लिए जैसे कि मैंने बताया, डॉक्टर विनय जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
0: जी जी सर, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय एक बार फिर से निकाला और आप स्टूडियो में आए, उसके लिए शुक्रिया सर।
1: जी धन्यवाद सर। जी
0: सर, हमारा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि गर्मियों में गन्ने की फसल को पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है क्या सर?
1: जी हाँ, देखिए गर्मियाँ क्या है कि सभी लोगों के लिए जल आवश्यक होता है, और फिर बेसिकली जब गर्मियाँ चल रही हो तब तो वो जो है जल मांग जो है कई गुना बढ़ जाती है, चाहे जीव हो, चाहे जीव में कोई मनुष्य हो, चाहे कोई जानवर हो, पशु पक्षी हो, या हमारी फसलें हो, या हमारे पेड़ पौधे हो, कोई भी हो, कई गुना हमारा वो बढ़ जाता है। तो जैसे गन्ने की बात करें तो गर्मियों में मिट्टी जल्दी सूख जाती है, इसलिए 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। हल्की भूमि में सिंचाई जल्दी करनी पड़ सकती है।
0: जी ओके, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा कि जो ड्रिप सिंचाई का उपयोग भी लाभकारी हो सकता है क्या, और इससे पानी की बचत होती है क्या, और पौधों को पर्याप्त नमी भी मिलती है क्या?
1: जी देखिए, ड्रिप सिंचाई जिसको हम लोग बेसिकली बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं, हमारे जैसे जहाँ पे जल की समस्या होती है, सिंचाई जल जहाँ पे कम होता है, और बाकी अगर अमूनता अगर देखा जाए तो हमें तो यही लगता है कि प्रत्येक किसान को ये चीजें धीरे धीरे अडॉप्ट करनी चाहिए।
0: हाँ जी, हाँ
1: क्योंकि एकदम
0: हाँ
1: से इसको कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ड्रिप सिंचाई क्या होती है, इसमें पाइपलाइन पड़ती है, उसमें गन्ने की जो लाइन होती है उसी में ये पाइपलाइन डाल करके बूंद बूंद पानी डाला जाता है। इसमें अतिरिक्त जल जो होता है हमारा व्यर्थ नहीं जाता है, और जितनी आवश्यकता होती है उतना ही जल हम पौधे को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हमको कोई जैसे वो फर्टिलाइजर देना है, जिसको उर्वरक कह सकते हैं, उर्वरक देना है, या कोई और हमको जो है पेस्टिसाइड या फंजीसाइड कुछ भी हमको देनी है, तो हम सिंचाई जल के साथ में उनको प्रेषित करके हम अपने फसल को उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे अतिरिक्त जल भी हमारा बचता है और किसान की जो है कह सकते हैं कि उनको जो है अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक बार हमारी पाइपलाइन डल जाती है तो हमेशा वो यूज किया जा सकता है।
0: जी डॉक्टर साहब, तो गर्मी के मौसम में खरपतवार तेजी से बढ़ता है और फसलों से पोषक तत्व और नमी भी छीन लेता है, इसके बारे में बताइए डॉक्टर साहब।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, जिसे समय पर जो है निराई गुड़ाई आवश्यक होती है।
0: हाँ
1: कोई भी फसल हो,
0: हाँ जी, हाँ
1: गन्ने की ही नहीं बल्कि कोई भी फसल हो, समय पर निराई गुड़ाई आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर अनुशंसित खरपतवार नाशी, जिसको हम लोग जो है वीडिसाइड भी कहते हैं, का उपयोग करना चाहिए।
0: जी जी,
1: और प्रयास करना चाहिए कि अगर हाथों से इस काम को कर सकें, क्योंकि कम से कम पेस्टिसाइड का यूज करना चाहिए, और हमारे अगर हाथों से नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा फैल चुका है, तो उस स्थिति में हम खरपतवार नाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और खेत को खरपतवार मुक्त बनाए रखना ये जरूरी होता है, क्योंकि इससे जितना ज्यादा खरपतवार होगा उतनी ही फसल हमारी गुणवत्ता कम होगी और उसमें पैदावार भी घट जाएगी।
0: ओके अच्छा डॉक्टर साहब, गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है क्या?
1: जी बिल्कुल, देखिए अर्थिंग अप जिसको हम लोग मिट्टी चढ़ाना भी कहते हैं,
0: हाँ जी, हाँ।
1: जब पौधे जो है हमारे बढ़वार की ओर अग्रसर होते हैं, इसमें कई सारी हमको जो है निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, जैसे कि हम अभी पीछे हम चर्चा कर चुके हैं। तो जब हमारा बरसात या वर्षा ऋतु आने से पहले अंतिम जुताई होने के बाद हम इसमें जो है अर्थिंग अप की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। इसमें मिट्टी का जो है, मिट्टी जो होती है बीज की क्यारियों के दोनों लाइनों के बीच की जो खाली जगह होती है, वहां पे निराई गुड़ाई करके, और जो इसकी मिट्टी होती है वो भुरभुरी किस्म की करके उसको चढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होता है टिलर्स जिनको हम लोग कहते हैं वो ज्यादा निकलते हैं, और मिट्टी चढ़ने से हमारा रूट एरिया मजबूत हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारी फसल गिरती नहीं है, गिरने से बच जाती है। और यदि हमारी फसल गिर जाती है, ऐसा नहीं अगर हम करेंगे और हमारी फसल गिर जाती है तो हमारा उत्पादन भी कम हो जाता है।
0: जी डॉक्टर साहब, आप लगातार तमाम जानकारियां हमारे श्रोताओं को दे रहे हैं। इसी बीच मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गर्मियों के मौसम में संतुलित उर्वरक देना बहुत आवश्यक है क्या?
1: जी बिल्कुल, देखिए संतुलित, जैसे हम लोग भी भोजन की थाली जो हम लोग लेते हैं तो उसमें भी हमको दाल चावल और रोटी सब्जी और सलाद अचार इत्यादि तरीके के हम लोग संतुलित चीजें खाएं। जितना ही संतुलित हम लोग रहेंगे उतना ही हमारी लाइफ भी संतुलित रहेगी। इसी तरीके से पेड़ पौधों में भी होता है, जैसे गन्ने के लिए है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश इत्यादि का संतुलित उपयोग करें। मिट्टी का परीक्षण अवश्य कराएं। जैसा ही परीक्षण रिपोर्ट आती है उसके आधार पर उर्वरक देना ही हमको लाभकारी रहता है। जिंक और सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी कमी होने पर उनका भी प्रयोग कर सकते हैं।
0: जी ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, गर्मियों में कई प्रकार के कीट एवं रोग फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या?
1: जी बिल्कुल, देखिए गर्मी चल रही है, इसमें टॉप बोरर, पायरिल्ला, दीमक इत्यादि कीटों का नियमित निगरानी रखें। अगर कोई ऐसा दिख रहा है तो उसका समुचित उपचार करें। रोग ग्रसित पौधों को तुरंत हटाएं। कृषि विभाग की सलाह के अनुसार दवा का अवश्य प्रयोग करें।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्या किसान भाई ट्रेस मल्चिंग अपना सकते हैं क्या?
1: जी बिल्कुल, देखिए ट्रेस मल्चिंग क्या होता है कि जैसे जो किसान भाई जानते सब हैं, जैसे पेड़ी गन्ना होता है तो उसमें क्या होता है, गन्ने की सूखी पत्तियां होती हैं तो उनको अमूनता लोग क्या करते हैं, जला देते हैं। जलाने को उसको आसान समझते हैं लेकिन ये हमारे लिए दुष्प्रभावित होता है। गन्ना पत्ती को अगर जलाते हैं तो पर्यावरण प्रदूषित भी होता है और जो है हमको जो है कई सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव आग की चपेट में आके नष्ट हो जाते हैं। हमारी मिट्टी की यानी कि खेत की ऊपरी सतह जो होती है आग के संपर्क में आके जो है कठोर हो जाती है। धीरे धीरे अगर हम नियमित ऐसा करते रहेंगे तो हमारी एक दिन भूमि बंजर हो सकती है, तो इसलिए हमको ट्रेस मल्चिंग अपनाना चाहिए। ट्रेस मल्चिंग क्या होता है कि जैसे गन्ने की सूखी पत्तियों को खेत में बिछाने से मिट्टी में जो है नमी बनी रहती है, हमको ज्यादा अंतराल पे पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर ट्रेस मल्चिंग नहीं करेंगे तो हमको जल्दी जल्दी पानी लगाना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे हमारे पृथ्वी में और हमारे जो है खेत की ऊपरी सतह पे पड़ेंगी तो उसमें जल हानि ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होगा, ट्रेस मल्चिंग अपनाएंगे तो हमारी सूखी पत्तियां जो है उस डायरेक्ट सनलाइट को रोक लेंगी, जिससे क्या होगा कि मिट्टी की नमी हमारी संरक्षित रहेगी। इससे क्या होगा कि अगर पलवार या जैसे कह सकते हैं ट्रेस मल्चिंग ऊपर पड़ी हुई है तो उसमें नीचे की तरफ से अंकुरित होने वाले खरपतवार भी कम से कम आएंगे और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी हमारी बढ़ेगी, क्योंकि कम खरपतवार भी जो है हमारे लिए लाभकारी हो सकते हैं। क्योंकि खरपतवार अगर होंगे तो वो भी सूक्ष्म जीव अवशोषित करेंगे, जल भी अवशोषित करेंगे और हमारी फसल के बीच में कंपटीशन भी क्रिएट करेंगे। तो इसलिए जो ट्रेस मल्चिंग जो है अगर संभवतः जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पेड़ी में उसको करना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छे से आपने विस्तार से इस पे चर्चा करी। अच्छा एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, यही अच्छी पैदावार के लिए उन्नति प्रजातियां भी महत्वपूर्ण है क्या?
1: जी बिल्कुल, अहम भूमिका रहती है उन्नतशील प्रजातियों का, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे, ऐसी कहावत हमारे गांव देहात में चलती है। किसान भाई सभी लोग जानते हैं प्रमाणित और अनुशंसित प्रजातियों का ही चयन करना चाहिए। चीनी मिलें क्या करती हैं, जब चीनी मिल प्रारंभ होता है, सत्र प्रारंभ होता है, तो वो यही कहती हैं कि जो भी प्रजातियां हैं जो प्रमाणित हैं या अनुशंसित हैं उन्हीं को ही आप लोग सप्लाई के लिए चीनी मिल में आपूर्ति करें। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई भी रिजेक्ट वैरायटी को लगा देते हैं, जिससे क्या होता है उनको तुरंत तो कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन जब आपूर्ति का समय आता है तब उनको दिक्कत होती है। तो हमारी अपील है समस्त किसान भाइयों से कि अपना जो है गन्ना क्षेत्र जो है वो प्रमाणित और अनुसूचित प्रजातियों का ही चयन करके बोएं, रोग मुक्त बीज का प्रयोग करें, इससे उत्पादन और चीनी प्रतिशत दोनों ही वृद्धि होगी और दोनों को ही लाभ होगा, चाहे चीनी मिल हो चाहे किसान भाई हों, दोनों लाभकारी होंगे तभी ये जो है चल पाएगा। अगर किसान को लाभ होगा और चीनी मिल घाटे में चली गई तो वो ऐसा ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। तो आप ऐसी प्रजातियों का चयन करें जिनमें शर्करा प्रतिशत यानी कि जिसमें शुगर परसेंटेज भी हो और पैदावार भी अच्छी हो, तो दोनों के ही कोलेबोरेशन से ये चीज सक्सेसफुल हो सकती है। तो हमारी अपील है कि प्रमाणित और अनुशंसित प्रजातियों का ही किसान चयन करें।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, किसानों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव जो आप देना चाहें।
1: जी बिल्कुल, आइए कुछ हम महत्वपूर्ण सुझावों जानते हैं, समझते हैं क्या क्या हो सकते हैं जिसे खेत में जल भराव बिल्कुल ही ना होने दें। जैसे कि हमारे आज के चर्चा के विषय में ही लिखा हुआ है कि हमारा जो है ग्रीष्म ऋतु चल रही है, यानी कि हमारे जो समर सीजन चल रहा है, ज्यादा टेम्परेचर है, धूप की किरणें बहुत तेजी से मतलब हमारे शरीर को हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो इस स्थिति में अगर हम जल भराव अपने खेत में कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि जल भी गर्म होगा और गर्म जल में अगर हमारा पौधा रहेगा तो स्ट्रेस में चला जाएगा और वो अपनी बढ़वार को खो देगा, यानी कि धीरे धीरे उसकी बढ़वार कम होती जाएगी। जब आवश्यक हो तभी जल आपूर्ति करें, यानी कि तभी उसमें सिंचाई करें। अब व्यर्थ में जल भराव ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश ना करें, जल भराव हमारे लिए और हमारी फसलों के लिए नुकसानदायक है। दूसरा है समय पर सिंचाई करें, जब आवश्यक हो तभी सिंचाई करें। संतुलित उर्वरक का उपयोग करें, रोग और कीट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि आपने अगर उसका निदान कर लिया और पड़ोस वाले खेत से उड़ करके आपके यहाँ भी आ सकते हैं, तो इसलिए रोग और कीट का समय पर जो है उपचार जरूरी होता है, तो इसलिए उस पे नजर बनाए रखें। अगला हमारा है, कह सकते हैं कि गन्ना जो पत्तियां होती हैं उनको ना जलाएं। जैसे हमने पिछले अभी अपने प्रश्न आपके प्रश्न में जो है हमने बताया था,
0: जिक्र किया था
1: कि गन्ने की पत्तियां जो होती हैं उनको जलाया ना जाए, उनको आप मल्चिंग में प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए कई सारी मशीनें आ गई हैं, मल्चर वगैरह आते हैं, उनको पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके आपके खेत में बिखेर देता है जिससे वो आसानी से कह सकते हैं डिकम्पोज हो जाती हैं। तो गन्ने की पत्तियों को प्रयास करें कि ना जलाएं। अगर आपको नहीं रखना है तो आप कंपोस्ट पिट बना करके उसमें आप डाल सकते हैं, जिसकी आप खाद बना करके फिर से अपने फसल में यूज कर सकते हैं। अगला हमारा है एक महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि कृषि वैज्ञानिकों की जो है सलाह लेते रहें। जो भी हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, आपके यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, या चीनी मिल के अधिकारी कर्मचारी गण हैं, या समिति के जो गन्ना पर्यवेक्षक गण हैं, उन लोगों से संपर्क में बनाए रहें और उनसे समय समय पर सलाह लेते रहें।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद, और इस महत्वपूर्ण सेशन में, इस श्रृंखला में आपने तमाम जानकारियां दी हमारे किसान भाइयों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देंगे, कोई एक प्रेरणादायक मैसेज जो आप देना चाहें?
1: जी देखिए, अभी जैसे कि हमारे शीर्षक में ही है कि ग्रीष्म ऋतु, तो सामान्यतः 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। गन्ने की सूखी पत्तियां जो है नहीं जलाएं, मल्चिंग जो है अपनाएं। मल्चिंग नहीं आप कर सकते हैं तो उसको
2: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000

0: अणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा एसआईटी की जांच सामने आएगा मंदिर चढ़ावा मामले का सच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वांचल को दी 3 ट्रेनों की सौगात। कहा आने वाले समय में दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी आज आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई कार्य समूह की बैठक में हुए शामिल। वैश्विक एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने पर हुआ विचार विमर्श। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित देश भर से जुड़े लोगों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि पूरा विश्व आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदले। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत हुई है। यह युवाओं और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है।
0: इस आयोजन के अंतर्गत प्रदेश में लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल शामिल हुए। इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में रुदौली विधानसभा क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय समेत 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरासत और विकास के विजन को साकार करने की दिशा में डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की वजह से उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में ब्रेक थ्रू साबित हुआ है।
2: आज उत्तर प्रदेश अपनी शानदार यात्रा को लेकर के चल रहा है। अब देश के अंदर बीमारू राज्य नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनकर के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अब यूपी के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है, ये इसी पंच प्रण का परिणाम है और डबल इंजन सरकार का परिणाम है।
0: मुख्यमंत्री ने श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर कहा कि ट्रस्ट के अनुरोध पर सरकार ने एसआईटी जांच बैठाई है। एसआईटी की जांच से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी।
2: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है, और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनलगल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो।
0: मुख्यमंत्री ने नगर निगम अयोध्या में 290 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 245 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गोंडा में देवीपाटन और बस्ती मंडल के लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने देवीपाटन मंडल के प्रमुख

0: मार्गों के विकास को मंजूरी दी। कुल 4,901 करोड़ 65 लाख रुपए की 1,000 से अधिक विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति भी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बिहार के छपरा जंक्शन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वांचल को सौगात देते हुए दोहरी घाट ओढ़ियार ट्रेन सेवा का वाराणसी सिटी तक विस्तार और मऊ आनंद विहार नियमित एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मऊ के रास्ते संचालित होने वाली छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले समय में इस क्षेत्र को बुलेट ट्रेन की सौगात मिलेगी, जो दिल्ली से लखनऊ और वाराणसी होते हुए पटना और सिलीगुड़ी तक जाएगी।
1: आने वाले समय में एक और नई चीज चालू होगी, बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, वाराणसी से पटना और पटना से सिलीगुड़ी, यानी दिल्ली से पटना की यात्रा मात्र 4 घंटे और 41 मिनट की रह जाएगी।
0: इस दौरान मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में प्रदेश सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा भी शामिल हुए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में इंडिया फर्स्ट की भावना राष्ट्रीय चरित्र बन गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इसी भावना ने वैश्विक मंच पर भारत के मान सम्मान और सामर्थ्य को नई ऊंचाई दी। इसी क्रम में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और समावेशी विकास की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी द्वारा आज वाराणसी में वार्तालाप मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल और पत्र सूचना ब्यूरो के निदेशक दिलीप शुक्ला भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने आज आगरा में प्रथम ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई कार्य समूह की बैठक आयोजित की। बैठक में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी शामिल हुए और उन्होंने सभा को संबोधित किया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने इसे सफल बताया। इस बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, रूस, वियतनाम और भारत सहित ब्रिक्स सदस्य और ब्रिक्स सहयोगी देशों के नीति निर्माता, उद्योगपति और अन्य हितधारक शामिल हुए। पेश है एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स बैठक की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रही। इस दौरान प्रतिनिधियों ने वैश्विक एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने, स्थिरता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ एमएसएमई की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ हुआ। ब्रिक्स एसएमई फोरम से ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और एमएसएमई के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक वातावरण विकसित करने की उम्मीद है। बैठक में प्रदेश के एमएसएमई मंत्री भूपेन चौधरी भी उपस्थित रहे। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। कहा, युवाओं और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु है ये योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, SIT की जांच से सामने आएगा मंदिर चढ़वा मामले का सच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वांचल को दी 3 ट्रेनों की सौगात। कहा, आने वाले समय में दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। और केंद्रीय MSME मंत्री जीतन राम मांझी आज आगरा में ब्रिक्स MSME फोरम और तीसरी SME कार्य समूह की बैठक में हुए शामिल। वैश्विक MSME इकोसिस्टम को मजबूत करने पर हुआ विचार विमर्श। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
5: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
6: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
7: कॉल 8826213131।
8: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई BP, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा। बदल रहा है उत्तर प्रदेश, तरक्की की नई पहचान, गांव-गांव में विकास की गूंज, हर हाथ को मिल रहा है सम्मान, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश और यह है आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जहां आज हम बात करते हैं उस नए उत्तर प्रदेश की जो परंपरा को भी साथ लेकर चल रहे हैं और आधुनिक विकास की नई इबारत लिख रहे हैं।
9: और हूं आपकी दोस्त प्राची।
8: मैं हूं आपका दोस्त RJ आनंद। आप
9: सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश आज सिर्फ आबादी में बड़ा राज्य नहीं बल्कि विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
8: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार ऐसी योजनाएं चला रही है जो गांव, किसान, युवा, महिलाएं और छोटे कारोबारियों की जिंदगी बदल रही है।
9: और आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे कानपुर देहात की, जहाँ की मिट्टी में बसता है देसी स्वाद, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों तेल अब ODOC योजना के जरिए देश दुनिया में अपनी पहचान बनाने जा रहे हैं।
8: तो चलिए शुरू करते हैं स्वाद, संस्कृति और विकास की ये खास यात्रा, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
10: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: मिट्टी की खुशबू स्वाद का संसार, उत्तर प्रदेश बना आत्मनिर्भर और दमदार।
1: बिल्कुल, आज बात होगी कानपुर देहात की, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों का तेल अब सिर्फ गांवों कस्बों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। बिल्कुल, आज बात होगी कानपुर देहात की, जहाँ की कुल्हड़ वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध सरसों का तेल अब सिर्फ गांवों कस्बों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाएगा। और ये सब संभव हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन यानी ODOC योजना से।
0: दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश पारंपरिक उत्पादों और स्थानीय हुनर को एक नई पहचान दिलाने का काम कर रही है,
1: और इसी सोच के तहत शुरू हुई है ODOC योजना, एक जनपद एक व्यंजन।
0: इस योजना का मकसद हर जिले के पारंपरिक स्वाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच देना है, ताकि स्थानीय कारीगरों, छोटे दुकानदार, महिलाएं, समूह और युवा उद्यमी को आगे बढ़ा सकें।
1: कानपुर देहात के लिए चुने गए दो खास उत्पाद मिट्टी के कुल्हड़ में मिलने वाली मलाईदार लस्सी और शुद्ध देसी सरसों का तेल।
0: अरे प्राची, कानपुर देहात की लस्सी का नाम सुनते ही मन तरोताजा हो जाता है।
1: और हो भी क्यों ना, यहाँ की लस्सी सिर्फ पेय नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी, अपनापन और देसी परंपरा की पहचान है।
0: शुद्ध देसी दूध, ऊपर मोटी मलाई, हल्की इलायची की खुशबू और मिट्टी की कुल्हड़ का वो सोंधापन।
1: वाह, और जैसे ही कुल्हड़ हाथ में आता है ना, उसकी ठंडक और मिट्टी की खुशबू मन को अलग ही सुकून देती है।
0: दोस्तों, कानपुर देहात की मलाईदार लस्सी की खास बात ये है कि इसे बड़े प्यार और पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है। साथ ताजी दही को मथकर उसमें मलाई मिलाई जाती है, फिर ऊपर से केसर, पिस्ता, बादाम और कभी कभी गुलाब की पंखुड़ियों से भी सजाया जाता है।
1: और गर्मियों के दिनों में तो ये लस्सी लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं होती। खेतों से लौटते किसान हो या दूर आए मेहमान, एक कुल्हड़ लस्सी हर किसी की थकान मिटा देती है।
0: कई दुकानों पर तो आज भी पुराने अंदाज में मिट्टी के मटकों में लस्सी जमाई जाती है, जिससे उसका स्वाद और भी गाढ़ा और प्राकृतिक वाला हो जाता है।
1: यही नहीं, अब ODOC योजना के तहत इस पारंपरिक लस्सी को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और कोल्ड चेन सुविधाओं से जोड़ा जाएगा, ताकि इसका असली स्वाद देश दुनिया तक।
0: इस योजना की सबसे शानदार बात क्या है जानते हैं?
1: क्या?
0: ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी।
1: बिल्कुल सही, गांव की महिलाएं, स्वयं सहायता समूह अब लस्सी, घी और डेयरी उत्पादों के निर्माण और मार्केटिंग से जुड़ रही हैं।
0: यानी अब गांव की महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपने हुनर से आत्मनिर्भर बन रही हैं।
1: योगी सरकार की यही सोच है, लोकल को ग्लोबल और महिलाओं को आत्मनिर्भर।
2: हमारा नाम सोनू यादव, ग्राम व पोस्ट बैरी सवाई, तान्या मैंगो जूस कॉर्नर एवं लस्सी भंडार, इस नाम से मेरी दुकान है। हम शाम को किसान के यहाँ से दूध लाते हैं, गर्माते हैं उसको, शाम को मिट्टी के बर्तन में जमा देते हैं, सुबह मथानी से मत के लस्सी बनाते हैं। लस्सी में काजू और किशमिश और जो है करी, रुआबजा, मलाई डाल के बनाते हैं। इससे स्वाद अच्छा आता है, बिक्री भी अच्छी होती है, काफी अच्छा बिकता है। एक जनपद एक व्यंजन योजना में जनपद कानपुर देहात में लस्सी को लिया गया है। इसके लिए हम योगी जी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की मलाईदार लस्सी ऐसी ही है, गर्मियों में खूब बिक्री होती है।
0: अब बात करते हैं कानपुर देहात के शुद्ध सरसों के तेल की, जिसकी खुशबू ही भूख आ देती है।
1: बिल्कुल, जैसे ही देसी कड़ाई में सरसों तेल गर्म होकर चटकता है ना, पूरा घर स्वाद और खुशबू से महक उठता है।
0: कानपुर देहात में सरसों, तिल और अन्य तिलहनी फसलों की पैमाने पर खेती होती है। पहले यह पारंपरिक कोलू में तेल निकाला जाता था, और आज आधुनिक मशीनों और क्वालिटी टेस्टिंग के जरिए यह तेल बड़े बाजारों में अपनी पहचान बन चुका है।
1: दोस्तों, यहाँ का सरसों तेल सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि सेहत का भी खजाना माना जाता है। इसमें प्राकृतिक गुण, ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं।
0: भारतीय रसोई में सरसों के तेल का अपना एक अलग ही महत्व है, चाहे अचार बनाना हो, देसी घी की तड़के वाली दाल, मसालेदार आलू की सब्जी या गर्मा गर्म पूड़ियाँ, सरसों के तेल हर स्वाद में जान डाल देता है।
1: और कानपुर देहात के कई छोटे उद्योग आज शुद्ध बिना मिलावट वाले सरसों तेल को नई पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बाजार में उतार रहे हैं।
0: अब सवाल ये है कि ODOC योजना में सरकार क्या क्या मदद दे रही है?
1: बहुत कुछ। सुनिए, छोटे दुकानदारों और कारीगरों को प्रशिक्षण, आधुनिक मशीनों की जानकारी, आकर्षक पैकेजिंग तकनीक, ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट, फूड फेस्टिवल और टूरिस्ट सर्किट में स्टॉल, आर्थिक सहायता और रोजगार की अवसर।
0: और खास बात, SAI, CFTRI और NIFTEM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की मदद से गुणवत्ता सुधार और फूड सेफ्टी पर भी काम होगा।
1: यानी कानपुर देहात का स्वाद अब सिर्फ देशी नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला बनने जा रहा है।
0: आज के युवाओं के लिए ये भी योजना किसी अवसर से कम नहीं है।
1: सही कहा, पैकेजिंग, मशीन ऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में नए रोजगार पैदा हो रहे हैं।
0: यानी गांव का युवा अब अपने जिले में ही काम करके अच्छी कमाई भी कर सकता है। योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजन योजना के तहत कानपुर देहात के खाद्य तेल और लस्सी उद्योग और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। उद्यमी और कारीगरों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिलाया जाएगा और उत्पादों की ब्रांडिंग वे पैकेजिंग को भी बेहतर बनाया जाएगा।
1: दोस्तों, जब किसी प्रदेश की मिट्टी, मेहनत और स्वाद को पहचान मिलती है ना, तो सिर्फ कारोबार नहीं बढ़ता
0: बल्कि उस क्षेत्र की संस्कृति, परंपरा और लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
1: योगी सरकार की ODOC योजना आज छोटे दुकानदारों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बन रही है।
0: और कानपुर देहात की कुल्हड़ वाली लस्सी और सरसों का तेल अब उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनने तैयार है।
1: इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत,
0: फिर मिलेंगे एक नए स्वाद और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हम दोनों की तरफ से नमस्कार। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। आप सुन रहे थे आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जल्द ही मिलेंगे श्रोताओं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंज वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम है RJ आनंद। एंड ऑफ कोर्स जब शाम होती है तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग या डिफरेंट तो होता ही है, क्योंकि मुरादाबाद की शाम हैपनिंग तब होती है जब हमारे साथ मुरादाबाद के लोकल वाला टैलेंट होता है। क्योंकि ये जो शो है वो हम बेसिकली लोकल फॉर वोकल को डेडिकेट करते हैं, और हम कहते हैं यार भाजी अगर आपके अंदर भी कोई अच्छा टैलेंट है, कुछ बढ़िया सी क्रिएटिविटी है, कुछ आप सुनते हैं, सुनाते हैं, कुछ लिखते हैं, या फिर कुछ आप बढ़िया परफॉर्म करते हैं, गाते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बेसिकली हम यहाँ पर किसी न किसी एक ऐसे पर्सन को लेकर आते हैं आपकी शाम को थोड़ा सा और भी औसम बनाते हैं। और आज की शाम को औसम नहीं भाई साहब, बहुत ही रंगीन और माहौल जो है खूबसूरत बनाने वाले हैं शाम का। कौन भैया मेरे साथ जो अखिल भाई बैठे हैं आज, आफ्टर लॉन्ग टाइम हम मिल रहे हैं। हाय अखिल भाई, क्या हाल चाल है?
5: तुमने बुलाया नहीं, लॉन्ग टाइम तो इसलिए हो गया ना।
4: अरे यार एक्चुअली मैं खुद ही नहीं आया, मेन बात तो ये है ना, आज बहुत टाइम के हम लोग आ रहे हैं। वेल अभी हाल चाल बताए, कंप्लेन छोड़े, कैसे हैं आप?
5: मैं बढ़िया हूँ। और इस बार ये बताओ तुमने समर वेकेशन अपनी कहाँ करी?
4: यार समर वेकेशन तो मत पूछो, स्टूडियो की एसी में बैठ के करिए भाई, यहाँ से अच्छी समर वेकेशन कहीं नहीं हो सकती। अखिल भैया बता रहा हूँ आपको,
5: तभी बार-बार कहते थे मुझसे कि मैं कभी रामनगर में हूँ भैया, कभी नैनीताल में हूँ।
4: हाँ वो तो खैर सच्चाई ज्यादा नहीं बतानी चाहिए, हमारे दोस्त बहुत समझदार है, उनको पता है मैं डेली इंस्टाग्राम पे पोस्ट कहाँ की डाल रहा हूँ कौन से नैनीताल की डाल रहा हूँ। सो वेल कैसे हालचाल, बढ़िया चल रहे हैं आपको देख के?
5: सब बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा
4: है, बहुत ही बढ़िया। चलो फिलहाल आज हमारे शो में एक बहुत ही अच्छे जो जिन्हें कह सकते हैं शायर, आज के जमाने के युवा वाले
5: युवा शायर
4: हमने बुलाया है। सो उनका वार्म वेलकम करेंगे। हाय ब्रो, वेलकम टू FM मुरादाबाद, कैसे हैं आप? हाउ आर यू?
6: हेलो, मेरा नाम ओम अग्रवाल है, मैं बढ़िया।
4: अच्छा ओम अग्रवाल आपका नाम है और आप बढ़िया हो, वो तो हमें भी लग रहा है देख के। आपको पहले ये बताओ ऑफिस में आके कैसा लग रहा है?
6: बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब सोचा नहीं था कि मुराद में ऐसा कुछ होगा।
4: वाओ वेरी नाइस, अब हो गया है, अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये हो रहा है क्यों अखिल भाई?
5: बिल्कुल सही कह रहे हो।
4: हाँ तो अब अभी अभी कैसा लग रहा है आपको?
6: थोड़ा नर्वसनेस
4: हो रही है, पहली बार बैठे हो। ओके अच्छा बताओ हम पहली बार कहाँ मिले थे, थोड़ा सा भाई से थोड़ा जानते हो, याद भी है या नहीं?
6: पहली बार मिले फर्स्ट ओपन माइक में जब मैं गया था कुछ खास, उसमें मिले थे हम।
4: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
6: उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था तो पता चला था कि हाँ रेडियो है मुरादाबाद में अभी भी।
4: अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जब आपको ये पता लगा तो फिर आपने सुनने की कभी ट्राई करी?
6: एक दो बार ट्राई करी थी।
4: अच्छा,
6: मैंने
4: अच्छा ओके, मतलब जब टाइम मिला।
6: हाँ जब टाइम मिला बिल्कुल।
4: वेरी नाइस। अच्छा तो ओम जी थोड़ा सा अपने बारे में बताओ हमारे लिसनर्स को, आप क्या करते हैं, कहाँ से है मुरादाबाद में?
6: मैं मुरादाबाद में एक्चुअली रीति मोहल्ले से बिलोंग करता हूँ, जो चमकपुल के पास है।
4: अच्छा भैया ओके, और क्या करते हैं वैसे प्रोफेशन?
6: प्रोफेशन में अभी मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ है।
4: वेरी नाइस यार, और आगे क्या करने का प्लान है?
6: आगे मेरा MBA करने का प्लान है।
4: अच्छा तो ये शेरो शायरी वाला प्लान कहाँ से आ गया?
6: ये शेरो शायरी वाला प्लान तो जब दिल टूटेगा तो आता ही है
5: यार। तो मतलब आजकल दिल ज्यादा टूट रहे हैं
4: यार, मैं वही पूछ रहा हूँ। मेरे स्टूडियो में जितने भी लोग आए हैं ना अभी तक, एक मैं ही हूँ जिसका दिल नहीं टूटा, बाकी सबके टूट गए हैं भाई।
5: तुमने दिल की सर्जरी करा रखी?
4: नहीं भैया मैंने दिल में हड्डी पाली नहीं थी, मेरे को पता है दिक्कत हो जाएगी। वेल यार एक बात बताओ, जो लोग शेरो शायरी करते हैं उनका दिल जरूरी होता है क्या टूटना, तभी उनके अंदर का शायर बाहर निकलता है?
6: नहीं,
4: फिर
6: शायरी तो मैं जब किसी के साथ था तो भी लिखता था।
4: अच्छा
6: मतलब दिल टूटना जरूरी होता है समाज को समझने के लिए।
4: ओ वाह अच्छा ऐसा भी है,
6: आपकी एक प्रोस्पेक्टिव बदल जाता है।
4: अच्छा
6: कि आप अगर किसी चीज को देख रहे हैं, आप जैसे मान लो देख रहे हैं दुकान पे देख रहे हैं तो आप सिर्फ दुकान को देखेंगे, वहां पर साइड में लोग जो बच्चे हैं भीख मांग रहे हैं उनको देखूंगा तो वो प्रोस्पेक्टिव पूरा चेंज हो जाता है।
4: ऑलराइट अखिल भाई, दिल तोड़ने वालों को बुलाओ, मुझे अपना दिल तोड़वाना है आज ही, मुझे भी ये पर्सपेक्टिव चेंज करना है भाई।
5: आनंद तुम तो वैसे भी सबके दिल ही जोड़ने में लगे रहते हो, यार कहां दिल तोड़ोगे?
4: ये बात तो बिल्कुल सही बोली आपने। तो आज ओम जी हमारे साथ हैं, क्या पूरा नाम बताया आपने?
6: ओम अग्रवाल।
4: ओम अग्रवाल जी मेरे साथ हैं, इधर अखिल अग्रवाल जी मेरे साथ हैं, मजा ही मजा आ रहा है आज। और वैसे ओम अग्रवाल जी अकेले नहीं आए हैं, मैं जब फर्स्ट टाइम उनको इवेंट में मिला था वहां अपने साथी को लेकर आए थे, और अभी भी वो अपने एक दोस्त को लेकर आए हैं।
6: हाँ मतलब दोस्त की जरूरत तो पड़ी जाती है।
4: अच्छा तो ये दोस्तों के बारे में थोड़ा सा मुझे पहले बताओ यार।
6: दोस्तों के बारे में क्या ही बता सकते हैं, मतलब मैं सोचता हूँ कि लोग मुझसे कहते हैं कि दोस्त के बारे में लिखो, क्या ही लिखूं, वो मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, मैं इम्पोर्टेंट हिस्से में लिखना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि उसको डिग्रेड नहीं कर सकता मैं।
4: ऑलराइट, मतलब आपको जो लगता है कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो उनकी स्पेशल कैटेगरी है, उनके बारे में शब्द ही कम पड़ जाएंगे शायद, है ना?
6: कोई शब्द ही नहीं है।
4: नाइस, वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया। और आज जो आपके साथ, आपका साथ देने आए हैं, इनका क्या नाम है?
6: इनका नाम अंतरिक्ष गुप्ता है।
4: अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये कब से आपके साथ है?
6: ये सेकंड क्लास आई थिंक, फिर बीच में चले गए थे वैसे बाहर, तो
4: अच्छा अच्छा। लेकिन दोस्ती में कोई ब्रेकअप नहीं हुआ ना?
6: दोस्ती में
4: कोई डिस्टेंस नहीं आया? बहुत बढ़िया। नहीं यार, आजकल दोस्ती भी जो है ना, लोग कहते हैं कि वक्त तो टाइम देख के होती है और वो पैसा देख के भी होती है।
5: मेरे को अपनी इन्हीं की बात पे एक बात याद आई, मेरे एक बहुत ही अच्छे फास्ट फ्रेंड है, अच्छा, राहुल जैन करके।
4: अरे वाह।
5: तो मैं नाइन्थ क्लास में था उस समय और हम दोनों के बीच में हल्की सी लड़ाई हो गई थी।
4: ऑलराइट।
5: तो हम लड़कों में तो ऐसी लड़ाई हो जाती है, हाँ भी तू चल, तुझे तो कल देख लूंगा। मतलब दोस्त भी अच्छी है कि दोस्ती हमारी इतनी अच्छी है कि बड़े प्यार से लड़ भी रहे हम दोनों। तो भाई वो मेरे लिए अगले दिन ग्रीटिंग कार्ड लेके आया, उस दिन ग्रीटिंग आर्चीज के गैलरी से स्पेशली। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा यार दोस्तों में कहाँ ग्रीटिंग कार्ड चलते हैं। ओ भाई मेरे लिए आई लव यू वाला, मतलब आई लव यू इन सेंस की हैप्पी ब्रदर्स, तो वो एक कार्ड लेके आया। तब मेरे को थोड़ा सा ये भी रियलाइज हुआ कि मैं जिस दोस्ती को जिस तरीके से ले रहा था उसके लिए वो दोस्ती का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग था। जैसे अभी गुप्ता जी ने
4: कहा, आजकल के लौंडे नहीं समझेंगे भाई, अगर आई लव यू हमने किसी को दे दिया तो आप समझ लो फिर कुछ और ही मामला होगा। तो मतलब वो वाली दोस्ती जेन्युइन वाली आज के टाइम में ना भाई ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम। क्यों, आपको क्या लगता है?
6: देखिए जैसे मैंने कहा था कि प्रोस्पेक्टिव बदल जाता है,
4: एब्सोल्युटली
6: इंसान सब अच्छे होते हैं,
4: करेक्ट,
6: तो ढूंढना होता है बस।
4: अच्छा, कुछ लोगों को ना अच्छे दोस्त मिल भी जाते हैं तो उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, ऐसा भी होता है।
6: देखो वैल्यू तो मैंने भी नहीं करी थी बहुत बार, बस सीखा हूं।
4: अरे वाह,
6: वैल्यू करनी चाहिए हर चीज की।
4: क्या बात है, वैसे आपको देख के नहीं लग रहा है कि आप वैल्यू करेंगे नहीं यार, आप मुझे लग रहा है झूठ बोल रहे हो यार आप।
6: नहीं, जब मैं किसी के साथ था तो फिर मैंने दूसरे दोस्तों की वैल्यू नहीं दी थी।
4: ओके।
6: तो मैंने उसे सीखा।
4: होता है ना जब नया नया बंदा आता है तो अबे तू कौन, कहाँ का दोस्त, कहाँ से आया है भाई, चल भाई तेरी मेरी हो गई खत्म। वो फिल्मी सीन हुआ है फिर आपकी लाइफ में तो।
6: हाँ, कह सकते हैं।
4: ऑलराइट। अच्छा, ये जो ओम जी हैं बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, ओम अग्रवाल जी, इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इनके टूटे दिल का राज क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, आपको बोरिंग नहीं करेंगे, जो कॉन्वर्सेशन है वो डेफिनेटली एंटरटेनिंग भी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी होगी और कुछ शेरो शायरी भी होगी यार आज की शाम। सो रुकते हैं म्यूजिकल ब्रेक के लिए, वी कम बैक, डोंट गो एनीवेयर, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे आनंद। आज की शाम को थोड़ा सा झकास और फर्स्ट क्लास अरे मैं एंड साथ में अकील अग्रवाल जी हैं, ओम अग्रवाल जी सामने बैठे हैं, उनके फ्रेंड भी मेरे सामने बैठे हैं जो बोल नहीं रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमने उनसे बोलने का बिल्कुल पैसा नहीं लिया है इसलिए वो चुप ही बैठेंगे फिलहाल। अकील जी आप बताएं, मजा आ रहा है भैया से बातचीत करके? आज अग्रवाल से अग्रवाल जी कनेक्ट हो रहे हैं,
1: मजा तो आ रहा है। और आनंद जैसे
0: कि आमने सामने टकरा रहे हैं, देखो इधर से उधर आमने सामने बैठे हैं,
1: बिल्कुल सही। मतलब हम इसमें टकराना नहीं कहते, इसे तो एक मोहब्बत ही है, भी है इसे टकरा। तुम
0: यहाँ ग्रीटिंग कार्ड वाली मोहब्बत अभी भी आ रही है अखिल भाई की?
1: दोनों बनिया सामने हैं, आमने सामने।
0: अच्छा, बनिया अग्रवाल को कहते हैं? एक मेरी भी दोस्त है, वही बनिया है, फिर समझ गया मैं।
1: जैसे श्रोताओं मैं हमेशा हर बार आनंद के दिल की बात बोलता हूँ ना, वैसी ये बात दिल के आनंद से निकल के आ रही है, बस अल्फाज मेरे हैं।
0: ये हमेशा अपनी शायरियों में ना मेरी कुछ चपले पढ़वाते हैं, गाइस प्लीज ध्यान से सुनना इनकी शायरी जरा। हाँ प्लीज भैया।
1: प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए,
0: वाह।
1: प्यार वो है जो दिल से निभाया जाए,
0: क्या बात है।
1: अपना कहने से कोई अपना नहीं होता,
0: वेरी नाइस।
1: अपना है जिसे दिल से अपनाया जाए,
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जरूर हम आपको दिल से अपनाएंगे, लेकिन दो दिन के बाद भैया आपके पास वापस आएंगे। आप प्लीज कुछ बताएं, जरा कुछ सुनाएं यार, क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत एक अच्छी तरीके से होती है तो मजा आ जाता है ना।
2: तो जैसे कि अभी मोहब्बत मोहब्बत की बात चल रही है आपकी, तो एक मोहब्बत के ऊपर पढ़ना चाहूंगा मैं।
0: बिल्कुल यार बिल्कुल।
2: मैं हर रोज तुम्हें उसी तरह देखता हूँ,
0: वाह।
2: मैं हर रोज तुम्हें उसी तरह देखता हूँ जिस तरह हर रोज तुम मुझे देखा करती हो,
0: वाह जी वाह।
2: तुम्हारे हाथों की नरमी को महसूस करना अच्छा लगता है, तुम्हारे हाथों की नरमी को महसूस करना अच्छा लगता है जब भी तुम मेरे हाथों को कसके पकड़ा करती हो,
0: वाह।
2: तुम्हारे बिना मेरा आसमान फीका लगता है। तुम मेरा चांद हो, मेरी आंखों को रोशन करती हो। तुम मेरा चांद हो, मेरी आंखों को रोशन करती हो। मैं महसूस करता हूँ तुम्हारे दिल की धड़कन, मैं महसूस करता हूँ तुम्हारे दिल की धड़कन जब भी तुम मेरे सीने से आकर लगा करती हो। यूं तो महकाने में लोग हो जाते हैं मधोश, यूं तो महकाने में लोग हो जाते हैं मधोश, तुम तो अपनी आंखों से मुझे पिलाया करती हो, तुम तो अपनी आंखों से मुझे पिलाया करती हो।
0: वेरी नाइस सर, बहुत ही बढ़िया, ट्रू, क्या बात है, शानदार। शुरुआत ही बहुत ही अच्छी हो गई है। खैर आगे बढ़ते हैं, ये मुझे आपसे पूछना है, ये आप खुद से लिखते हैं या फिर आपको कैसे आती है थॉट्स?
2: खुद से लिखता हूँ, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं।
0: अरे
2: तो लिखना आ गया।
0: आपके फेवरेट शायर कोई जिनको आप याद, यू नो आज भी?
2: मेरा फर्स्ट मैंने शेर सुना था,
0: हाँ।
2: एक मतलब मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था,
0: हाँ।
2: उसमें एक जाकिर खान के पॉडकास्ट में उन्होंने, पॉडकास्ट नहीं था, एक रिक्ता में गए थे, तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था कि दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो।
0: वाह,
2: तो मैं बड़ा फैसिनेट हुआ उस चीज से, तो मैंने पढ़ना चालू करा जॉन एलिया को। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट शायर तो नहीं, बेस्ट कहूंगा मतलब डिग्रेड नहीं करना किसी और को, बस मेरे को पसंद है वो।
0: क्या बात है, मतलब टच कर गई उनकी बात है
2: जी,
0: जो आपके दिल में इस तरीके से लगी कि फिर आपको मजा आ गया पढ़ने में, बहुत बढ़िया। और मैं सच बताऊं तो भाई, जब तक आपको किसी चीज से लगाव ना हो ना, तब तक आप अपनी 100% नहीं दे पाओगे
2: जी।
0: तो आपका 100% देने के लिए आपका लगाव होना बहुत जरूरी है ना, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा अब आप मतलब आपको कब टाइम मिलता है ज्यादातर, जब आप सोचते हो यार कि आज मुझे कुछ बढ़िया लिखना चाहिए या फिर आज ये मैंने बहुत बढ़िया लिखा?
2: मैं सोचता हूँ मैंने कभी बढ़िया लिखा ही नहीं अभी।
0: अच्छा,
2: वो एंड में ही लिखा जाएगा, मतलब हर रोज सोचता हूँ कि अपडेट करना है अपने आप को। तो मेरे को कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि अभी लिखना है बैठ के, कुछ भी ख्याल आ जाते हैं, किसी को देख के ख्याल आ गया, किसी की बातें सुन के ख्याल आ गया, या कोई रील चला ली, रील पे देख के कुछ ख्याल आ गया। तो एक ख्याल आना शायर के लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बात है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अभी आप जो आपकी बहुत दिल के करीब हैं, कुछ शायरीज जो आप चाहते हैं कि वो हमारे लिसनर्स तक पहुंचे, जिनको आप अक्सर लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, या जैसे आप कुछ खास में भी गए, आपने वहां पर भी कुछ खास सुनाया, तो ऐसे कुछ खास यहाँ पर भी सुना दो यार, कुछ बढ़िया सा एक और।
2: देखो मैंने जो भी लिखा है अब तक सब खास ही है, क्योंकि मैंने जिस शख्स से लिखे हैं उस शख्स के लिए मेरे से बेहतर कोई और लिख ही नहीं सकता।
0: वेरी नाइस यार।
2: तो मतलब मेरे को लगता है कि आजकल के शायर जो आते हैं कहते हैं मैंने अच्छा लिखना चालू नहीं करा, अभी लिखा है शुरू में, मेरे को लगता है वो वहाँ थोड़ा लैग करते हैं मोहब्बत में यार। तुमने अपनी मोहब्बत के लिए लिखी है, सबसे अच्छी चीज लिखी है। तो मैंने ये चीज लिखा है कि दूसरी जब मोहब्बत मेरे को होगी, तो दूसरी मोहब्बत जब आ रही होगी मेरे पास, उसके लिए मैंने लिखा है जब करीब विसाले मोहब्बत का सफर आ रहा होगा, जब करीब विसाले मोहब्बत का सफर आ रहा होगा, तू उस वक्त मुझे आईने में नजर आ रहा होगा, तू उस वक्त मुझे आईने में नजर आ रहा होगा। पहले खबर जो होती तो संभाल भी लेता खुद को, पहले खबर जो होती तो संभाल भी लेता खुद को, यकीन ही नहीं था तू मेरे शहर आ रहा होगा। काफी अरसों बाद मैं मुस्कुराया कुछ सोच कर, शायद धीरे धीरे तेरा मुझ पे असर आ रहा होगा।
0: क्या बात है।
2: ढक दिया तुमने दुपट्टा सर पर और मुझे लगा, ढक दिया तुमने दुपट्टा सर पर और मुझे लगा, सूरज की रोशनी से बचाने सजर आ रहा होगा।
0: क्या बात है।
2: सूरज की रोशनी से बचाने सजर आ रहा होगा। मुझे देखकर तुम इतना मुस्कुरा क्यों देते हो ओम, मुझे देखकर तुम इतना मुस्कुरा क्यों देते हो ओम, लगता है फिर से तुम्हें मोहब्बत का हुनर आ रहा होगा, लगता है फिर से तुम्हें मोहब्बत का हुनर आ रहा होगा।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: मुझे लग रहा है स्टूडियो से जाते जाते कोई ना कोई हुनर मिल ही जाएगा
0: यार। मुझे भी लग रहा है, इन्हें नहीं हमें जरूर मिलेगा। पर अच्छा यार, एक बात मैं जो पूछना चाह रहा हूँ आपसे ओम भाई, वो ये है कि जब आदमी प्यार करता है तब उसे ज्यादा थॉट्स आते हैं, जब उसका दिल टूटता है तब ज्यादा अच्छे आते हैं।
2: देखो वही कहता ना, जब कोई चला जाता है उसकी हिम्मत ज्यादा होती है तो समझ में आता है कि हाँ यार।
0: लेकिन यार तो सोचा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इस पार वाले को समझ आती है, उस पार वाले को भी डेफिनेटली आती होगी ना। फिर तो
2: वो अहमियत नहीं दे पाते फिर।
0: ओके, मतलब वो इतना आगे बढ़ चुके होते हैं।
1: तो ओम जी, उम्मीद है आपसे कि ये अहमियत जो एहसास है, जब जब ये एहसास निकलेगा इसका मतलब हमें ये लगे कि कहीं ना कहीं ओम भाई का दिल टूटा दोबारा। मतलब ऐसा तो नहीं है कहीं आनंद जी, जब जब ये ओम जी आपसे स्टूडियो में टकराया था इसका हर बार इनका ब्रेकअप ही हुआ।
0: नहीं यार, ऐसा तो नहीं होगा। खैर नहीं ऐसा तो नहीं होगा, मुझे लग तो नहीं रहा है यार। खैर बहुत ही बढ़िया, लेकिन बहुत उम्दा आपने लिखे अभी तक जो भी आपने सुना है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक चीज मैं पूछना चाहूंगा ओम जी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आजकल तो आप देख रहे हैं कि प्यार प्यार तो प्यार है ही, लेकिन प्यार को इतना ज्यादा लोगों ने आजकल ऐसा बना दिया फैशन, है ना। प्यार प्यार की तरह रहा नहीं है। अखिल भाई से मैं अखिल भाई आपको बताऊंगा, आपके टाइम में तो अलग ही प्यार होते होंगे।
1: मतलब मैं क्या कोई बहुत पुराना मॉडल हूं?
0: आप अभी इस टाइम पे आपको देख के तो लग रहा है बहुत, हमारे से तो बहुत पुराने मॉडल, नो डाउट यार। सबको पता है। तो मतलब आजकल की जिंदगी का प्यार थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। वो आजकल व्हाट्सएप वाला इंस्टाग्राम वाला प्यार हो गया है, तो उसपे दो मिनट में वो वाली आईडी आ जाती है जो तुम्हें इंप्रेस करेगी, दो मिनट में ऐसी आती है तुम्हें ब्लॉक करेगी। तो मुझे समझ नहीं आता उसके ऊपर कुछ है भैया आपके पास, ये जो आजकल के जमाने का प्यार है। एक्चुअली दिस इज लो, मुझे लगता है अट्रैक्शन, इट्स नॉट अ लव यार।
2: अट्रैक्शन कह सकते हो, पर वो एक हवस की तरफ जाता है चीज है।
0: करेक्ट, बिल्कुल मुझे भी ऐसे ही लगता है। मतलब एक जिसे कह सकते एकदम रियल वाला प्यार जो एक होता होना चाहिए वो अब है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। या अभी भी है, जिंदा
2: जिंदा है तभी तो हम जितना है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन जो आप जैसे लोग हैं फिर वो अपनी दिल की शायरियों के माध्यम से अपने प्यार का इजहार करते हैं, बयां करते हैं, मतलब अपनी कलम और अपनी कॉपी से ना। कुछ है तो बढ़िया सा और सुना दो यार एक, और फिर ब्रेक पे चलेंगे गाइस, म्यूजिकल ब्रेक पे।
2: आपने जैसा सुना होगा कि मतलब मेरे को लगता है ऐसा कि मैं दूसरी मोहब्बत करूंगा किसी से। आप मान लो कि मैं आप किसी और से मोहब्बत कर रहा हूँ तो मैं उसे पूरी तरह एक इंडल्ज नहीं हो पाऊंगा।
0: ठीक है,
2: उसको जो फीलिंग आएगी जो वो मेरे को देगा अपने, उसको मैंने लिखा है।
0: अरे वाह।
2: तुम क्यों इतना ज्यादा उदास बैठे हो, तुम मुझे अपनी मोहब्बत कहते हो।
0: वाह।
2: मैं हाथ पकड़ लेती हूँ तुम्हारा, मैं हाथ पकड़ लेती हूँ तुम्हारा हर वक्त, तुम फिर भी मुझसे इतना डरे रहते हो। मुझे मालूम है मैं पहली मोहब्बत नहीं, तुम ये मुझे बताने से क्यों घबराते हो। मेरी आंखें तुम्हें समुंदर सी लगती हैं, मेरी आंखें तुम्हें समुंदर सी लगती हैं, तो फिर तुम इसमें डूबने से क्यों डरा करते हो। मैं तुम्हारे दिले जमीन का हिस्सा हूं ओम, तुम इस पे हक जताने में भी सोचा

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
6: हेलो जी, कैसे हाल चाल है, आप सुन रहे हैं

0: के बाद स्वागत अभिनंदन आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, साथ में अखिल जी भी हमारे साथ दे रहे हैं और ओम अग्रवाल सामने बैठे हैं जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन शेरो शायरी पेश कर रहे हैं आज अपनी आवाज में। बहुत अच्छा लिखकर लेकर आए हैं। अखिल जी आपको मजा आ रहा है यानी ये बताओ पहले।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है और मैं तो यही कहूंगा मजे मजे में। तेरे इश्क ने हमें कुछ इस कदर मशहूर कर दिया,
0: वाह जी वाह,
1: हर खुशी से ज्यादा तेरे गम को मंजूर कर लिया।
0: वेरी नाइस।
1: लोग कहते हैं मोहब्बत में दर्द मिलता है, हमने दर्द को ही अपना सरूर बना लिया।
0: क्या बात वाँ है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, मजा आ गया जी। अखिल जी की शेर व शायरी भी चलती रहेगी दोस्तों, फिलहाल हम ओम जी की तरफ चलेंगे, वो कुछ सुनाने वाले हैं जिसे सुन के शायद आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाए जी। ओम जी,
2: गजल ये है कि जगह जगह इश्क के बीमार बैठे हैं।
0: वाह।
2: जगह जगह इश्क के बीमार बैठे हैं, हम भी उसी जगह गिरफ्तार बैठे हैं। लोग पूछने आए थे मेरे मौत की वजह, लोग पूछने आए थे मेरे मौत की मजा, घर वाले उसकी तस्वीर लेकर तैयार बैठे हैं। घर वाले
0: तो
2: भाई तस्वीर लेकर तैयार बैठे हैं।
1: ठीक, कैसी तस्वीर कैसी थी ओम जी, कुछ तो बताएं तस्वीर के बारे में ही बताएं कुछ।
0: उनको खुद नहीं पता ना यार, उनको पता होता है वो बता नहीं देते यार, आप भी तो पीछे पड़ रहे हो यार।
1: आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, तस्वीर कौन ले रहा है, आजकल तो मोबाइल से ही दिखा देते हैं, बायोडेटा भी मोबाइल पे आ रहा है।
0: आजकल मोबाइल पे फेक भी आ रही है, ये भी ध्यान रखना होती कोई और है भेजता कुछ और लोग है ना, रियलिटी बातें पता लगती है। इसीलिए ऑनलाइन पे भरोसा ना करें, जो आपके सामने प्रस्तुति दे उस पर ही भरोसा करें।
1: तो आनंद जी कहना चाह रहे हैं कि मैं शादी.com से नहीं, मैं अपनी जो वो होते हैं ना लोकल इन्फॉर्मेशन वाले .com उनके जरिए ही आगे का काम करूँ।
0: हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, मैं आज जैसे .com पे बिलीव करता हूँ, मैं शादी.com पे बिलीव नहीं करता अखिल जी, सच बात तो यह है, क्योंकि जो जो इन्फॉर्मेशन आप लोग अच्छी और जेन्युइन दे सकते हैं वो ये .com नहीं दे सकते। वैसे सच बताऊँ तो यार हमें किसी की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, सारी चीजें अपनी जगह पे बहुत ही सही है, जहाँ जिसका काम बने वो बेस्ट है ना, मेरा ऐसा मानना है। तो अपने अपने ट्रस्ट की बात है, बाकी सब बढ़िया है।
1: कुछ ओम जी इसी से मिलता सुनाइए।
0: बिल्कुल, मैं भी ये चाहूंगा, बैक टू पॉइंट।
2: आगे का शेर भी है वैसे।
0: हाँ जी प्लीज बताएं।
2: पढ़ना चाहूंगा कि
0: श्योर,
2: देखो कहाँ तक लेकर जाता है अदाकारी का हुनर।
0: वाह।
2: देखो कहाँ तक लेकर जाता है अदाकारी का हुनर।
0: क्या बात है।
2: कोई शख्स नहीं यहाँ महफिलों में, सब किरदार बैठे हैं।
0: अरे
1: क्या बात है।
2: कोई शख्स नहीं यहाँ महफिलों में, सब किरदार बैठे हैं, जो हुआ करते थे चिरागों की रोशनी, जो हुआ करते थे चिरागों की रोशनी, देखो वो लोग आज कितने बेजार गए हैं।
1: बहुत खूब बहुत खूब।
2: उसको कहाँ ढूंढना पड़ा कोई और शख्स मेरे जैसा। उसको कहाँ ढूंढना पड़ा कोई और शख्स मेरे जैसा, मोहल्ले मोहल्ले में बहुत से दिलदार बैठे हैं, मोहल्ले मोहल्ले में बहुत से दिलदार बैठे हैं।
1: वाह।
2: ओम क्या फिर नहीं देखा, ओम क्या फिर नहीं देखा लौटकर उसका हसीन दामन, ओम क्या फिर नहीं देखा लौटकर उसका हसीन दामन, तेरे जैसे आशिक भी क्या इतने खुददार बैठे हैं, तेरे जैसे आशिक भी क्या इतने खुददार बैठे हैं।
1: ओम जी आप हर शायरी में अपने आप को जरूर
0: नया
1: इंट्रोड्यूस कर देते हैं और ये एक अच्छी बात है,
0: मतलब अपने नाम को जो तुमने ऐड किया ना यार, ये एक अलग ही क्रिएटिविटी है।
1: और
0: मतलब ऐसा लग रहा है कि सारी शायरी तुमने खुद के लिए बना डाली, अगर उसमें मैं और अखिल भाई अपने आप को ढूंढेंगे तो ढूंढ के भी नहीं ढूंढ पाएंगे, भूल जाएंगे हम तो यार।
1: तो ये तो खोने वाली बातें थी इनकी। अच्छा एक बात बताइए ओम, मतलब मुझे नहीं पता श्रोता जानना चाहते नहीं जानना चाहते, मगर मैं और आनंद जी तो बहुत ही अच्छे से जानना चाहते हैं
0: डेफिनेटली,
1: कि आपको ये समय कैसे निकालते हैं, क्या मतलब होता है ना कि पूरे दिन आप भी अपनी पढ़ाई में बिजी, अपने काम में बिजी हैं, तो एक पर्टिकुलर आपने टाइम निकालते हैं शायरी को लिखने के लिए, या कुछ मोमेंट होते हैं आपकी लाइफ में, और जैसे ही वो कुछ मोमेंट आपके साथ होते हैं तभी आप उस पर कुछ लिखते हैं तरुण?
2: नहीं ऐसा जनरली नहीं होता है, कि हमेशा याद आती रहती है थोड़ी थोड़ी। तो जैसे कि आप वैसे भी जानते हैं कि लोग आजकल मोहब्बत में जाते हैं, फोन पे टाइम निकाल ही लेते हैं बात करने का, तो मेरे लिए शायरी मेरी मोहब्बत है तो मैं उसके लिए टाइम निकाल ही लेता।
0: दैट्स वेरी नाइस। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको जिस चीज से मोहब्बत होती है ना, जिस चीज के लिए आप डेडिकेटेड होते हो, वो टाइम फिर ऑटोमेटिकली निकल जाता है। वो आपके ब्रेन को ऑलरेडी हिट करता है कि नहीं भाई तुझे ये चीज करनी है ना, वो वाली चीज है। बट वो ये कि जिस चीज से आपको मोहब्बत होगी उसके लिए ऑटोमेटिकली समय निकल जाएगा। अखिल भाई आपको मोहब्बत है रेडियो और माइक से, तो आप समय निकाल के आ ही जाते हैं।
1: मैं तो निकाल ही लेता हूं।
0: बस वही वाली बात है, जिस चीज से जिसको प्यार होगा वो समय निकाल ही लेगा। अच्छा यार एक बात बताओ, ये किसी को जब नया नया प्यार होता है उसमें बहुत सारी शेर व शायरी होती है, जब आपको पहली पहली बार प्यार हुआ होगा तो कुछ ना कुछ तो आपने भी चिपकाया ही होगा, हर बंदा चिपकाता है यार, क्यों अखिल भाई? कुछ ना कुछ तो बढ़िया सा कि तुम्हारे बाल सुंदर है, तुम्हारे गाल सुंदर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ यार। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ आप नहीं चाहते हैं, तो कुछ अगर ओम जी आपके पास इससे रिलेटेड हो, सपोज किसी को आज नया नया प्यार हुआ हो और वो रेडियो सुन रहा हो,
1: आज आनंद जो है ओम जी आपसे इंडिया में टिप्स ले रहे हैं, तो यार टिप्स बिल्कुल एकदम बढ़िया वाली देना है।
0: हाँ, अब अखिल भाई पे तो ट्रस्ट थोड़ा कम है, उनकी टिप्स तो फेल होते हैं, तो मैंने सोचा आपसे ले लूं भाई।
2: ढूंढना पड़ता है इसके लिए थोड़ा।
0: अच्छा कोई बात नहीं, जब तक अखिल भाई आप ढूंढी ढूंढाई सुना दो यार, आपके पास तो डेफिनेटली होंगे।
2: मिल गया है वैसे।
0: अच्छा
1: ढूंढ लिया है,
2: मिल भी गया,
0: क्या बात है, मेरा लक अच्छा है फिर आज। प्लीज भैया,
2: शुरू शुरू में जब प्यार होता है ना,
0: हाँ जी,
2: तो बहुत सारे ख्याल आते हैं यार, ये खूबसूरत है, वो खूबसूरत है, वो ये कर रही है मेरे लिए, वो कर रही है, तो मैंने उसके लिए लिखा है, अपनी आंखों से मेरी खुशियों की वो इबादत करती रही।
0: वाह,
2: अपनी आंखों से मेरी खुशियों की वो इबादत करती रही, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ वो मोहब्बत पढ़ती रही।
0: क्या बात है,
2: मैं अपना नाम लिख रहा हूँ वो मोहब्बत पढ़ती रही, पढ़कर उसने मेरा नाम अपने हाथों की लकीरों पे, वो हाथ पकड़ लेते हैं, लकीरें देखने शुरू कर देती है, अपना नाम ढूंढती है, वो पढ़कर उसने मेरा नाम अपने हाथों की लकीरों पे, फिर वो मेरे हाथों की लकीरों से मुलाकात करती रही, फिर वो अपने मेरे हाथों की लकीरों से मुलाकात करती रही, वो एक दिन मेरे करीब आकर बैठी और मुस्कुराई, वो एक दिन मेरे करीब आकर बैठी और मुस्कुराई, देखता गया मैं उसको और वो मेरी चाहत बनती रही।
0: अरे वाह,
2: देखता रह गया मैं उसको और वो मेरी चाहत बनती रही, आंखें बंद करने को बोली जब पहली दफा उसने, ये सच में हुआ था।
0: अच्छा,
2: आंखें बंद करने को बोली जब उसने पहली दफा, गालों को चूम लिया उसने और दिल में बगावत होती रही।
0: क्या बात है, क्या बात है,
2: गालों को चूम लिया उसने और दिल में बगावत होती रही। और एक हम थॉट सोचते हैं यार ब्रेकअप हो गया तो उससे कहते भी हैं तो उस बात पर गुस्सा हो जाती है, तो उसके बारे में एक शेर है, फुरकत की बात मत किया करो ओम, फुरकत की बात मत किया करो ओम, मेरे हाथों पर उंगली, मेरे होठों पर उंगली रखकर वो शिकायत करती रही, मेरे होठों पर उंगली रखकर वो शिकायत करती रही, चुप करा देती है।
0: क्या बात है, क्या बात है,
1: ये तो है, ये
0: एक
1: तो
0: पल में प्यार हो रहा है, वहीं दूसरे पल में शिकायतें भी हो
1: ये
0: रही है।
1: अभी भी चुप करा देंगी और बाद में जब शादी हो जाएगी तो बिल्कुल ही बढ़ जाएगी।
0: ये बात तो आपने सही,
1: ओम जी जो है बिल्कुल सही पकड़े हैं, सही राह पे चल रहे हैं, इनकी शायरी से पूरा दर्द सबको समझ में आ रहा है कि कहाँ चुप रहना और कहाँ बोलना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और इनकी शायरी में जो बगावत एक शब्द आया मुझे, उससे धर्मेंद्र जी की पिक्चर याद आ गई, बगावत। अरे फिल्म देखी थी, बहुत ही कमाल की।
1: आप मुझे बचला भी वर्ड कहाँ से पकड़ लेते।
0: तो ठीक है, एक काम करते हैं, अभी एक गाना सुनते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। इनको पहली पहली बार प्यार हुआ तो उन्होंने पहली बार पे एक पहली अच्छी शायरी सुनाई, मतलब जब पहली बार प्यार होता है तो उससे रिलेटेड एक प्यारा सा लव सॉन्ग। उसके बाद मिलते हैं मैं अखिल जी और साथ में हमारे ओम अग्रवाल जी। सो आप कहीं में जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन. यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6. बंदे का नाम आनंद है एंड ऑफ कोर्स आपकी शाम को हम बहुत ही फैबुलस बना रहे हैं. हमारे साथ अखिल भाई हैं आज की इवनिंग में. ओम अग्रवाल जी बैठे हुए हैं जो अपने प्यार की चिट्ठी पूरी लेकर आए हैं लिख के. इतनी बड़ी मतलब भारी भरकम डायरी वो लेकर आए हैं और एक नहीं दो तीन डायरी लेकर आए हैं लेकिन सुना वो एक में से रहे हैं. ये मजे की बात है. लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी डायरी क्या फिर नेक्स्ट टाइम आने का प्लान कर रहे हो?
1: बाकी का फिल्टर है.
0: फिल्टर है ये.
2: कई सारी डायरीज में जो इम्पोर्टेंट डायरी है वो तुम्हारे सामने आज.
0: अच्छा ओके. वेल कोई बात नहीं. अरे हम तो कहेंगे जो भी आप सुनाते दिल से हमारे लिए तो वही बढ़िया है.
2: आज ये टिप्स ना बढ़िया वाली देना. आज ये बिल्कुल एकदम बैठे हुए हैं स्टूडियो से बाहर निकलते राह चलते ये भी अपने कोई ना कोई नगमा ढूंढ ही लेंगे.
0: नहीं भाई नगमा नहीं ढूंढना मुझे तरन्नुम ढूंढना है.
1: अरे
0: ढूंढनी है सॉरी गड़बड़ हो गया है सॉरी. वेल कोई बात नहीं. इस बहाने से आप लोग के चेहरे पे हंसी तो आई ना. मेरा मेन मोटिव यही होता है मेरा मेन टिप ही होता है दोस्तों कि आप हंसे मुस्कुराएं और ऐसे ही इस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय करें. बैक टू पॉइंट अखिल भाई जब तक कुछ बढ़िया निकालेंगे तब तक हम ओम जी से कुछ बढ़िया सुनते हैं. जी ओम जी.
1: अरे आपको कभी जैसे मोहब्बत नहीं हुई शायद अभी?
0: नहीं यार बिल्कुल मुझे कभी मोहब्बत हुई नहीं है. हुई है तो सिर्फ अपने काम से हुई है और इसके लिए मैं जितना सोचूं जितना लिखूं वो कम है.
1: उससे तो होनी भी चाहिए. जैसे कि आप मोहब्बत मुकम्मल होती है.
0: हाँ, तो
1: उसकी खुशी होती है.
0: करेक्ट.
1: तो मैंने एक रील देखी थी कि वो एक लड़का अपनी होने वाली वाइफ को सिंदूर लगा रहा था. तो उसने अपने ससुर जी से कह दिया कि मेरी घड़ी का वक्त रुक दो उस घड़ी को संभाल के रखूंगा. तो मैंने उसके लिए लिखी थी एक रुक जाता है वक्त रुक जाता है वक्त
2: ले लेंगे लाइन.
1: रुक जाता है वक्त जब भी तुम्हें देखा है मैंने. आसमान में अब चांद नहीं आईना देखा है मैंने.
0: वाह.
1: यूं तो तुमने भी निभा लिया ऐदे मोहब्बत मोहब्बत का वादा. यूं तो तुमने भी निभा लिया ऐदे मोहब्बत मांग भर के तो भी वक्त भी रोक दिया है मैंने.
2: क्या बात है.
1: कभी तो लगता है मैं ही कभी तो लगता है मैं ही खड़ा हूं सामने. कभी तो खुद में ही तुम्हें देखा है मैंने. लगता है बहुत अमीर हो चुका हूं मैं. शायद तेरे हाथ को ही थाम लिया है मैंने. ओम तुझे हो गई है मोहब्बत शायद. ये खुद से कई कई बार कहा है मैंने.
0: वाह.
1: ये खुद से कई कई बार कह दिया है मैंने.
0: बहुत ही बढ़िया. तो कितनी बार कहा है आपने खुद से?
1: अभी तो नहीं
0: की बात तो पूछ ली जरा मैं. क्यों भाई
2: नहीं,
0: ये शायरी है ये सच्चे दिल की बात है या हमसे छुपाया जा रहा है?
1: अरे अभी तो नहीं है कोई.
0: अच्छा अच्छा. अभी मतलब सिर्फ जितना भी हमारी शेरो शायरी तक ही सीमित है.
1: हाँ शेरो शायरी तक ही सीमित है. एक इमेजिनेशन होती है. हाँ.
0: बहुत जरूरी है. तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए क्या कोई बढ़िया सी तुमने लिखी है जो फ्यूचर में तुम्हारे आने वाली होगी तो कैसी होगी उसके लिए बढ़िया सा?
1: उसके लिए अभी लिख नहीं पाया क्योंकि मैं अब उस चीज में इतना सोचता नहीं हूँ.
0: ओके.
1: डर लगता है उससे.
0: डर लगता है बहुत.
2: अच्छा जी जो बीच बीच में शायरी में ओम जी आ जाते हैं हमारे.
0: हाँ.
2: तो अगर उन ओम जी को कभी फेसबुक या इंस्टाग्राम में अगर उनकी शायरी पढ़नी चाहे देखनी चाहे तो आप कैसे कांटेक्ट किया जाए उसमें?
1: मेरे एक पेज है दिल ए स्याही नाम से.
2: दिल है
1: दिल ए स्याही.
2: दिल ए स्याही. तो उस पेज को
1: फॉलो कर सकते हैं.
2: फॉलो कर सकते
1: हैं.
2: तो आनंद जी तो अभी फॉलो कर लेंगे.
0: नहीं हमने कर रखा है तभी वो यहाँ बैठे हैं. अगर हम फॉलो नहीं करते तो वो यहाँ नहीं बैठे होते. सच्चाई यही है. क्यों ओम जी?
1: जी जी.
0: हम एक दूसरे की एक्टिविटी देखते रहते हैं. बहुत जरूरी है. उससे पता चलता रहता है कि कौन कितना क्रिएटिव है.
2: एक दिन नगमे जो है पकड़े जा रहे हैं.
0: करेक्ट. हाँ. कह सकते हैं आप नहीं डालते हो ना इसलिए आपका नगमा पीछे रखा हुआ है. आप भी पोस्ट करना शुरू करो. अच्छा भैया एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था कि जो जैसे होता है ना कि कई बार हर इंसान को हर चीज पसंद आए जरूरी नहीं होता है ना. आप जो शेर व शायरी कर रहे हो वो आपको पसंद है वो आपका क्राइटेरिया है क्योंकि आप उस चीज को बहुत तवज्जो देते हैं. लेकिन आपके जो यार दोस्त हैं उनको तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पसंद नहीं होती लेकिन वो फिर भी वाह वाह करते हैं. उसके पीछे का रीजन क्या है?
1: ऐसा नहीं है. इन लोगों का भी दिल टूटा है.
0: अच्छा. ओ,
2: जो आपके साथ आपके दोस्त आए हुए हैं जो आपके साथ ही चलते हैं
0: उनका भी दिल
2: टूटा है. उनका नजरिया भी हम जानना चाहेंगे कि कभी जैसे ओम ने कुछ लिखा है या कुछ. हाँ, भी कोई बात. हाँ, हाँ. तो कहीं क्लिक करता है आपके मन में या माइंड में यार
0: थोड़ा ये... सा पहले अपने बारे में बता दो यार अखिल भाई मैं पूछना चाहूंगा. हाँ, इनके बारे में थोड़ा सा आप बोलो कुछ.
3: मेरा नाम अंतरिक्ष है और मैं ओम को.
0: अंतरिक्ष
3: जी
0: जो आसमान में जाते हैं यहाँ पे साइंटिस्ट भी जाते हैं शायद वहाँ पे अंतरिक्ष.
2: आज आप पूरा यूनिवर्स साथ में.
0: अरे वाह. मैं पहली बार मिल रहा हूँ सर. हेलो कैसे हो आप?
3: मैं
0: पूरे अंतरिक्ष को देख पा रहा हूँ आपके अंदर. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. वेरी नाइस. हाँ मैं भी बढ़िया हूँ. आपको कैसा लग रहा है ये बताइए यहाँ के.
3: मेरे लिए एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है. मैंने मुरादाबाद में कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं किसी स्टूडियो में बैठ के ऐसे एक पॉडकास्ट सेटअप में बातें कर रहा हूँ
0: क्या बात है? अरे वाह,
3: तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया फीलिंग है.
0: अमेजिंग, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से बोल पा रहे हैं. ये भी अच्छी फीलिंग है कि चलो अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई नहीं बोल पाता है ना, ये वाली बात है.
3: बोलने में तो बहुत ज्यादा माहिर हूँ.
0: अरे वाह क्या बात है.
3: मैंने बहुत सारे शोज भी करे गाने के, तो एक्सपीरियंस यहाँ पे एक स्टूडियो में बैठ के फर्स्ट टाइम है, बट ऑडियंस के सामने नहीं है, तो मैं इतना घबराता नहीं हूँ बोलने से.
0: नहीं नहीं सर, क्या बात है. तो आप क्या अच्छा गाते हैं अखिल भैया? आप फिर तो जब गाने की, हम लोग तो वैसे भी ढूंढते हैं ऐसे लोगों को, भाई कुछ तो पकड़ के सुनाओ, कुछ तो बढ़िया गुनगुनाओ. मतलब क्या चीज है जो आप, मतलब आप पहले से गाते हैं या मतलब?
3: नहीं नहीं, मैं मेरे को गाने का शौक बचपन से है. मेरे फादर बहुत अच्छा गाते थे.
0: ओ वाओ.
3: और वो उन्होंने एमटीवी में एक बारी शोज में भी गए हुए हैं, तो वो जो उनके गाने का तरीका वो शायद मेरे अंदर इनहेरिटली आया है.
0: वेरी नाइस यार.
3: तो मैंने उनको देख के ही सीखा है जो सीखा.
0: आप भी मुरादाबाद से हो?
3: जी मैं.
0: आप कहाँ से हैं भैया?
3: मैं सिविल लाइन से.
0: सिविल लाइन मुरादाबाद. अच्छा, अभी प्रोफेशनली क्या चल रहा है? स्टडी कम्प्लीट हो गई?
3: जी मेरी ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो गई है बीसीए से.
0: लोगों की शादियों को अच्छे से मैनेज करना या फिर सारी इवेंट मैनेजमेंट?
3: सारी ही इवेंट मैनेजमेंट, मोस्टली शादियां. मेरे को शादियां करवाना ज्यादा अच्छा लगता है.
0: क्या बात है. तो अपनी हो गई अभी या नहीं?
3: नहीं नहीं, मेरी कहां.
0: अरे वाह, मतलब दूसरों की शादियों का बैंड बजाओ.
2: दोनों
0: थोड़ा संभाल के
2: रखो. दोनों दोस्तों ने बिल्कुल एकदम सही दोस्ती पकड़ी है.
0: नाइस यार, मतलब वेरी नाइस. और बोले साथ में कब से हो? यू नो
3: हम लोग स्कूल से साथ है.
0: ऑल राइट. अच्छा, हम लोग अभी मनमुटाव नहीं हुआ आप दोनों का भाई?
3: नहीं, लड़ाइयाँ हुई है, बहुत लड़ाइयाँ हुई है.
0: ओके.
3: बात भी नहीं हुई है बीच में.
0: तो फिर कौन एक दूसरे को यू नो सबसे पहले कन्विंस भी होता है ना कि भाई मैं ही चला जाता हूँ, चल तू मत बोल भाई.
3: हमारा ना एक्चुअली चार पांच जनों का ग्रुप है.
0: ऑलराइट. और वो देखे मैंने चार पांच जने.
3: हाँ जी.
0: हाँ हाँ, मैं देखा हूँ बिल्कुल.
3: तो हम लोगों का ना क्या होता है, अगर आप मान लो किसी एक दो के बीच में लड़ाई हो गई, दो तीन दिन नहीं मिलेंगे, बट हमारा ना एक शाम में मिलने का स्पॉट है और हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है. अब मान लीजिए मेरी और इसकी लड़ाई हो गई उनकी और हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो उस ग्रुप पे मैसेज आएगा कि भाई हमें यहाँ मिलना है, इस टाइम पे सारे आ जाओ. अब उस टाइम पे ये भी आएगा, मैं भी आऊंगा. ऐसा नहीं होगा कि हम लोग अगर हमारी लड़ाई हो रखी है तो हम उस ग्रुप से मिलने नहीं जाएंगे.
0: ओके.
3: अब मिलने आ जाएंगे. अब हम वहां मिले तो ऐसा लगेगा कि जैसे कभी हमारी लड़ाई ही नहीं हुई. Okay. उसकी बात ही नहीं होगी. जैसे हम हमेशा मिलते हैं वैसे ही मिलेंगे. तो कभी हमें एक दूसरे को सॉरी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी. हम लोग समझ जाते कि हाँ ठीक है, उस टाइम पे वो बंदा उस इमोशन में था, मैं इमोशन में था, वो समझ गए. तभी शायद हमारी दोस्ती इतनी गहरी है कि हम एक दूसरे को बिना बोले भी समझ
0: जाते हैं.
2: भाई साहब, अभी जो आजकल हम जजेस को ढूंढ रहे हैं या जितने भी हम वकीलों को ढूंढ रहे हैं ना, जो केस सॉल्व करवा दें, ऐसे लोगों की जरूरत है.
0: Got it, यार.
2: जो मनी मन में केस सॉल्व कर दे, कहानी खत्म. भाई तू भी मैटर सॉल्व
0: मिल रहा है. नहीं मतलब ये बात तो यार बहुत अच्छी बोली. और मुझे मेरे को ऐसा लगता है कि अभी 2026 में ऐसे स्पेशल दोस्त बहुत कम हैं जो एक दूसरे की यू नो बॉन्ड को इतना संभाल के और समझ के रख रहे हैं. यू नो और आप कहीं पे भी जा रहे हो, क्योंकि पहली बात तो ग्रुप ही नहीं बचे हैं. सिर्फ आजकल वो खाने खिलाने वाले ग्रुप बने हुए हैं. शाम को मिलते हैं, मैंने तेरा खाया, तूने मेरा खाया, उसके बाद टाटा बाय बाय.
2: कौन मैं कौन?
4: आज ब्लू है पानी पानी पानी.
5: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो.
4: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं. खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ. प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद.
6: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज. मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे. डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर. संपर्क करें 9548539705.
7: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा. डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है. एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा.
8: अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है. करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं. 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है. यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है.
9: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं.
8: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
9: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
10: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
9: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy,
4: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
3: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
6: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
5: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
7: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
5: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
9: This is the country.
10: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
1: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
11: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
12: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

नमस्कार दोस्तों, FM मुरादाबाद पर आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक अखिल संग, जहां बातें होती हैं दिल की और जज्बातों की भी। तो पूरा मुझे उम्मीद होगी आज आप बिल्कुल थोड़े से खुशनुमा मौसम में होंगे। थोड़ा सा गर्मी तो है, मगर जब गाड़ी चल रही होती है तो इधर उधर की कहते हैं ना, जब खिड़की से झाका झुकी होती है तो कोई ना कोई तो मिल ही गया होगा, आज की हल्की सी स्माइल कहीं ना कहीं आ गई होगी। तो आज हम बातें करेंगे किताब और मैगज़ीन के ऊपर। वो पहला प्यार, जो वो पहली किताब जो आपने पढ़ी, जो आपके दिल को भी छू गई, तो आज हम उसके ऊपर बातें करेंगे। वो पहली किताब जिसने आपको कुछ सिखाया, वो पहली मैगज़ीन जिसे आप बार बार पलट कर देखते थे, या वो पहली कॉमिक जो बचपन का हिस्सा थी। एक शायरी के साथ शुरुआत करते हैं। कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी बदल

0: देते हैं। कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी बदल देते हैं, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो दिल में घर कर लेते हैं। किताबें चाहे पुरानी हों या नहीं, किताबें चाहे पुरानी हों या नहीं, उसकी यादें हमेशा साथ चल देती हैं। तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, देखते हैं आज हमारे कौन से लिसनर हैं जो आज अपनी दिल की बात हमारे दिल तक पहुँचाएँगे, अपनी पहली किताब भी हमारे बारे में बताएंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार जी। नमस्कार।
0: नमस्कार आयान साहब, कैसे हैं आप
1: जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है।
0: और आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप हमारे श्रोताओं को बताइए, मुरादाबाद से बोल रहे हैं या आसपास से?
1: नहीं, रामपुर।
0: रामपुर से बोल रहे हैं। कैसा है इस समय आपके? आज आपको जैसे पता है, आज हम बात करेंगे आपकी उस पहली किताब, पहली मैगजीन, कोई आपकी ऐसी किताब या पहली मैगजीन जो आपको हमेशा अभी याद है और आप पढ़ने का शौक है आपको, और आपने कह रहे हैं कि कई बार पढ़ी हो। आज कौन सा आप देखिए साहब, दर्द तो चलता रहेगा ज़िंदगी में, दर्द के बाद जो देखो मुस्कुराना तो है, चाहे आप दर्द में मुस्कुराओ या खुशी में मुस्कुराओ, तो मुस्कुराहट होनी चाहिए चेहरे पे, है ना? तो आज बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप अपने इस दर्द वाली मुस्कुराहट के पीछे? अच्छा, कोई नहीं, आप मोबाइल पे सुनिए ना। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप सिंपली डाउनलोड करिए हमारे साथ। जैसे अगर कोई हमें गाड़ी में भी सुनना होता है, गाड़ी के बाद भी अगर सुनना चाहता है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि अपने प्ले स्टोर पर जाके FM मुरादाबाद 89.6 टाइप करें, तो उस पर एक रेड कलर का आइकन आ जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। तो पता नहीं, इस समय तो कोई संख्या हम बता नहीं सकते, मगर बहुत लोग तमाम मतलब मुरादाबाद में पहुंच रही है, कोने कोने में आपकी आवाज।
1: क्या बात कर रहे हो सर? सर तो मेरा एक चैनल है मिस्टर आयान खान 786 करके कुछ।
0: हाँ, तो जरूर जरूर आप बताइए अपने उस चैनल के बारे में। किस नाम से आपका चैनल है?
1: मिस्टर आयान खान 786।
0: मिस्टर आयान खान 786, तो उस पे मिलेंगे आप उस चैनल पे?
1: उस चैनल पे मैं मिलूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल है, अभी मैंने में चालू किया है।
0: तो कोई, ये तो बहुत अच्छी बात है आन साहब, और ऐसे ही आपकी दर्द भरी शायरी निकलती रही तो क्या पता सब्सक्राइबर और बढ़ जाए। सुनेंगे सर, सुनेंगे आपका ये दर्द भी सुनेंगे। जरा बरसात का मौसम आने दो, फिर कपड़े गीले होंगे तो पता भी नहीं चलेंगे। चलिए आयान साहब, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपका ये फरमाइश प्ले करते हैं अभी, ठीक है? धन्यवाद। तो ये था आयान साहब, रामपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो किताबों को तो बहुत पसंद करते हैं, बताते भी हैं। एक किताब थी जो उन्हें बहुत पसंद थी कॉलेज के टाइम पे, और आज जरा थोड़े से दर्द में डूबे हुए थे, तो हमने कहा क्यों नहीं आपके दर्द को भी जो है थोड़ा सा कम किया जाएगा, उस पर ये वाले गाने का मरहम लगाया जाएगा जो आप पसंद।

0: चांद तारे फूल और खुशबू तुमसे अच्छा कौन है। तो ये म्यूज़िक दिया था नदीम और श्रवण साहब ने, लिरिक्स लिखे हैं इसके समीर साहब ने और सिंगर थे तौसीफ अख्तर साहब। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे अभी किताबों की, आपकी वो किताब, आपने वो मैगज़ीन जो आपने पढ़ी और शायद उसे पढ़ के कहीं ना कहीं खो गए या वो आपकी कोई पसंदीदा कहानी बन गई। तो हमारे साथ जुड़े हैं एक और हमारे लिसनर जो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। चलिए करते हैं उनसे कुछ बात। नमस्कार ईश्वर जी, कैसे हैं आप?
1: हेलो सर, सबसे पहले आपको मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
0: नमस्कार ईश्वर जी, नमस्कार।
1: सर कैसे हो आप?
0: बढ़िया सर बढ़िया। क्या कर रहे हैं इस समय आप?
1: सर इस टाइम तो प्रोग्राम सुन रहा था, अभी रामपुर से आयान भाई की कॉल आई थी, काफी अच्छी लगी और सर प्रोग्राम सुन रहे थे, सोचा कॉल लगा ली जाए। कॉल लग गए सर, अच्छा लग रहा आपसे बात करके। हम हमेशा आपके साथ में रहते हैं, प्रोग्राम सुनते रहते हैं, कॉल लगाते रहते हैं। सर मेरा शौक यही था रेडियो सुनने का और यही शौक रह गया।
0: चलिए ईश्वर साहब, तो आज हमारी बातें चल रही हैं कुछ किताबों के ऊपर, कुछ ऐसी कहानियों के ऊपर जो आपकी पहली, कहते हैं ना पसंद बन जाए, पहली बार आपने पढ़ी, पहली किताब आपने वो पढ़ी और आपको बहुत अच्छी लगी। तो कुछ ऐसा है आपके साथ, आपके साथ हुआ है ऐसा कुछ?
1: सर पढ़ाई लिखाई तो मैंने बहुत कम की है, यानी कि मैं काम पे ज़्यादा लग गया बचपन से। सर
0: तो पढ़ाई लिखाई तो आपने कम की है, मगर कभी जैसे होता ना बचपन में, मेरे को चंपा की किताब आती थी जिसपे चाचा चौधरी की भी कहानी होती थी, एक चाचा चौधरी की कहानी चलती थी ऐसी।
1: तो चिड़िया रानी की थी, बहुत अच्छी थी काफी।
0: हाँ तो ऐसी तो कोई ना कोई कहानी होगी जो पढ़ते हुए कभी खो जाते होंगे उसपे कि आज साबू जैसी ताकत वाली काम जो है आप ही करने निकले हो शहर में।
1: हाँ सर एक कहानी थी चिड़िया रानी, आओ बैठो सुनो कहानी, मेरे आंगन में तुम आ जाओ, बिखरे दाने चुन चुन खाओ, साथ रहो तो ये सुनो। सर ये वाली कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैं यही सुनता था,
0: पढ़ता भी था। क्या बात है, क्या बात है। और बताइए आज जो है कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: सर मैं आज गाना सुनूंगा, सर उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ आप प्रोग्राम पेश करते हो रोजाना, नया टॉपिक लेकर आते हो सर, काफी अच्छा लगता है।
0: धन्यवाद।
1: चेंजिंग हो जाती है और काफी अच्छा लगता है सुनने वालों को सर, सभी को
0: धन्यवाद साहब, धन्यवाद।
1: और सर आप प्रोग्राम में छा जाते हो, काफी अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हो, हमें राज्य की कमी कोई भी महसूस नहीं हो रही है।
0: नहीं राज्य की हम कमी महसूस नहीं होने देंगे, मगर राज्य की बात ही कुछ और थी।
1: और मौसम कैसा मुरादाबाद का?
0: मौसम सेम ऐसे ही चल रहा है, गरम गरम चल रहा है, मगर कभी कभी ऐसे मौसम में भी कोई ना कोई चाय जरूर पी रहा होता है इतने गर्म मौसम में भी।
1: हाँ सर सब रंग की दुनिया, कोई चाय कोई कोल्ड ड्रिंक। तो चाय सुबह में पीता हूँ और बाकी कोटिंग पी लेता हूँ।
0: चलिए साहब आप भी एक किताब लिख रहे हैं, इसका मतलब ससुराल वाली चाय, आपकी अलग ही कहानी चल रही है एक।
1: सर हम तो आपको चाय पिलाएंगे, आप
0: आएंगे साहब जरूर पियेंगे, आपके पास भी आके चाय पियेंगे। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: सर मैं आज गाना सुनूंगा मूवी का नाम है आजमाइश, गाने के बोल हैं ढूंढ रहे हैं मेरे लिए लड़की मेरे घर वाले। सर आज के सॉन्ग में वाला सॉन्ग प्ले कर देना, वाला सॉन्ग मैं आपको और आयान भाई को डेडिकेट करना चाहता हूँ, इनका भी कॉल आई थी।
0: ठीक है साहब, जरूर जरूर, आयान साहब को भी आपने डेडिकेट किया है तो बहुत अच्छा लगा और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आप हमसे जुड़े और आपने भी अपनी एक कहानी बताई।
1: थैंक यू, नमस्कार सर।
0: नमस्कार ईश्वर जी। तो ये थे हमारे साथ ईश्वर जी जो जुड़े हुए थे और अपनी कहानी बता रहे थे कि बचपन में मुझे भी बहुत पढ़ने का तो शौक इतना नहीं रहा, मगर मैंने किताबें और कुछ कहते हैं कविताएं बहुत पढ़ी। उन्होंने एक कविता हमें सुनाई भी चिड़िया के ऊपर। तो हमारे पास मैसेज भी आया है दोस्तों, हमारे पास पूजा जी का एक मैसेज आया है मुरादाबाद से, रामगंगा विहार से। मैंने सबसे पहली किताब चंपक मैगज़ीन पढ़ी थी अखिल, उसकी कहानियाँ आज भी मुझे याद हैं। बिल्कुल पूजा जी, चंपक ने तो हम सबका बचपन रंगीन बनाया है, मतलब चंपक की तो कहानियाँ ऐसी आज भी कहते हैं कि अगर कहीं मिल जाती है चंपक पुरानी किताब तो कहीं ना कहीं एक आध स्टोरी उसकी पढ़ ही लेते हैं, चलो पढ़ लेते हैं। रोहित जी का मैसेज आया है हमारे पास संभल से, मेरी पहली किताब पंचतंत्र थी, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल सही दोस्तों, बचपन में पढ़ी गई जितनी भी कहानी होती है ना अक्सर ज़िंदगी के सबसे बड़े सबक बन जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कोई कहानी आपको कुछ ऐसा मैसेज दे जाती है जो आप, जिसे टाइम लगता है समझने में, मगर वो आपके पास कहीं ना कहीं बैठ जाती है दिमाग में कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है तो वो चलेगा। दूसरा हमारे पास अमित जी ने शायरी भेजी है, अमित जी कहते हैं कटघर से, हर किताब एक नया सफ़र होती है, हर किताब एक नया सफ़र होती है, हर कहानी एक नई नज़र होती है, जो पढ़ने का शौक़ रखते हैं उनकी दुनिया सबसे खूबसूरत होती है। क्या बात कही अमित जी आपने, और बहुत ही गहरी बात कह दी आपने।

0: अरे चम्मक छल्लो, क्या बात है? तुम्हारा अभी तक शादी भी नहीं होगा।
1: हाय क्या करूं, मुझे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता।

0: मैंने कहा आता है क्या तुझे तबला बजाना आता है।
1: सही बात क्या?

0: वेलकम बैक 89.6 मेगाहर्ट्ज पे मुरादाबाद एफएम पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो अभी हम सुन रहे थे गाना ढूंढ रहे हैं मेरे दीवाने को और मूवी का नाम है आजमाइश। गाना गाया है अलका याग्निक जी ने और इसका म्यूज़िक जो दिया है वो आनंद मिलन साहब ने दिया है, जो लिरिक्स लिखी हैं वो आनंद बख्शी साहब ने लिखी हैं। तो दोस्तों अभी हमारे पास मैसेजेस और आ रहे हैं और हम पे अभी एक मैसेज आया है नेहा जी का। अखिल जी, आजकल मोबाइल के ज़माने में किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है। तो नेहा जी ये पूछना चाह रही हैं कि आजकल इस मोबाइल के इस हाई टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम लोगों को किताबें पढ़ना कितनी ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगा नेहा जी आपसे कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल जो है ना हमें एक इन्फॉर्मेशन देता है, मगर जो किताबें हैं वो हमेशा हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग देती हैं। मतलब कहते हैं ना कि अगर आपको कहीं डीप में कुछ ना कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से, कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप समझ सकें अच्छे से, डीपली आप उसे अपने आप अंदर ले सकें, वो आपको एक किताब ही देती है। और इससे एक याद आया कि अभी हमारे मुरादाबाद में पहली बार होने जा रहा है एक वर्ल्ड म्यूज़िक डे फेस्टिवल, और सबसे ख़ास बात है इसकी कि ये इवेंट बिल्कुल फ्री है, एंट्री इसकी फ्री है। 21 जून को शाम को 5 बजे पंचायत भवन में, और बनिए आप इस शानदार म्यूज़िकल सेलिब्रेशन का हिस्सा। अगर आपको सिंगिंग, गिटार, कीबोर्ड, ड्रम्स या किसी भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का शौक़ है तो ये इवेंट आपके लिए ही है। और हाँ सुनिए, इवेंट में होने वाला है एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट गिव अवे। जी हाँ, मतलब एक लकी विनर को मिलेगा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट, और क्या पता वो लकी विनर आप ही क्यों ना हो। इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का आपको जो लिंक है वो आपको हमारे ऑफिशियल पेज एफएम मुरादाबाद इंस्टाग्राम वाले पेज पे और हमारे फेसबुक पेज पे एफएम मुरादाबाद 89.6 पे आपको मिल जाएगा। और ये जो करवा रहे हैं पार्कर म्यूज़िक वर्ल्ड, उनके पेज पे भी आपको मिल जाएगा। और जो लोग म्यूज़िक को सिर्फ शौक नहीं बल्कि अपना प्रोफेशन भी बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक ज़बरदस्त मौका है। यहाँ आप म्यूज़िक एकेडमी के एक्सपर्ट से मिल सकते हैं और एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सिंगिंग और इंस्ट्रूमेंट की प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की है, आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ 21 जून को शाम को 5 बजे पंचायत भवन ज़रूर पहुँचिएगा। वर्ल्ड म्यूज़िक डे फेस्टिवल है जहाँ म्यूज़िक, मस्ती और खूब सारा कहते हैं ना एक लर्निंग प्रोसेस आपको मिलेगा 21 जून को। हमारे साथ एक हमारे लिसनर भी जुड़े हैं, अभी उनसे भी बात करते हैं कि वो अपनी राय क्या रखते हैं उनकी पहली किताब और उनकी कुछ कहानियों के ऊपर। नमस्कार वीरपाल जी, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार सर, हम बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए सर, आपके स्टूडियो में और घर पर सब ठीक है? बिल्कुल
0: सब बढ़िया है सर, सब बढ़िया है सर। क्या कर रहे हैं आप इस समय?
1: सर कुछ नहीं, बस
0: आराम फरमा रहे हैं सर।
1: हाँ सर,
0: तो सर आज आपको जैसे पता ही होगा कि आज का जो हमारा शो चल रहा है, आज वो एक पहली किताब, पहली मैगजीन या पहली ऐसी कोई कहानी जो आपके साथ जुड़ी हो, जो आपको हमेशा याद रहती हो, उसके बारे में कुछ बताइए। आपके साथ कोई ऐसी किताब जिसे आप पढ़ते हो अक्सर?
1: जी सर, हाँ मेरे पास एक किताब सर,
0: हाँ
1: सर, एक किताब ऐसी थी जब मैं पढ़ने जाया करता था तो उस किताब को धीरे धीरे जब मैं पढ़ने लगा तो उस किताब से इतना लगाव हो गया, फिर उस किताब की पूरा मन नहीं लगता था, फिर उसके हर किताब के हर पेज पे हर शब्द में इतनी मोहब्बत भरी थी कि अगर उसे ना देखें या थोड़ा बहुत ना पढ़े तो ना भूख लगे ना प्यास लगे, कहीं पे भी चले जाओ ना मन लगे। एक ऐसी किताब थी सर।
0: अच्छा सर।
1: और फिलहाल सर ऐसा हुआ कि आज वो किताब अपने पास नहीं है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि पता नहीं जिंदगी कहाँ
0: ले। हाँ सर, कोई नहीं सर, आप बताइए सर, अभी तो आप अपनी फरमाइश बताइए। आपने इतनी अच्छी बात बताई कि आपको एक किताब जिससे आपको इतना लगाव था, तो ये तो बहुत अच्छी बात है सर। कोई ऐसा नगमा जिससे आपको भी लगाव हो जो सुनना चाहते हैं आप?
1: सर मूवी का नाम है आई मिलन की रात।
0: आई मिलन की रात,
1: हाँ और गाने जो बोला मत रो मेरे दिल, हो जा हुआ तो हुआ।
0: ठीक है सर, ये आपकी आवाज में इतना दर्द है, ऐसा मुझे लग रहा है कि कहीं दिल जो है मेरा भी ना रो पड़े यहाँ से। बहुत अच्छा लगा सर आप जुड़े, और बहुत ही अच्छी बात आपने अपने अपने मन की बात, अपने दिल की बात आपने हमारे साथ शेयर करी, हमें बहुत अच्छा लगा वीरपाल जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े थे वीरपाल जी, जिन्होंने अपने दिल की बात रखी, उन्होंने बताया कि उन्हें भी किस तरीके से एक किताब से इतना लगाव हो गया था कि हमेशा जब भी मौका लगता था तो उसे पढ़ने बैठ जाते थे। अभी हमारे पास हमारे एक लिसनर हैं, उन्होंने हमें मैसेज किया है कि सर आप कैसे हैं, आई होप आप ठीक ही होंगे। सर मैं जब छोटी थी तब मुझसे बड़ी सिस्टर अपने पढ़ने के लिए मैगज़ीन खरीद कर लाती थी, ग्रह शोभा सहेली, उसमें से हमारी स्टोरी पढ़ कर सुनाती थी, उसमें से हमें स्टोरी पढ़ के सुनाती थी और हमें बिल्कुल मूवी जैसा मज़ा आता था, हम आपको बता नहीं सकते, बहुत अच्छा लगता था कहानी सुनकर। मगर अब सोशल मीडिया ने तो ये सब चुरा लिया है। बिल्कुल सही बात कही आपने। ये सबीना खान जी हैं रहमत नगर मुरादाबाद से, और एक मैसेज हम पे और आया हुआ है अभी, अर्जुन जी हैं हिमगिरी कॉलोनी से। अर्जुन जी पूछते हैं आपकी पहली किताब कौन सी थी अखिल जी? तो मेरी जो पहली किताब थी वो बचपन की कहानियों वाली थी, मुझे चंपक का भी बहुत शौक़ रहा है और मैं वो किताबें बहुत पढ़ता था जिसमें छोटी छोटी सी मोरल स्टोरीज छुपा हुआ करती थी, तो इस तरह की किताबों का मुझे शौक़ रहा है। हमारे पास बबीता जी ने एक शायरी भी लिख के भेजी है, तो उनकी एक बार शायरी पढ़ लेते हैं। किताबों की खुशबू कुछ अलग सी होती है, हर सफ़े में एक दुनिया छुपी होती है। क्या बात है, हर सफ़े में एक दुनिया छुपी होती है, जो दोस्ती कर ले इनसे एक बार उसकी तन्हाई भी खुशनुमा होती है। क्या बात कही है आपने, और बबीता जी बहुत ही अच्छा आपने कहते हैं ना शायरी, बहुत अच्छी, बहुत टाइम बाद एक अच्छी शायरी और सुनने को मिली है। तो चलिए अब करते हैं वीरपाल जी की फरमाइश पूरी, उनकी भी एक मन की बात, उनकी दिल की बात सुनाते हैं दूसरों तक, और मिलते हैं इस गाने के बाद। तब तक आप हमारे साथ लगे रहिए, FM मुरादाबाद हमारा सुनते रहिए, और हमसे कांटेक्ट करिए अगर कोई भी ऐसी बात हो जो आपके दिल की निकलने वाली हो, किसी किताब के ऊपर, किसी पहली कहानी के ऊपर जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए 9837896896 बहुत ही सिंपल नंबर है, बहुत ही मतलब कहते हैं ना एक बार में डायल हो जाने वाला नंबर है, 9837896896।

अगर तुम कहो मूवी है यस बॉस, शाहरुख खान और जूही चावला के ऊपर ये पिक्चराइजेशन हुआ है और इसको गाना को इस गाने को गाया है अभिजीत भट्टाचार्य जी और अलका याग्निक जी ने। तो कहते हैं ना दोस्तों, याद है आपको वो लाइब्रेरी वाला कोना, वो स्कूल की मैगजीन और वो कॉमिक एक्सचेंज करने का ज़माना। आज के बच्चे शायद डिजिटल स्क्रीन पर ये सब पढ़ते होंगे, लेकिन हमने हमारे लिए ये किताब हाथ में लेके आने की एक अलग ही कहते हैं एक

0: इसकी भी एक अलग स्टोरी है, एक अलग ही एहसास होता था। हमारे पास अभी अभी संदीप जी ने मैसेज किया है कि मेरी, मैंने पहली बार नंदन मैगजीन पढ़ी थी। वाह संदीप जी, क्या बात कही आपने। नंदन मैगजीन भी एक अलग ही, उसमें भी छोटी छोटी कहानियाँ जो होती थी, नटखट कहानियाँ, वो भी बहुत अच्छी होती थी। हमारे पास अभी एक छोटे से बच्चे का भी मैसेज आया है, वो भी कह रहा है कि मैं अब मोबाइल वाली कहानी पढ़ता हूँ अंकल। तो मोबाइल पे भी बेटा कहानियाँ होती हैं, मगर जो कहानियाँ किताबों के साथ आप पढ़ते हो ना, जो आप पोएम अपनी बुक्स में पढ़ते होंगे, वो आपको पोएम हमेशा याद रहेंगी। उस बुक्स पे वो पिक्चराइजेशन होती है, एक ही पिक्चर के ऊपर इतनी बढ़िया सी प्यारी सी उस पर पोएम होती है वो सारी लिखी हुई, तो वो अलग ही आपको याद रहेगी। और हमेशा ऐसा भी रहेगा कि हाँ, मैंने इस क्लास में ये वाली पोएम जो थी ये पढ़ी थी, इसमें ये फ़ोटो थी। और हमारे पास एक शायरी भी आई है, बचपन के पन्ने जब याद आते हैं, बचपन के पन्ने जब याद आते हैं, पुराने लम्हे फिर मुस्कुराते हैं। किताबें सिर्फ कागज़ नहीं होती, ये तो यादों की खजाने बन जाते हैं। बहुत बढ़िया शायरी लिखी है आपने। इनका नाम इन्होंने अपना मैसेज नहीं किया, इसमें शो नहीं किया है, और मगर बहुत, जो भी आप हैं, बहुत ही अच्छा आपने एक मैसेज दिया है हमें। एक हम पे मैसेज आया है, हेलो सर, अखिल सर, गुड वाला इवनिंग है जी। अच्छा, आप कैसे हैं? आपकी आवाज़, बोलने का अंदाज़ बहुत प्यारा है, शायरी उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है। ललिता कश्यप जी मुरादाबाद से। सर, मुझे बचपन में मैगज़ीन पढ़ने का बहुत शौक़ था, जो आज भी है, जो आज मुझे आज भी है। और एक गाने की भी फरमाइश इन्होंने कही है, तो देखते हैं कौन से गाने की फरमाइश कहते हैं। तब तक हमारे पास एक कॉल आ रही है, जहाँ देखते हैं क्या कॉल है, हमारे लिसनर हमसे क्या कहना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी,
1: हेलो,
0: गुंजन जी, क्या कर रही हैं? पीछे रेडियो की आवाज़ कम करिए।
1: हेलो,
0: हाँ जी, ठीक है, अभी आपको गाना सुनाता हूँ मैं, आपका भी पसंदीदा गाना लगाता हूँ गुंजन जी। तो गुंजन जी का तो हमेशा कॉल आता रहता है कि मुझे भी एक गाना सुनना है, गाना सुनना है। तो ज़रूर गुंजन जी, जाने से पहले ज़रूर मैं आपका गाना सुनाऊंगा। हमारे साथ एक कॉल और जुड़ रहे हैं, अभी बात करते हैं उनसे क्या कहते हैं वो। हेलो, दिल से दिल तक, अखिल संग, हेलो।
2: हेलो,
0: हाँ जी सर,
2: नमस्ते सर।
0: नमस्ते सर, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताइए सर।
2: सर, मैं रोहित बात कर रहा हूँ, मुरादाबाद एकता कॉलोनी मजूला मंडी के पीछे से।
0: रोहित जी, आज आपको पता ही होगा, आज हम जो बात कर रहे हैं अपनी पहली किताब, पहली कहानी, और कहते हैं ना, जो कोई पहली मैगजीन जो आप हमेशा आपके दिल के करीब रही है, कोई है ऐसी, बताइए हमें।
2: सर, ऐसा तो कुछ नहीं, मेरी एक काम सुनने की इच्छा थी सर।
0: तो उससे पहले आपको कुछ ना कुछ सुनाना पड़ेगा सर, कोई शायरी तो सुनानी पड़ेगी आपको।
2: एक शायरी सुनानी पड़ेगी?
0: हाँ सर।
2: चलिए, एक शायरी मैं आपको सुना देता हूँ।
0: सुनाइए सर।
2: हम जिंदगी भर देख कर आए उस तस्वीर को।
0: हाँ जी, हाँ जी,
2: जिंदगी भर देख कर आए उस तस्वीर को, लेकिन उसके पीछे का नजारा हमने नहीं देखा, जिसपे वो कील पे वो तस्वीर टंगी थी। अब इसका कहने का मतलब यह है कि मेन रोल तो कील का था।
0: हाँ जी,
2: जब तक वो कील ना होती।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने, उस कील के ही सहारे वो तस्वीर टिकी हुई है। तो वही एक बात थी कि कोई एक ऐसी किताब होती है जिसके सहारे आपकी सारी कहानी चल रही होती है, कहीं ना कहीं आप उससे जुड़ी हुई चीज़ें आपके साथ होती रहती हैं। तो रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का। और गाना कौन सा सुनना चाहते थे आप?
2: हेलो,
0: हाँ हाँ,
2: आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है वो,
0: आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है।
2: जी जी सर,
0: जरूर साहब, आपको भी ये सुनाते हैं।
2: ओके सर, थैंक यू।
0: ठीक है रोहित जी, तो ये था हमारे साथ रोहित जी। जिनकी फरमाइश है आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है, और उससे पहले ये इन्होंने एक हमें शायरी सुनाई और हमें एक कील की इम्पोर्टेंस भी बताई कि हाँ वो तस्वीर के पीछे जो कील थी उस पर तो कभी नज़र गई ही नहीं। तो बिल्कुल सही बात कही आपने। चलिए हमारे पास एक मैसेज आया है एक बच्चे का, वो MDA से है, कहता है अंकल, भाई बच्चा तो इसलिए क्योंकि उसने एकदम अंकल कहा है तो बच्चा ही कहेगा एक अंकल, कि अंकल मेरे को एक गाना सुनना है वो दिन, और मुझे अपनी हिंदी की व्याकरण किताब बहुत अच्छी लगती है। चलिए सही है, बहुत बढ़िया, आपका जो भी नाम है और आपने बहुत अच्छा, मतलब हिंदी व्याकरण की किताब बचपन में सभी को अच्छी लगती जो भी पढ़ रहे होते। चलिए आपका एक गाना भी प्ले करते हैं वो दिन। आप भी अपनी कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी किताब जो हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, कोई ऐसी बात, कोई दिल से निकली हुई, तो ज़रूर हमें कॉल करें 9837896896 पर। तब तक के लिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: मिला किसी। तो दोस्तों, एक अच्छी किताब आपकी सोच बदल सकती है। कई लोगों की ज़िंदगी सिर्फ एक किताब पढ़कर ही बदल गई है। अभी अभी हम पे एक मैसेज आया है सिमरन जी का, उन्होंने एक हमसे क्वेश्चन की तरह ही मैसेज किया है। ये लगता है आज की जनरेशन को कौन सी आदत अपनानी चाहिए। तो सिमरन जी, मैं यही कहूँगा कि आज की जनरेशन को कम से कम 15 मिनट की रीडिंग की हैबिट तो डालनी चाहिए। 15 मिनट की अपनी कम से कम मिनिमम आदत हो कुछ भी पढ़ने की, कोई भी ऐसी किताब जो आसपास उसके कहते हैं इजीली अवेलेबल हो जाए, तो 15 मिनट की तो होनी चाहिए। चाहे नोवेल हो, चाहे बायोग्राफी हो किसी की, या फिर कोई ऐसी मैगज़ीन जो कहते हैं कि 15 मिनट से 20 मिनट या जो जैसा चाहे, कम से कम कुछ ना कुछ तो टाइम एक डेडिकेट होना चाहिए रीडिंग का। हमारे पास गुल नवाज़ जी ने एक शायरी लिखी है, भेजी है कटघर से। कहते हैं, जो किताबों से दोस्ती कर लेते हैं वो अंधेरों में भी रास्ते ढूंढ लेते हैं। क्या बात है, जो किताबों से दोस्ती कर लेते हैं वो अंधेरों में भी रास्ते ढूंढ लेते हैं। अल्फाज जब साथ देते अल्फाज सब जब साथ देने लगते हैं तो सपने हकीकत बनने लगते हैं। क्या बात कही आपने गुलनवाज़ जी, और बहुत ही अच्छी बात लिखी है आपने कि जब अल्फाज जब साथ देते हैं सब साथ देने लगते हैं तो सपने भी हकीकत बनने लगते हैं। और हमारे साथ मैसेज आया है हमारे पास एक और, वो कहते हैं कि सर, मैंने एक कहानी लिखी थी भूखी बच्चे की। एक कहानी मैंने लिखी है भूखे बच्चे की, जो मेरी कहानी किताब में छपी और वो बुक मेरे पास आज है। मतलब सर ने एक बुक लिखी है, कहने का मतलब यही समझ में आ रहा है मुझे कि उन्होंने एक बुक लिखी है जिसपे कहानी का नाम था भूखे बच्चे के ऊपर, किसी भूखे बच्चे के ऊपर उन्होंने कहानी लिखी है, और वो किताब इनके पास ही है, फर्स्ट बुक इनकी लाइफ की। और हमारे पास एक हमारे लिसनर हैं, एक हमसे शायद कनेक्ट कर रहे हैं बार बार, अभी उनसे भी हम बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो जी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? सर पहले आप बताइए आपका नाम क्या है?
1: सर मोहित कुमार।
0: मोहित जी क्या करते हैं आप?
1: सर बिजली विभाग में ड्यूटी करता हूँ मैं, और एकता कॉलोनी लाइन पार में रहता हूँ।
0: सर आप तो बहुत ही इस समय इम्पोर्टेंट पर्सन है इस समय सर मुरादाबाद में। तो
1: जी सर, क्या बढ़ रही है बिजली विभाग की ड्यूटी है, सारे कंज्यूमर को अप्लाई भी है ना?
0: बिल्कुल सही बात कही आपने। अच्छा ये बताइए, आपने कभी जिंदगी में कोई ऐसी अच्छा, मैं राजेश जी एक बात पूछना चाह रहा था कि आपकी भी आज जो हमारा शो है वो एक किताब, पहली किताब आपकी, पहली एक मैगजीन के ऊपर है, कि कोई तो आपकी जिंदगी में ऐसी कोई किताब या ऐसी कोई कहानी आपके साथ जुड़ी होगी जो आपको अच्छी लगती होगी, तो आपके साथ रही है कोई ऐसी किताब जो आपको बहुत पसंद हो जिसे आप पढ़ते भी हों?
1: नहीं सर, मेरे फिलहाल कोई किताब नहीं है, वो एकदम मैं बता भी नहीं पाऊंगा।
0: हाँ चलिए, कोई मतलब
1: ये संघर्षी किताब है हमारी।
0: क्या बात है, ये तो
1: विभाग की ड्यूटी हमारा संघर्ष है, ये एक किताब है।
0: कौन सा ये बहुत, ये भी बहुत अच्छी किताब लिख रहे हैं, बहुत अच्छी कहानी लिख रहे हैं, जो ड्यूटी आप निभा रहे हैं बहुत अच्छी निभा रहे हैं सर। कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: आपकी बस ये कहना चाहूंगा, आपकी कभी सप्लाई बाद इसको 19-12 नंबर पर कॉल करिए आप।
0: सर जरूर जरूर, मैं भी और मेरे जितने भी श्रोता सुनने वाले हैं वो भी अगर कभी कोई सप्लाई बाधित होती है तो जरूर कॉल करें 19-12 पे। आप बताइए गाना कौन सा सुनना चाह रहे हैं आप राजेश जी?
1: खुली नजर क्या खेल दिखेगा दुनिया का,
0: खुली नजर क्या खेल
1: तमाशा दुनिया का, अमिताभ बच्चन जी का सॉन्ग
0: है। ठीक है ठीक है, जरूर ये प्ले करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए राजेश।
1: ठीक है सर जी, और ये मैसेज मेरा सब कंज्यूमर को आप पहुंचा दीजिएगा।
0: पहुंच जाएगा सर आज का, आप
1: सप्लाई की सप्लाई की 19-12 पर कॉल करिए आप।
0: ठीक है सर, ठीक है, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े थे राजेश जी बिजली घर से, जो कह रहे थे कि अगर कभी भी कोई दिक्कत हो किसी भी बिजली की, आपको कहीं कटौती की, तो आप एक नंबर है 1912 उस पर ज़रूर संपर्क करें। और मैं कहने वाला था कि आज जो हमने बातें की, इतनी सारी बातें करी किताबों के ऊपर, पहली कहानी के ऊपर, और आपकी कहते हैं ना पसंदीदा मैगज़ीन के ऊपर, तो उन पन्नों की जो बचपन की यादों में आज भी हमारे साथ महफूज हैं, अगर आपने अब तक रीडिंग की आदत छोड़ दी है, तो एक बार फिर किसी किताब को, किसी किताब के पन्ने को पलटिए और देखिए कि क्या कहीं ना कहीं वो एक कहते हैं ना हल्की सी जो आपके अंदर दिल में कहीं ना कहीं एक जगह होगी कि हाँ कुछ तो आज पढ़ा जाए, कुछ तो दिल के करीब लाया जाए, तो उसे पलट के देखिए, हो सकता है आपको अपना बचपन वापस मिल जाए। एक चलने से पहले एक शायरी, आखिरी शायरी शो की मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ किताबें कहानियाँ सुना जाती हैं, कुछ किताबें कहानियाँ सुना जाती हैं, कुछ ज़िंदगी जीना सिखा जाती हैं, और कुछ यादें ऐसी दे जाती हैं जो उम्र भर दिल में बस जाती हैं। कुछ किताबें कहानियाँ सुना जाती हैं, कुछ ज़िंदगी जीना सिखा दे जाती हैं, और कुछ यादें ऐसी दे जाती हैं जो उम्र भर दिल में बसा जाती हैं। तो एक हम पे मैसेज अभी आया है गुंजन जी का, जो आपको पता ही, हमारी गुंजन जी एक बहुत अच्छी हमारी लिसनर हैं, उनका एक गाना है पायल की झनक से बजा दीजिएगा अंकल, तो ज़रूर आपका ये गाना बजता है, पायल की झंकार से उठेंगे मेरे साजना। और उसके बाद हम मिलते हैं, इस गाने के बाद आते हैं और फिर एक प्यारा सा इस शो को एक प्यारा सा अंत भी देते हैं।

0: तो अभी आप सुन रहे थे खुली आँख से देख तमाशा, बंद आँख से देख तमाशा दुनिया का। और ये फिल्माया गया था अमिताभ बच्चन जी, विनोद खन्ना पे, और इसका सिंगर थे किशोर कुमार जी और अमित कुमार जी। लिरिक्स जो लिखी गई हैं वो लिखी हैं मजरू सुल्तानपुरी साहब ने, और जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। तो दोस्तों, आज का सफ़र हमारा इन किताब, मैगज़ीन और कहते हैं आपकी पहली कहानी के ऊपर था, और बहुत ही, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। कई सारी बातें आज, कई सारी दिल की बात, और दिल में कहीं ना कहीं छुपी हुई वो पहली किताब आज निकल के आई आपकी। तो हम मिलेंगे कल एक नए कहानी, एक नए विषय के साथ, और 9 से 10 आप और हम करेंगे अपने दिल से दिल की बात अखिल के संग। तो अब मैं चलता हूँ, मुझे को इजाज़त दीजिए, और अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रहिए, मुस्कुराते रखिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ते रहिए मुरादाबाद FM 89.6 MHz को भी।
1: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
2: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
3: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे, और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: के।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
3: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
2: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
4: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: जी,
1: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
0: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है।